पर्याप्त भी है। तो जागरूक का मतलब यही हुआ कि हम किसी भी आसन प्राणायाम को करें तो हमें उसके प्रति पूर्ण चेतावनी रहित साथ में ही काम करना चाहिए। तो आइए, हमें आपसे सबसे एक और महत्वपूर्ण बात करनी है, क्योंकि आज शिविर का अंतिम दिन है। आप सभी ने 30 दिन तक बहुत ही प्यार सम्मान हमें हर एक आसन प्राणायाम के साथ दिया। नित सवेरे 6 से 7 योग की योग पाठशाला में आकर के आपने नित्य सवेरे योग को अपनाया, आसन किए और उसके बारे में जानकारियां ली। इसी तरीके से आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे योग योगशाला में आकर के नित प्रतिदिन इसी तरीके से आप आसन प्राणायाम करते रहेंगे। हम एक नई सीरीज के साथ फिर से आएंगे, एक नए योग शिविर के साथ हम फिर से जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हमसे अब अगर कोई त्रुटि हो गई हो किसी भी आसन को लेकर के, किसी भी प्राणायाम को लेकर के, तो आप हमें बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। और आगे एक नई प्रेरणा के साथ में हम फिर से, एक नए उत्साह के साथ में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग की योग पाठशाला के 8 दिवसीय शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है योगिनी समता। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। और 8 दिवसीय योगशाला में रोज सवेरे उठ करके जुड़ने से और करने से आपको लाभ भी मिल रहा होगा। आज 8वां दिन यानी कि शिविर का अंतिम दिन। आज के दिन यानी कि हम आज के 8वें दिन पे 8 मुख्य प्राणायामों में से जो आखिरी प्राणायाम है वो है अनुपम उद्गीत प्राणायाम। आज हम बताएंगे कि उद्गीत प्राणायाम अनुपम कैसे बना। अनुपम का अर्थ होता है उपमा रहित, सर्वोत्तम, बेजोड़, यानी कि जिसका कोई जोड़ नहीं होता है। अनुपम एक भारतीय पुल्लिंग नाम है जिसका संस्कृत में अर्थ अतुल्य, उत्कृष्ट होता है। अब आपको लग रहा होगा कि अतुल्य क्यों? क्योंकि जिसकी कोई तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। ठीक वैसे ही उद्गीत प्राणायाम की भी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, इसीलिए इसका नाम अनुपम उद्गीत रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि अनुपम का क्या अर्थ होता है और विस्तार से। आपको बता दें कि अनुपम का अर्थ अतुल्य, कीमती, अद्वितीय होता है। अतुल्य कीमती यानी कि जिसका कोई मोल नहीं और सबसे अच्छा माना जाता है, और इसकी झलक अनुपमा नाम के लोगों में दिखाई देती है। अनुपम क्या है या अनुपम किस तरीके से हम इसका नाम के अर्थ को जान सकते हैं? तो आइए हम बताते हैं कि उद्गीत प्राणायाम में हम अनुपम नाम शब्द क्यों जोड़ा गया। अनुपम, जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया, अतुल्य, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसकी तुलना किसी और प्राणायाम से की ही नहीं जा सकती है। तुलना मात्र से ही याद आया कि यदि हम किसी भी प्राणायाम को किसी और की तुलना से करते हैं तो हर एक प्राणायाम अपने आप में अतुल्य है। ठीक वैसे ही शिविर के 8वें दिवस में आज अनुपम उद्गीत प्राणायाम की हम आपके साथ में करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं उद्गीत प्राणायाम करने के लिए? स्वच्छ वातावरण में साफ जगह पर बैठ जाएं और वातावरण को और पवित्र करने के लिए एक सुगंधित वातावरण को बनाएं। यानी कि आप एक साफ सुथरी जगह पर बैठ करके आप एक अगरबत्ती या धूप को भी जला सकते हैं, जिससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। तो आइए हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम को ओमकारी नाम भी यानी कि ओमकारी जप भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही सरल प्रकार का प्राणायाम ध्यान अभ्यास है। जो व्यक्ति सुबह उठकर हर रोज उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करता है वह कई शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों का आनंद पाता है। यह आपको चिंता, अपराध बोध, नाराजगी, उदासी और भय से निपटने में सहायता प्रदान करता है। सबसे अच्छा प्राणायाम यह क्यों है, आइए हम आपको बताते हैं। इसके नियमित अभ्यास से स्ट्रेस दूर होता है और साथ ही साथ आपका मन भी शांत होता है। उद्गीत प्राणायाम के बारे में हम और भी जानकारी से जानेंगे। उद्गीत प्राणायाम दूसरे प्राणायामों के प्रकार से हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं? सबसे पहले आप किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करके उंगलियों की सहायता से मुद्रा बनाएं, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम का गुंजन, तत्पश्चात श्वास की गति को मध्यम करते हुए श्वास को छोड़।

करें और श्वास को लें। ठीक इसी प्रकार जब आप श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे तो साथ ही साथ यानी कि मन में आंतरिक गतिविधियों के साथ में ओम का उच्चारण चलता रहेगा। यदि आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो भवरे का गुंजन या फिर हम किसी भी ऐसे नाम को जो श्रुति से जोड़ करके आपकी अंतर आत्मा के साथ में जुड़ करके चलता रहे, कोई भी हम नाम ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह जान लें कि इस प्रकार के गुंजन से हमारी आंतरिक जितनी भी गतिविधियां हैं वह शांत होती हैं। तो आइए अब आगे जानेंगे उद्गीत प्राणायाम के फायदे। इस प्राणायाम के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। यह प्राणायाम मुख्य उद्देश्य जिसका है शरीर में ऊर्जा वहन करने के साथ मुख्य स्रोतों को शुद्धिकरण करता है, अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है, यह कफ विकार को भी कम करता है। यह प्राणायाम कितने समय तक करना चाहिए आइए हम आपको बताते हैं। जानबूझकर श्वास को अंदर नहीं लेना है, मध्यम गति और मध्यम तीव्र गति को ध्यान में रखते हुए भी श्वास को लेना है। यह रोज कम से कम 5 मिनट से लेकर के आप 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में आप 2 से 2.5 मिनट ही कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से ना तो कोई नुकसान है और ना ही कोई होने वाली कोई चिंता, इसीलिए आप इस प्राणायाम को आराम से किसी भी समय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए। अनुपम उद्गीत प्राणायाम जो है वह सभी वर्ग के लोगों को करना चाहिए, खास करके विद्यार्थियों को तो बिल्कुल विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह प्राणायाम उतना ही अच्छा है जितना कि किसी भी छोटे बच्चों से लेकर के किसी भी स्तर पर जाने के लोगों के लिए है। तो आइए हम आज 8 दिवसीय योग के शिविर में अनुपम उद्गीत प्राणायाम को किया और साथ ही साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि 8 दिवसीय रोज सवेरे आकर के आप हमारे इस शिविर में जुड़े और आपने लाभ प्राप्त किया। इसी तरह दोस्तों आगे फिर से शिविर में आएंगे और तब तक के लिए आप अपने जो भी फीडबैक हैं, कुछ प्रश्न हैं, जरूर से सवेरे 8 करके योगशाला में 6 से 7 आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं जिसका निवारण और उत्तर हम देंगे। तो दोस्तों बस इतना ही, शिविर में करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, योग की योग पाठशाला की चल रही शिविर में आप सभी का तहे दिल से मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। 8 दिवसीय योग शिविर में जो कि आत्म प्रीति से जुड़ना है हमें, और आत्म प्रीति शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो आइए आज हम जानेंगे एक नए प्राणायाम को और नए प्राणायाम से जुड़े हुए एक शब्द को। आज हम करने वाले हैं अग्निसार, लेकिन अग्निसार कैसे बना हम आज उस पे भी बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं योग शिविर के 5वें दिन में ओजस अग्निसार। ओजस अग्निसार का मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। ओजस अग्निसार का मतलब हुआ, सबसे पहले हम ओजस को जानेंगे। ओजस संस्कृत भाषा के ओजस का हिंदी तत्सम स्वरूप है। इसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ है एबिलिटी, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल। और बल जहाँ पे हो जाता है वहाँ अग्निसार के नाम से जुड़ करके, यानी कि ओजस अग्निसार। आपको बता दें कि ओजस का मतलब शरीर की ताकत होता है। ओजस नाम रखने से आपका बच्चा भी नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है। ओजस का अर्थ शरीर की ताकत से है, तो आप समझ गए होंगे कि अग्निसार को नाम हमने आगे से ओजस क्यों दिया। अग्निसार यानी कि ओजस अग्निसार। योग में ओजस का क्या अर्थ है आइए हम आपको बताते हैं। ओजस एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद शक्ति या जीवन शक्ति का सार के रूप में किया जाता है, या यूं कहें हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, ओजस वह महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारी प्रतिरक्षा, ताकत और खुशी को नियंत्रित करती है। 3 चीजों में जो हम प्रचुर मात्रा में लेते हैं, यदि हमारा ओजस कमजोर है तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा उत्साह, हमारी ऊर्जा शिथिल हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी आत्मिक शक्ति को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ओजस शक्ति को हमेशा से बनाकर रखना चाहिए। ओजस की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, यानी इस शब्द की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं, हम उस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। ओजस रंग और आवाज को बनाए रखता है। ओजस 5 इंद्रियां और मन के कार्यों को उत्तेजित करता है। ओजस शरीर, मन, इंद्रियों, आत्मा की अखंडता को बनाए रखता है। मन की ऊर्जावान स्थिति शरीर का विकास और शक्ति ओजस पर निर्भर करती है। ओजस की विशेषताओं में सबसे पहले अगर किसी चीज की कमी अगर करते हैं तो जिम्मेदार कारक है। इसीलिए ओजस की विशेषताओं में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ओजस के फायदे, यानी हमें इस नाम से जो फायदा है तभी हम जान पाएंगे कि ओजस अग्निसार का नाम हमने ओजस अग्निसार क्यों रखा। प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, जैसे इम्यूनिटी बूस्ट करता है। शारीरिक पोषक तत्वों से समृद्ध है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा बूस्ट करता है जिसमें कोई भी फिल्टर, बाइंडर, रासायनिक या कृत्रिम स्वाद नहीं होता है। हम अगर ओजस को अग्निसार के साथ जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर है। आयुर्वेद के अनुसार ओजस का अर्थ क्या होता है मैं बता दूं। दूध में सबसे ज्यादा ओजस माना गया है, बादाम में सबसे ज्यादा ओजस माना गया है, यानी कि शारीरिक क्षमता और शक्ति को बढ़ाने का सबसे उत्तम साधन। आध्यात्म में ओजस का क्या अर्थ है आइए हम वो भी बता देते हैं, क्योंकि जब हम योग से जुड़े हैं तो आध्यात्म से जुड़े रहना भी एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पचे हुए भोजन, जलवायु, संस्कार और विचार का सार है। गहरे स्तर पर यह सभी उच्च संस्कारों के विकास को पोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। ओजस हमारी अव्यक्त रचनात्मक क्षमता भी है, रचनात्मक ऊर्जा का भंडार भी करता है। तो आइए अब हम करेंगे ओजस अग्निसार। हमने पहले भी दोस्तों अग्निसार किया हुआ है, लेकिन अब इस बार हम अग्निसार को लेने वाले हैं ओजस अग्निसार। अग्निसार करने के लिए, यानी ओजस अग्निसार करने के लिए सबसे पहले हम किसी मैट पे या चादर पर आसन बिछाकर बैठ जाएंगे। पद्मासन की स्थिति में या हम बैठ जाएंगे, आपको बिल्कुल से शांत पलथी मार करके पद्मासन की स्थिति में, या हम बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में इसलिए क्योंकि यह पेट से संबंधित है, इसीलिए अग्निसार को करने के लिए हम 2 मुद्राएं ले सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम को करने से पाचन क्रिया मजबूत होती है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस है,
वह अग्निसार कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अभी हमने बताया कि ओजस प्राणायाम यानी ओजस अग्निसार प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है, और जैसे आपको अभी सुन करके लग रहा होगा कि यह प्राणायाम शरीर को ऊर्जा देता है, तो सोचिए अग्निसार में अगर ओजस मिल जाए तो दोनों ही कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अग्निसार से क्या लाभ मिलता है, आइए हम आपको बताते हैं। अग्निसार से यह लाभ मिलता है कि हमारी पाचन क्रिया को गतिशील रखता है और उसे मजबूत बनाता है। शरीर के सभी तरह के रोगाणुओं को भस्म करके शरीर को स्वस्थ करता है। यह क्रिया पेट की चर्बी को घटाकर मोटापे को दूर करता है और कब्ज में यह सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। क्या अग्निसार पेट की चर्बी को कम करता है? जी हाँ, बिल्कुल। पाचन अग्नि या अग्निसार को प्रज्वलित करना सबसे महत्वपूर्ण यह परिणाम होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो पाचन अग्नि या अग्निसार प्रज्वलित होती है। उस अग्नि को शांत करने में और भोजन पकाने में, सबसे पहले भोजन पकाने में यह महत्वपूर्ण अंग है उसका। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं और उसके बाद में तुरंत हम आराम करने की स्थिति में चले जाते हैं, बहुत लोगों की आदत होती है दोस्तों कि चाहे वो दोपहर का भोजन हो चाहे वो रात का भोजन हो, भोजन करने के बाद में वह तुरंत सोने की कोशिश करते हैं और सोना चाहते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा पेट की चर्बी को बढ़ावा देता है। यह अभ्यास चयापचय प्रक्रिया में सहायता करता है और पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो पाचन को कितना मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। यह अभ्यास वसा जलाने में मदद करता है, सुस्त अंगों को जगाता है और पाचन तंत्र को पोषण देता है। तो अग्निसार है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है, यह आपने शिविर में देखा। और शिविर में बहुत सारी ऐसी हमने प्राणायाम करवाए हैं जो कि उनका महत्व सुनने मात्र से और करने मात्र से ही आपको दुगना लाभ लगता होगा कि यह मिल जाएगा। तो आज अग्निसार को हम जानेंगे कि अग्निसार कितनी बार करना चाहिए। 3 से 4 बार अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि जो प्रथम अवस्था में कर रहे हैं वह 1 से 1.5 मिनट से शुरू करते हुए ही हम उसे 4 से 5 की स्थिति में ले जा सकते हैं। अग्निसार अनुलोम विलोम का दूसरा नाम है? नहीं, अग्निसार जो है यह पेट से संबंधित होता है। पेट की सारी प्रक्रियाओं को यह आपस में मिला करके बहुत ही ढंग से आपको ये नया एक प्राणायाम बताता है, जैसा कि ओजस अग्निसार। ओजस अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है, आइए हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं। अग्निसार प्राणायाम यानी ओजस अग्निसार की प्रक्रिया। इस प्राणायाम का अभ्यास खड़े होकर, बैठकर या लेटकर तीनों तरह से आप कर सकते हैं। सहजता से जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोकें, पेट को नाभि पर बार बार झटके से अंदर खींचें और ढीला छोड़ें। अर्थात श्वास को रोककर रखते हुए पेट को तेजी से 3 बार फुलाएं और पिचकाएं। यानी पेट को बार बार पिचकाना है और बार बार उसे ढीला छोड़ देना है, जिसकी वजह से इसकी जो पाचन क्रिया है उस पर सीधा का सीधा असर पड़ता है। पानी की खपत के, जो कि पानी नहीं पीते हैं लोग, उन्हें भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ओजस अग्निसार पानी की जो कमी है उसे भी पूरा करता है। लेकिन ओजस अग्निसार हम करेंगे और पानी की भी प्रक्रिया को अगर हम निरंतर लेते रहेंगे तो हमें इसका दुगना लाभ मिलता है। तो योग शिविर में आज का 5वां दिन यानी कि आपने आज किया ओजस अग्निसार, तो कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा और हमारे शिविर में निरंतर ऐसे ही बने रहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, करें योग, रहें निरोग। नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। योग की योग पाठशाला में मैं समता योगिनी 8 दिवसीय योग के शिविर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि अभी की पहले की 3 दिन की शिविर आप सभी लोग मिलकर के करते होंगे। आज है शिविर का 4वां दिन, यानी कि आज हम करने वाले हैं उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमने पहले भी किया है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि उज्जयी प्राणायाम उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम क्यों है। उत्कृष्ट का हम पहले, सबसे पहले हम अर्थ जान लें। उत्कृष्ट, प्रशस्त, क्लासिक, श्रेष्ठ, शास्त्रीय, ललित, अच्छे से अच्छे व्यवहार को समझना, सभी दृष्टिकोण से उत्तम यानी जिसमें ढूंढने पर भी गलती नहीं मिल सके। जीवन एक उत्सव है जिसे उत्कृष्ट ढंग से ही मनाना चाहिए।
शाश्वत, जैसा कि हमने इसके पहले बताया था कि जिसका कोई अंत नहीं है, चिरजीव, ठीक वैसे ही उत्कृष्ट उज्जयी प्राणायाम। प्राणायाम के आगे उत्कृष्ट लगाने का सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य है कि उज्जयी प्राणायाम हम वैसे तो रोजमर्रा यानी कि हम अपनी लाइफ में इसको अपनाते हैं और करते भी हैं, लेकिन उत्कृष्ट इसको क्यों कहा गया है हम बताते हैं। जीवन एक उत्सव है, आप सभी को पता है कि हर दिन हम कुछ न कुछ नया अपने जीवन में सीखते हैं और उसे अमल करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसा श्रेष्ठ होता है, कुछ ऐसा प्रशस्त होता है जिसे हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, चाहे वो प्राणायाम की श्रृंखला में हो, चाहे वो हमारा निजी जीवन क्यों न हो। उज्जयी प्राणायाम के बारे में बताने से पहले हमने आपको बताया कि उज्जयी प्राणायाम उत्कृष्ट प्राणायाम क्यों है। जैसा कि बताया, उत्कृष्ट प्राणायाम में एक वर्ड ऐसा आता है, क्लासिक। तो यह क्लास

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक।
2: प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आज फाइनली 2 अक्टूबर, ऑफ कोर्स बचपन से ये डेट खास क्योंकि झंडारोहण और लड्डू और अब तो ज्यादातर जगह छुट्टियां, नहीं मेरी छुट्टी नहीं, ज्यादातर जगह छुट्टियां, राइट। सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग चौकार चेतनान। सो आज देखिए वो खास दिन 2 अक्टूबर, जब हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। यूं तो सुनने में महज एक दिन गांधी जयंती, लेकिन दरअसल उस शख्स के बारे में जिसने धोती पहन करके सारी दुनिया में भारत की एक नई तस्वीर उकेर दी, जिसने अपनी बातों से, अपने थॉट से न जाने कितने रिजिड लोगों की सोच को बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना और इतना बड़ा बदलाव लेकर आया। जी हाँ, ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियत को हम सल्यूट करते हैं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं गांधी जयंती की। चलिए इस सॉन्ग को पूरा मुकम्मल करते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है, क्योंकि आज दिन भी फ्राइडे है।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9216 9976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
4: सुबह ही आने के बाद चलिए बाप को ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। और जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं, थॉट तो हमने कहा था अभी जस्ट जाने से पहले कि हम आने के बाद थॉट बताने वाले हैं। और फाइनली इस वक्त ये वक्त आ गया है कि आपको आपका आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट दे दिया जाए। सो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स, एज ऑलवेज। सो चलिए बताते हैं आज का थॉट ऑफ द डे मॉर्निंग वाले शो का आखिर क्या है।
5: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आज का जो थॉट है दरअसल वो ये कहता है कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, और कब बस खामोशी से टिके रहना है। इसे समझना ही असली और गहरी समझदारी है। बहुत गहरी बात है। कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, और कब बस शांति से टिके रहना है। इसे समझना ही असली और गहरी समझदारी है। कुछ भी अलग होने पर हम काफी अलग हो जाते हैं, काफी अलग भागने लग जाते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में कहां पीछे हटना है, कहां आगे बढ़ना है। अगर ये सही से पता हो तो शायद इसी को ही असली समझदारी कहा जाएगा, राइट? क्योंकि कई बार आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ना जाने फिर क्या होगा। कई बार पीछे हटना होता है, क्योंकि अगर पीछे नहीं हटेंगे तो ना जाने क्या होगा। लेकिन कई बार बिना कुछ कहे बस शांति से टिके रहना होता है, और इन्हीं चीजों को समझना कि कब बढ़ना है, कब हटना है, और कब शांति से टिके रहना है, स्थिर खड़े रहना है, बस इसी की असली और गहरी समझदारी इसी को बोलते हैं। सो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे और आ ही जाते हैं, और हो सकता है चल ही रहे हों, तो ये आपको डिसाइड करना है कहां से आपको आगे बढ़ना है, कहां से आपको पीछे हटना है, और कहां पे आपको स्थिर शांति से खड़े रहना है। ये आपको देखना होगा। ऑफ कोर्स देखिए, और जैसा जो अप्रोप्रिएट हो, हटने लायक हो हट जाइए, बढ़ने लायक हो बढ़ जाइए, और स्थिर होकर खड़े रहने लायक हो तो इंतजार कीजिए। यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। कहते हैं कि थॉट सिर्फ थॉट नहीं होते हैं, जिंदगी के फलसफे होते हैं। न जाने किसने इस थॉट को महसूस किया होगा, कितनी गहराई से किया होगा, और आज ये थॉट ऑफ द डे जो है वो इतना खूबसूरती से बयां कर रहा है। तो भाई, कैसा लगा आपको आज का फ्राइडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे मॉर्निंग वाले शो में, कमेंट करिए और बताइए। फिलहाल ले चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, क्योंकि आज हम मना रहे हैं 2 अक्टूबर, और साथ ही साथ स्पेशल फ्राइडे। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या हाल चाल है वैसे आपके? चलिए एक बार वापस से अपना हाल चाल ज़रूर बता दिए, क्योंकि फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने की तरफ। और वो कहाँ मिलेंगे? चैट पर। सो ऑफ कोर्स आइए मिलते हैं चैट पर।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

चैट पर जो सबसे पहला मैसेज आया है हमारे अनूप जी का आया है, और आप लिखते हैं, किसी को पाना और खोना सबसे आसान है, सबसे मुश्किल है संभाल कर रखना। वाओ, सुप्रभात, आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। बात बहुत सही कही आपने, थैंक यू सो मच टू यू। आशु जी लखनऊ से हैं, सुबह का मौसम जैसे जन्नत का एहसास, आंखों में नींद और चाय की तलाश, जागने की मजबूरी, थोड़ा और सोने की आस, पर आपका दिन शुभ हो हमारी सुप्रभात के साथ। क्या बात है, आपको भी सुप्रभात, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, आशु जी फ्रॉम लखनऊ। एंड अरविंद मौजूद हैं, आप लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे डियर आरजी सर, थैंक यू सो मच अरविंद, आपका दिन भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी विशेज और ये फ्लावर्स सेंड करने के लिए। आगे लिखते हैं, पीपल आर लोनली बिकॉज दे बिल्ड वॉल्स इंस्टेड ऑफ ब्रिजेस। वाओ, क्या बात है, बहुत ही गहरी शायद बात आपने लिख दी है, थैंक यू सो मच टू यू अरविंद। एंड आशु जी आज के थॉट पर रिएक्शन देती हैं, कोई व्यक्ति आपके काम की प्रशंसा करे या ना करे, आप मस्त होकर अपना काम करते रहिए, ईश्वर तो देखता ही है, वो तो निश्चित रूप से आपको उत्तम फल देगा। वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको भी ये थॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हमारी प्रीति जी आ गई हैं बहराइच से, और आप भी लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। अंबुज पांडे भी मौजूद हैं, अंबुज आपका स्वागत करते हैं, आपने भी लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं अंबुज गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। एंड ऑफ कोर्स वेलकम है आपका जो सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी से, साथ ही वो जो सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, और उनका भी वेलकम है जो सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। सुबह ही चलिए, सुबह का वक्त है और सुबह का शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा। फिलहाल वक्त है कुछ आपको बेहतरीन सा सुनाने का, है ना, और सुनाना भी चाहिए। सो इस सॉन्ग को सुनिए, और उसके बाद जब वापस से लौटते हैं तो आपको ले चलेंगे लोकल अपडेट्स यानी सिटी अपडेट्स की तरफ। सो रेडी रहिएगा ये जानने के लिए कि भाई आज आपके शहर की सिटी अपडेट्स में आपको किन किन चीज़ों की क्या क्या अपडेट्स मिलने वाली है। स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वैसे तो कई सारी अपडेट्स है और शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट्स की तरफ से, चूंकि जो तूफान गया है वो अभी भी अपने निशान छोड़ कर गया है। सो खंभों की कमी से फिलहाल जो है वो सप्लाई, पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। आंधी बारिश के 8 दिन बाद जो है कल भी ज़िले में सैकड़ों ऐसे गांव थे जहां बिजली की समस्या है। सो 12,000 से ज़्यादा खंभे टूटने और बड़े नंबर्स में ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने से बिजली की जो आपूर्ति है उसमें देरी हो रही है। सो विद्युत भंडार खंड के XENPC ने बताया कि अब तक 8,051 खंभों की मांग मिली है। अवर अभियंताओं की मांग पर 1,500 से ज़्यादा खंभे अवेलेबल कराए जा चुके हैं। स्टोर में फिलहाल 200 से 250 खंभे हैं। अयोध्या, बहराइच, बड़हलगंज से भी खंभे मंगाए जा रहे हैं। सो देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता ने बताया है कि 4 पावर हाउस को छोड़कर सभी चालू हो गए हैं और कल रात तक देवीपाटन मंडल के सभी 114 उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल करने का फिलहाल लक्ष्य रखा है और इसके बाद LT लाइन की मरम्मत करके गांव में आपूर्ति शुरू कराई जाएगी। सो बिजली नहीं मिलने से जो है वो हाईवे भी जाम किया गया है। आपको बता दें झंझरी ब्लॉक तिराहे के पास में कल शाम बिजली नहीं मिलने से नाराज वहां के शांतिपुरम के सैकड़ों लोग गोंडा अयोध्या रास्ते पर उतर आए और लोगों ने टूटा विद्युत पोल सड़क के बीच में रख करके प्रदर्शन किया। इससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। फिलहाल सूचना मिलने पर नगर कोतवाल भी पहुंचे। सो बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने ग्रामीणों को समझाया और बिजली अधिकारियों से बात करके जल्दी आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन मिलने के बाद रात करीब 8 बजे प्रदर्शन खत्म हुआ, जिसमें कई ग्रामीणों ने बताया कि भाई बिजली गुल की प्रॉब्लम है, जिससे पानी की भी प्रॉब्लम आ रही है और उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो फिलहाल चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली अपडेट जो आ रही है वो ऑफ कोर्स विश्नोहरपुर उमरी बेगमगंज से आ रही है। चूंकि जलस्तर ज़रूर घट गया है पानी का, लेकिन मुसीबतें वैसी की वैसी ही है। सो सरयू का जलस्तर लगातार घटने तो लगा है, लेकिन माझा का जो एरिया है बाढ़ की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है। कल सुबह 8 बजे एल्गिन ब्रिज पर जो लेवल था वो था 106.130 मीटर, जो ख़तरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर है। पानी घटने के बावजूद ब्योंदा माझा से नवाबगंज के लोलपुर तक बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। करीब 2 दर्जन गांव और मजरे जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं और संपर्क मार्गों पर पानी और कीचड़ होने से आना जाना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अब अगली अपडेट की तरफ, चूँकि ये तो था भाई बाढ़ और उसके पानी से जुड़ी हुई अपडेट। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है वो दरअसल आ रही है NCC के प्रशिक्षण को लेकर के। सो आपको हम बता दें मनकापुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सिसवा में कल से शुरू होने वाला NCC का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर जो है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और हवलदार ने बताया कि कुछ अपरिहार्य कारणों से प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया। अब शिविर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके अलावा आपको हम बता दें कि ANM ने भी काम का बहिष्कार किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में काम करने वाली ANM ने अपनी मांगों को लेकर कल से काम का बहिष्कार, अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना शुरू करने का ऐलान किया है। सो इस संबंध में ANM कर्मियों ने CMO को ज्ञापन सौंप करके अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखा है। इसके अलावा अगली जो अपडेट्स आ रही है वो आ रही है समाज कल्याण विभाग का जो ऑफिस है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, सो कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी DM दयानंद प्रसाद ने जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय जो है वो ट्रांसफर करने की घोषणा की, शिफ्ट करने के लिए। और उन्होंने बताया कि विकास भवन के 3rd तल पर संचालित जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय भूतल पर स्थित DRDA भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पेंशन और बाकी योजनाओं के लिए आने वाले बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। सो मीडिया से बातचीत में 28 सितंबर को बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाए जाने

बाद इसका असर जो है वो दिखाई दिया है। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जो जागरूक किया गया है। सो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहर के ही लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया और नगर पालिका परिषद गोंडा और आईटीसी की टेक्निकल पार्टनर टीम के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम में बीएड के जो स्टूडेंट्स थे उनको स्वच्छता के महत्व और समाज को इसके प्रति जागरूक करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 10 दिन का जो ट्रेनिंग है और उन्नत टूल किट के लिए आवेदन करने वाले कारीगरों का जो इंटरव्यू है वो 5 से 8 अक्टूबर तक जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में होगा। सो इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शुरू होगा। जिला उद्योग उपायुक्त ने बताया है कि बढ़ई का साक्षात्कार 5, लोहार का 6, राजमिस्त्री का 7 और नाई मोची और धोबी का जो इंटरव्यू है वो 8 अक्टूबर को होगा। इसके बाद अगली जो अपडेट आ रही है वो देवी पाटन मंडल की हैंडबॉल टीम जो सेलेक्ट हुई है उसको लेकर के आ रही है। सो खेल विभाग और हैंडबॉल संघ की तरफ से चित्रकूट में 7 से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए देवी पाटन मंडल की टीम का सिलेक्शन हो गया है। सो बालिका खिलाड़ियों का ट्रायल जो है वो बृहस्पतिवार को उतरौला रोड में मौजूद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कराया गया और जो चुने हुए खिलाड़ी हैं इनको प्रतियोगिता मंडल का ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट है वो है अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 से जुड़ी हुई। जी हाँ, सो अमर उजाला फाउंडेशन के जरिए जो संचालित होने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा है 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। फिलहाल इस एग्जाम का आयोजन दो फेजेज में किया जाएगा। पहला फेज 18 अक्टूबर 2026 को और दूसरा फेज जो है वो 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। सो पात्र पाए गए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिट कार्ड का लिंक उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। सो एडमिट कार्ड में कोई भी दिक्कत ना हो, घबराएं नहीं, अपने स्कूल का फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड के साथ लेकर के आएँ। स्टूडेंट्स को जो है वो परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले ही पहुँचना होगा। इसके बाद ले चलते हैं आपको अगली अपडेट की तरफ। सो जो कि गांधी जी के विचार को लेकर के है और आज 2 अक्टूबर है। सो गांधी जी का नाम आज भी जो है वो हमारे यंगस्टर्स जानते हैं लेकिन उनके विचारों को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी है। सो गांधी जयंती पर जो है इस तरह से लेकर के कई सारे युवाओं से बात की गई और कहीं ना कहीं ये ज़रूर समझ में आया कि आज भी जिन्होंने गांधी जी को पढ़ा है, जो उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, वो सच में उनकी चीज़ों से इंस्पायर्ड है कि एक शख्स इतने बड़े बड़े चेंजेस कैसे ला सकता है या फिर एक शख्स इतना कूल एंड काम होकर के कितने बड़े परिवर्तन को सच में कर दिखाने वाला है। इसके बाद जो है आज होने वाले इवेंट्स के बारे में अगर आपको हम बताएं तो सुबह 10 बजे से जिला पंचायत सभागार में गांधी जयंती पर समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। पैदल चाल जो है ये प्रतियोगिता की जा रही है सुबह 9 बजे से। जी हाँ, सो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गांधी जयंती पर पैदल चाल प्रतियोगिता आज हो रही है सुबह 9 बजे से। इसके अलावा आपको बता दें कि सम्मान समारोह भी हो रहा है वजीरगंज के अशोक कुमार टुकिया में। शांति फाउंडेशन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है सुबह 11 बजे से। सो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि हम गोंडा में आज होने वाले हैं जिसको लेकर के हमने आपको बताया। आई होप कि भाई आप तक भी ये अपडेट्स पहुंच गई होगी और ज़रूर आपके काम की भी रही होगी। सो चलिए भाई, आपको गोंडा अपडेट्स में क्या मिला है ये ज़रूर आप भी समझ सकते हैं और सोच सकते हैं और अगर चाहे तो बता भी सकते हैं। फिलहाल आप सुनते रहिए क्योंकि आज बहुत कुछ है जो आप तक मुझे पहुँचाना है आपके ही अपने मॉर्निंग वाले शो में।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

इकबाल बाबा से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपके मॉर्निंग जॉगर जो अदनान आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉगर जो अदनान। सो यस, आज का जो दिन है वो 2 अक्टूबर है और ऑफकोर्स गांधी जयंती के रूप में जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो कहते हैं कि गांधी जो है वो सिर्फ एक पर्सन नहीं बल्कि एक विचारधारा है, एक थॉट है। और आज का दिन जब गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो शायद इस तरफ ज़्यादा ही ध्यान जाता है कि आखिर एक शख्स जो है वो एक शख्स ना होकर के एक शख्सियत, एक विचारधारा कैसे है। देखिए, मुझे लगता है ना कि हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं किसी बात का रेफरेंस देके वो बताता है कि फलाने ने कहा था, किसी दार्शनिक ने बताया था, किसी बड़े लीडर ने बताया था, मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने वहाँ पढ़ा था। पर शायद एक सोच इंसान तब बन जाता है जब वो खुद से सोचना शुरू कर देता है, यानी सारे रेफरेंसेस को ले करके उसका जो अपना प्रोसेस होता है उस थॉट पर, जो उसका अपना कंक्लूजन होता है, जो उसके अपने बिलीव्स होते हैं, अपने लॉजिक्स होते हैं, वही शायद लेकर चल पाते हैं। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो बहुत वक्त से आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी कि हर शख्स अपने आप में बिल्कुल अलग तरह था। वो कुछ लोगों से प्रेरित तो ज़रूर होते थे लेकिन उनका अपना तरीका इतना अलग था कि उन जैसा फिर और कोई दोबारा ना हुआ ना किसी ने बताया। और शायद यही वो वजह है कि इसलिए ऐसे लोगों को हम एक शख्सियत की तरह देखते हैं। सो हालांकि आप गांधी जी को कैसे देखते हैं, यानी किस विचार से आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, एक बार अभी आप सोचिए और शायद मुझे भी सोचना चाहिए। तो ज़रा सा सोच लेते हैं, उसके बाद वापस से मिलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो एक पर्सन ना रह करके एक विचारधारा बन गया है।

0: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
1: जी सर।
0: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
1: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे, और क्या।
2: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
4: हाँ जी, तो भैया हम बता रहे थे आपको कि भाई किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा कहा जाता है और वो एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की हुकूमत से भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ भी उठाई। अब चूंकि अहिंसक विरोध उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में बहुत इज्जत के साथ में याद किया जाता है कि अहिंसा के साथ किस तरह अपनी बातों को मुकम्मल किया जाए। जाहिर है आपने भी सुना होगा, लेकिन सुनना तो एक अलग बात है। कभी लाइफ में अगर करके देखा है तो शायद पता लगेगा कि आखिर क्या सिखाया गांधी जी ने हमको।
5: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

किसी शख्स को पढ़ लेना उसको जानना नहीं होता है, बल्कि उनकी चीजों को अपने अंदर ले आना, उन आदतों को अपनी आदत बना लेना, शायद ये होता है ना जी। हाँ, सो अहिंसा और शांति के ये पुजारी जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे, वो शख्स कैसे भारत के गरीबों का नुमाइंदा बना जो कि अपने टीन एज में एक बागी कहलाते थे। हाँ, कुछ चीजें थोड़ा सा सोचने में ऑड सी लगती हैं, पर एक्चुअल में जो ऑड सी चीजें लगती है वही किसी अलग रास्ते पे ले जाती है, दैट्स द पॉइंट। सो अगर इनके फादर की बात करें तो एक अमीर खानदान में इनकी पैदाइश हुई थी। इनके पिता जो थे करमचंद गांधी, पोरबंदर के राजा के दीवान थे, और बेटा मोहन को उनकी माँ ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, यानी ये माँ से सीखा था उन्होंने। सो मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है वो उत्तर पश्चिमी भारत के पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। चूंकि इनका परिवार एक अमीर खानदान था, मोहनदास करमचंद गांधी के फादर जो हैं करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में थे, और उनकी माँ चूंकि एक धार्मिक महिला थी जो अक्सर पूजा पाठ के लिए मंदिर जाती थी और उपवास रखती थी। सो माँ ने जो है वो नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया था इन्हें, और इन्होंने गांधी को हमेशा हिदायत दी कि वो साधारण रहे, उनका रहन सहन और अहिंसा की भी सीख उन्होंने दी। लेकिन जब बात आई 1883 तक, तो एक बागी नौजवान के रूप में महात्मा गांधी बनने से बहुत दूर थे मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, सुपोर बंदर के बाहर ये पहली बार पढ़ाई के लिए राजकोट गए थे, क्योंकि बच्चों को अच्छी परवरिश देने की नीयत से मोहनदास के जो फादर थे वो अपने परिवार रहने के लिए पोरबंदर से राजकोट ले आए। यहाँ अच्छी तालीम का इंतजाम था और मोहनदास को अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। सो 13 साल की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा गांधी से की गई, और वो राजकोट की ही रहने वाली थी, और शादी के वक्त कस्तूरबा गांधी जो हैं मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी। उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। सो परिवार की परंपरा के खिलाफ जा करके मोहनदास करमचंद गांधी ने कई सारी चीजों को किया, फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम को बाद में जो उनकी नजर में पाप था या तो वो प्रायश्चित करते थे, हालांकि उन्होंने सत्य के प्रयोग में इन सभी का जिक्र किया है। सो मोहनदास करमचंद गांधी के फादर जब अपने आखिरी वक्त में थे, सो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए, और उसी वक्त उनके फादर का निधन हो गया। सो इस घटना के बाद गांधी जी को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ, और उनके पहले बच्चे का जो निधन जन्म के कुछ वक्त बाद ही हो गया। सो गांधी जी ने कहीं ना कहीं उनको ये तोड़ देने वाला था और एक बार को सोचने वाला था। सो अपने फादर की मौत के बाद इनके पास ना तो गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं और खुद को अभागा मानता हूं, मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा जब मैंने देखा तो ये सोचा कि अगर मुझ पर कोई भी ऐसी चीज हावी नहीं हुई तो मेरे पिता ने मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। ये बड़ी अलग बात थी। सो मोहनदास गांधी जो है वो मुंबई के भावनगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ खुश नहीं थे। तभी उन्हें लंदन के मशहूर इनर टेंपल में कानून की पढ़ाई करने जाने का प्रस्ताव मिला था। सो परिवार के बुजुर्गों ने मोहनदास को समझाया कि विदेश पढ़ने जाने पर वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे, लेकिन बड़ों के एतराज को दरकिनार करके गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में मोहन गांधी पूरी तरह पश्चिमी रंग ढंग में रंग गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में उन्होंने अपने लिए भाईचारा दिखा और उससे जुड़ गए। इसके अलावा कहीं ना कहीं मोहनदास करमचंद गांधी जब पढ़ाई पूरी कर लिए तो मोहनदास गांधी जो है
वो भारत लौट आए और वकालत करने लगे। ये अपना पहला मुकदमा हार गए और इसी दौरान इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी के घर से बाहर निकाल दिया गया। सो इस घटना से बेहद अपमानित मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रपोजल मिला, जो उन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। सो दक्षिण अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान समेत डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया। सो दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों से हो रहे सौतेले बर्ताव और भेदभाव के खिलाफ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और वहीं के नटाल सूबे में गांधी जी ने भारतीयों को बाकी समाज से अलग रखने के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू किया। सो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान ही इन्होंने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग किए, जो इनके अहिंसा के व्यापक विचार का हिस्सा भी थे। इसी दौरान गांधी जी ने सफेद धोती पहननी शुरू कर दी, जो कि सही है, और उस वक्त इंडिया की पहचान ही यही थी। 1913 का दौर आया और मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन भी शुरू किया। इसी दौरान आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों और खेतिहर मजदूरों को एकजुट करके उनके अगुआ बने। सो पिछले कई सालों से अपने संघर्ष की मदद से मोहनदास गांधी ने 2221 लोगों के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा निकालने का फैसला किया और इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। सो इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया, इन्हें 9 महीने की कैद सजा सुनाई गई, लेकिन इनकी शुरू की गई हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय पर लगाया गया टैक्स वापस देना पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। सो दक्षिण अफ्रीका में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ गांधी जी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया और इस कामयाबी के बाद मोहनदास करमचंद गांधी गांधी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाने पहचाने लगे। सो दक्षिण अफ्रीका के अपने आंदोलन की कामयाबी के बाद मोहनदास गांधी एक विजेता के तौर पर स्वदेश लौटे और भारत आने के बाद मोहनदास गांधी और कस्तूरबा ने तय किया कि वो रेलवे के तीसरे दर्जे के डिब्बे में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। सो इस भारत यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपने देश के गरीबी आबादी को देखा तो उन्हें जबरदस्त सदमा लगा। इस दौरान गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के लाए हुए काले कानून रौलट एक्ट का विरोध का ऐलान किया। इस कानून के तहत सरकार को ये ताकत मिल गई थी कि वो किसी भी नागरिक को सिर्फ चरमपंथ के शक में गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। सो मोहनदास गांधी के कहने पर पूरे देश में हजारों लोग एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई जगह हिंसा भड़क उठी। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 1,300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सो इस हत्याकांड के बाद गांधी जी को यकीन हो गया कि उन्हें भारत की आज़ादी का आंदोलन अब फाइनली शुरू ही करना होगा। फिर दौर आया 1921 का, भारत की स्वाधीनता के लिए एक संघर्ष। सो अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से गांधी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेन चेहरा बन गया और ब्रिटेन से भारत की आज़ादी के आंदोलन के अगुआ बन गया। संघर्ष के लिए महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनमानस के बीच एक लोकप्रिय पार्टी बनाया और उससे पहले कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ऐसे समूह के लिए थी जो शायद जिसमें हर कोई नहीं जुड़ पाया था। सो गांधी जी ने धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों को आज़ादी के आधार पर भारत के लिए आज़ादी मांगी। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की अपील होने पर विरोध प्रदर्शनों को भारतीय समाज के सभी वर्गों और धर्मों का समर्थन मिलने लगा। सो इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों से असहयोग आंदोलन शुरुआत की और इनकी अपील पर भारत की जनता ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। इसी के जवाब में ब्रितानी हुकूमत ने गांधी जी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर दिया और उन्हें 2 साल तक जेल में रखा। सो जब एक अखबार ने गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत का देसी लिबास पहनता हूं क्योंकि यह भारतीय होने का आसान और कुदरती तरीका है। इसके बाद आया आजादी के लिए नमक यात्रा।
आजादी के लिए नमक की यात्रा जब अंग्रेज हुकूमत के लिए गांधी के आंदोलन और उनकी मांगों की अनदेखी करना मुमकिन नहीं रह गया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। लेकिन इस चर्चा में अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को दूर रखा। इससे गांधी जी बहुत नाराज हुए और इन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ अभियान शुरू किया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। तो इसी के चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। तो गांधी जी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ डांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नमक बना करके कानून तोड़ा। इसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। गांधी का आंदोलन बहुत फैल गया और हजारों लोगों ने अंग्रेज हुकूमत को टैक्स और राजस्व अदा करने से मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। तब गांधी सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की लंदन रवाना हुए। सो नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा था कि इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। और वही हुआ भी। सो ये एक बहुत लंबा सफर जो कि गांधी जी का रहा। शायद अभी कुछ और बातें हैं जिनको हमें आप तक पहुंचानी है, क्योंकि सफर तो अभी जारी है। और आज का शो कह सकते हैं कि हाँ, गांधी नामा है।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: गांधी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक विचारधारा है, एक थॉट प्रोसेस है। जी हाँ, और हम बात कर रहे थे गांधी जी के बारे में, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताया। फिलहाल हम पहुँचे थे उनकी उम्र के गोल मेज सम्मेलन वाले पड़ाव पर। चले बताते हैं उसके आगे कि जब गांधी जी लंदन पहुँचे गोल मेज सम्मेलन में, तो फिर क्या हुआ और उसके बाद कैसे उनकी जिंदगी बदलती गई और किस तरह से वो लापरवाह गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो गांधी जी लंदन में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले, आपको हम बता दें कि महज इकलौते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। सो भारतीय लिबास में लंदन के सम्मेलन में पहुंचे और इन्होंने भारत की एक ताकतवर जो है इमेज पेश की, लेकिन गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के लिए विफल हो गया क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य भारत को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही कहीं ना कहीं दूसरे भारतीय प्रतिनिधि गांधी जी के साथ नहीं थे क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि गांधी जी सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि गांधी जी को ब्रिटिश बादशाह जॉर्ज फिफ्थ से मिलने का मौका जरूर मिला। साथ ही गांधी जी ने लंका शायर में मौजूद मिल के मजदूरों से भी मुलाकात की और इसके बाद इन पब्लिक मुलाकातों से गांधी जी को खूब सारी शोहरत मिली। साथ ही भारत की जो राष्ट्रवादी मांग थी इसके लिए ब्रिटिश जनता की हमदर्दी भी इन्होंने हासिल की। सो गांधी जी के इस ब्रिटेन दौरे के बारे में ताकतवर ब्रिटिश राजनेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि यह बहुत डरावना है कि श्री गांधी जी एक देशद्रोही और औसत दर्जे के वकील हैं, अब अपनी नुमाइश फकीर के तौर पर कर रहे हैं। फिर दोहराया 1942 का गांधी जी का वो आंदोलन जो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। जी हां, 1942 का दौर। सो गोलमेज सम्मेलन में अपनी नाकामी के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से छोड़ने का फैसला किया। पार्टी के अंदर वो हाशिए पर थे जब चर्चिल ने नाजियों के खिलाफ जंग में भारत को ब्रिटेन का समर्थन करने को कहा तो गांधी जी इस बात पर अड़ गए कि भारत को तब तक ब्रिटेन के नाजियों के खिलाफ जंग में समर्थन नहीं करना चाहिए जब तक भारतीय अपने ही घर में गुलाम हैं। बात तो बहुत सही थी। सो फिर क्या था, अब गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नए अहिंसक आंदोलन जिसका नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हुए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने को तैयार नहीं था। सो जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई। इसके कई महीनों बाद 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से ही गांधी जी ने पहले कहा था या तो हमें भारत को आजाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आजीवन गुलामी की जिंदगी जीने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली वो वक्त आया 1947 जिसको आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी आजादी मिली। सो भारतीयों के बीच बढ़ती आजादी की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही थी और आखिरकार मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की आजादी के लिए चर्चा करनी शुरू की, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जिसके लिए गांधी जी इतने वक्त से संघर्ष कर रहे थे। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्टेट बनाए गए, यानी दो देश बनाए गए, और ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। सो राजधानी दिल्ली में जिस वक्त देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन एकजुट देश का गांधी का जो सपना था वो बिखर रहा था क्योंकि इसी बंटवारे से बड़े पैमाने पर मर्डर्स, खून खराबा और करीब 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। दुखी होकर गांधी दिल्ली शहर छोड़ करके कलकत्ता रवाना हो गए ताकि हिंसा को रोक कर वहां शांति स्थापित की जा सके। और 1948 अगले ही साल वो दौर जब उन्होंने विदा ले लिया। सो देश के बंटवारे की वजह से जबरदस्त हिंसा हुई। कोलकाता से गांधी दिल्ली लौटे ताकि वहां रह रहे मुसलमानों की हिफाजत कर सके, दूसरे समुदायों की हिफाजत कर सके जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रहने का फैसला किया था। और गांधी जी ने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अनशन शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो उन पर एक कट्टरपंथी ने हमला कर दिया और गांधी जी को सीने में 3 गोलियां मारी।
सो फिलहाल उनकी मौत का जश्न मनाया गया उन लोगों के जरिए जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। लेकिन ज्यादातर भारतीयों के लिए महात्मा गांधी की मौत एक राष्ट्रीय आपदा थी। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली तो उसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। यमुना के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया और पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी के इस शख्स के गुजर जाने का मातम मनाया। गांधी जी अपने जीते जी एक एकीकृत भारत का सपना पूरा होते तो नहीं देख सके। सो मौत के बारे में खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि मौत के बीच जिंदगी अपना संघर्ष जारी रखती है, असत्य के बीच सत्य भी अटल खड़ा रहता है और चारों तरफ अंधेरे के बीच रोशनी चमकती रहती है। दरअसल ये बातें जो है ये डेविड हार्डीमैन जो कि इतिहासकार है उनके जरिए बताया गया जो मैंने आप तक पहुंचाया। आई होप कि गांधी जी को समझने के लिए शायद पूरी लाइफ को जानना जरूरी था। शुरुआत में एक ऐसे गांधी जिनको बागी कहा गया जो बागी रहे और उसके बाद वक्त आते आते राष्ट्रपिता तक पहुंच गए। ऐसी हमारी आपकी लाइफ में भी है, हमारे आपके पड़ोस में मोहल्ले में भी ऐसे कई लोग रहते हैं जिनको शायद हम जज कर लेते हैं आराम से, पर कब कौन कहां क्या करने वाला है नहीं पता होता है। एंड सबकी लाइफ में होता है, जो जैसा भी होता है वो अपने आसपास की चीजों की वजह से होता है। तो इसीलिए शायद किसी पे इल्जाम रख देना, किसी को ही कटघरे में खड़ा कर देना ये सही नहीं होता है, क्योंकि जब सेम चीज हम अपने पे अप्लाई करते हैं तो हम तो अपने पीछे बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में बोलते हैं तो हम फैसला सीधे कर देते हैं कि ये ऐसा है, बट एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं होता है। सो फिलहाल मुझे भी ये समझ में आता है गांधी सिर्फ एक शख्स और शख्सियत नहीं बल्कि एक सच में विचारधारा है जिसमें बहुत सुकून के साथ चीजें की जा सकती है और गलत के खिलाफ बोला जा सकता है, बिना डंडा उठाए, बिना मारे, बिना झगड़े अपनी बात कही जा सकती है और हजारों लाखों का साथ भी आपको मिल सकता है। मुझे लगता है कि इस जर्नी से हमको ये समझ में आता है। फिलहाल आपको क्या समझ में आता है अभी बता सकते हैं, है ना? क्योंकि गांधी जब नाम आता है तो क्या एक बूढ़ा आदमी डंडा लिए धोती कुर्ता पहने आगे बढ़ता चला जा रहा है, या फिर कोई विचार आता है जिसको आज इतने सालों बाद भी आप कहते हैं कि अपने आप में बड़ा ही जीवंत विचार है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि भाई मानना तो सबका अपना अपना होता है ना। अब आप क्या मानते हैं ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिलहाल आपने ट्यून कर रखा है रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं गांधी नामा के बारे में, क्यों? क्योंकि आज है 2 अक्टूबर और ऐसा दिन जब हम ऐसी शख्सियत को याद करते हैं जिनकी वजह से आज हम जिस जगह है उसमें उनका बहुत अहम रोल है, और हमारी लाइफ में अगर हम कोई विचार उनके अपनाते हैं तो उसका भी बड़ा रोल है। स्टे ट्यून्ड। What?

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: सो घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है 10:49 हो गए, और फिलहाल आपके कई सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। और मैसेजेस को हम मैसेजेस तो कहते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये मैसेजेस नहीं बल्कि आपकी भेजी गई ब्लेसिंग्स हैं जो कि चैट बॉक्स पर साक्षात हमको नजर आती है। तो चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस में क्या कुछ लिखा है आपने और क्या कुछ लिख भेजा है अपने मॉर्निंग जॉक अर्जित नांग के पास, चलते हैं देखने। लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो मैसेजेस तो काफ़ी सारे हैं और उन्हीं मैसेजेस को हम पढ़ने भी वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कुछ आपने लिख भेजा है। तो चलिए भाई शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से हमने नहीं पढ़ा था। सो इसके बाद धर्मेंद्र मोहन जी आ गए हैं फ्रॉम आवास विकास, लिखते हैं अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। जीवन में अवसर मिले तो किसी की सहायता अवश्य कीजिए, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लौटा दे और उसकी ज़िंदगी सवर जाए। बेशक सही बात है। वैसे ये छोटी सी, कितनी छोटी आप बात कर रहे हैं, खैर आप बताइएगा। एंड इसके बाद लिखते हैं माय फ्रेंड्स एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशु जी लिखती हैं राधे राधे सभी को, आपको भी। एंड हरीशचंद सविता हैं फ्रॉम मुंबई, लिखते हैं सुप्रभात और साथ ही एक कप प्याली चाय। वैसे ये था किसकी, हरीशचंद जी आपकी थी या मेरी है, प्लीज़ आप बता दे। एंड सबलू सावंत है सांता क्रूज मुंबई से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजे अदनान जी, गुड मॉर्निंग टू यू। सबलू आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड राहुल हैं फ्रॉम झुंझुनू राजस्थान से, गुड मॉर्निंग अदनान सर, और सॉन्ग जो है वो काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। रेखा कुशवाहा जी हैं गोंडा से, लिखती हैं गुड मॉर्निंग सर एंड एवरीवन, 2 अक्टूबर बापू एंड फादर ऑफ नेशन, ऑफकोर्स हमारे राष्ट्रपिता। एंड राहुल को सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, धर्मेंद्र जी ने भी रिएक्शन दिए हैं, काफ़ी सारे इमोजीज, इवन आपने तो डायमंड भेज दिया है, बहुत महंगा चल रहा है इस टाइम। अरिबा शेख लिखती हैं हाय हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू अरिबा, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। एंड धर्मेंद्र जी लिखते हैं सर जी गाने का चयन बहुत सही तरीके से करते हैं आप, अजय हम इंसानों का चयन भी बहुत सही तरीके से करते हैं, अगर आप पास होते तो शायद देख लेते। तो इसके बाद वंशिका का है बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है यार, पसंद क्यों नहीं आएंगे, मतलब मैंने चलाए तो पसंद आने ही आने। बाय द वे आज का दिन तो बड़ा ही खूबसूरत रहा क्योंकि आज है फ्राइडे और आपको पता है कि भाई बॉलीवुड का कोई भी मूवी जब रिलीजिंग डेट की बात आती है तो ना जाने क्यों डे में लोग जो चूज़ करते हैं वो फ्राइडे चूज़ करते हैं। फ्राइडे हो सकता है ब्लॉकबस्टर डे कह सकते हैं। सो फिलहाल आज चूंकि 2nd of October भी है, यानी आज गांधी जयंती भी है, तो सिर्फ एक औपचारिकताएं करना या सिर्फ गांधी जयंती विश कर देना बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत फीका सा है। इसमें मज़ा तब आता है जब सच में उन विचारों को इवन जी पाए थोड़ा सा भी लम्हा, तो शायद हमको समझ में आता है कि ये विचार होते कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। बाप ये सोच लीजिए कि भाई एक विचार ही था, एक विचार था जिससे न जाने कितने और विचार जन्म लिए और वो विचार जो हैं एक्शन में आया और एक्शन का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के परिणाम में आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। तो ये छोटी सी चिंगारी कहाँ शुरू हुई थी, कितने 100 साल पहले शुरू हुई थी, किसके दिल में उठी थी, किस वजह से उठी थी, किस इंसिडेंट पे उठी थी, नहीं पता। और यही यूनिवर्स की ब्यूटी है, यानी कब कहाँ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और कब कहाँ क्या हो जाएगा इसका भी कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोगों को आज की ये बात और गांधी जी एक पर्सनालिटी नहीं बल्कि एक विचार हैं जिसको हम गांधीवादी विचार बोलते हैं, आई होप कि आप उस विचार को समझ पा रहे होंगे। वो विचार नहीं जो बड़े बड़े भाषणों में बोले जाते हैं, ना वो विचार जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे बनते हैं, बल्कि वो विचार जो हमारे दिल में समझ में आते हैं, जिनको हम जी पाते हैं, शायद वो विचार हमारे लिए कहीं ना कहीं इसकी सच्ची श्रद्धांजलि होते हैं और सच्ची सीख इन्हीं से मिलती है। थैंक यू एंड आई होप कि भाई आज काफ़ी कुछ जो आपने सुना अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में वो ज़रूर मिल गया होगा। फिलहाल धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास लिखते हैं सर जी जुमे की नमाज मुबारक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आशु जी ने भी बाय बाय बोल दिया है, लखनऊ से ही टाटा कर दिया है और गोंडा तक में उनका टाटा दिख रहा है, मतलब आपने जो बाय बाय किया है चैट बॉक्स पे वो आ गया है। सो चलिए बहुत अच्छी बात है। एंड यस, इस वादे के साथ जाइए कि कभी भी जब भी आपको अपनी राह में अंधेरा नज़र आ रहा होगा तो कुछ वक्त थम जाइएगा परेशान होने की बजाय, क्योंकि कई बार सिर्फ थोड़े से वक्त की ज़रूरत होती है, रोशनी होती है आसपास, बस आपकी आंखों तक आपकी समझ तक जो आने में उसको वक्त लगता है वो बड़ा ही मुख्तसर सा होता है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं उस दिन के बाद से हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। फिलहाल आज का ये शो कैसा लगा हमको ज़रूर आप लिख करके भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ अगर सच में आपको लगता है कि आप गांधी जी को जानते हैं तो ज़रा उनके विचारों को कई बार पढ़ने के बाद
आंखें बंद करके उसको अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको फील करिएगा, शायद सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन इतना सारा प्यार देने के लिए, इतनी सारी मोहब्बतों को लुटाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल मैं तो लेता हूँ विदा, लेकिन आपको बने रहना अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM पर, क्योंकि यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गांव की गूंज। गांव की गूंज के नए पड़ाव के लिए एक बार फिर मैं अंकुर, किरण, शेफाली और गुड्डू दुबे के साथ आप सबको ले जाने के लिए तैयार हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव की गूंज एक छोटी सी कोशिश है आप सबको अपने गांव, अपनी माटी से जोड़ने की, जिसमें हम लोग काफी सफल हुए हैं। गांव की गूंज की आवाज देश के कोने कोने में गूंज रही है और ये केवल संभव हो पाया है आपके साथ के कारण। तो अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम में कितनी शक्ति है। अगर आप और हम मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का हम आसानी से सामना कर सकते हैं।
1: हाँ अंकुर भाई, लेकिन आज इतनी फिलॉसफी क्यों? क्या चीज तुमको तंग कर रही है? अरे ऐसे क्यों बैठे हो भाई, कुछ तो बोलो।
0: शेफाली, मेरी दीदी के घर प्यारी सी नन्ही मुन्ही परी ने जन्म लिया। सब बहुत खुश थे, पर सबके चेहरों पर एक टेंशन साफ दिख रही थी कि अभी से

0: ग्रेट मन्नत एंड शिवानी। किरण जी, आपको पता है कि जितना सुंदर ये दोनों गाती हैं, उतना ही शोर मचाकर घर को सर पर उठा लेती हैं।
1: बेटियां होती ही हैं घर की रौनक। जिस घर में बेटी ना हो, जिस भाई की कलाई पर बहन की राखी ना हो, जिस घर में बहू ना हो, जहां माँ की ममता ना हो, वो घर घर नहीं होता। क्यों अंकुर?
0: वो घर क्या घर होता है शेफाली, ऐसे घर की तो हम कल्पना भी नहीं करते। फिर क्यों बेटियां भार होती हैं? क्यों उनके पैदा होने पर हम दुखी होते हैं?

0: थैंक्स किरण दीदी। आप अंकुर को बताइए कि आज टाइम बदल रहा है, आप बेटियों को बेटों के बराबर मानते हैं, आज बेटियां बोझ नहीं हैं।
1: वेरी ट्रू शेफाली। फिर भी बिटिया के बचपन से पेरेंट्स को उनकी शादी का टेंशन होता है और उनको लगता है जो प्यार जो सुविधा उसको माँ बाप के घर में मिली है वही ससुराल में भी मिले, है ना शेफाली?
0: हाँ दीदी, इसीलिए पेरेंट्स अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी पर बेटी को गिफ्ट्स देते हैं, ज़रूरत की चीज़ें देते हैं, पर यही गिफ्ट्स और पैसों की डिमांड जब बेटी के ससुराल वाले करते हैं तो दहेज जैसी कुरीति का जन्म होता है जिसकी चपेट में कितनी लड़कियां, कितने परिवार आते हैं रोज़। क्या गुड्डू इसका कोई इलाज है?
2: हाँ दीदी, आइए आप लोगों को दहेज पर आधारित एक गीत सुनाते हैं।

0: गांव की गूंज के सफर पर गुड्डू के इन शब्दों के साथ आज का हमारा संकल्प है कि दहेज जैसे बीमारी का समाज से अंत करेंगे और बड़े पैमाने पर परिवार, समुदाय और समाज में जागरूकता पैदा करेंगे।
1: हाँ भैया, गांव की गूंज एक ऐसा मंच है जिस पर हम और आप मिलकर इस कुरीत और इस दहेज की सोच को बढ़ावा देने वाले को रोकेंगे।
0: शेफाली के इस गाने के साथ सोचिए कैसे हम दहेज जैसे दानों का अंत करें।

0: शफाली, तुमने तो हम सब में एक जोश भर दिया। साथियों, सोचो, पोलियो के वायरस को ना देख सकते थे, ना छू सकते थे, फिर भी हम सब ने मिलकर उसका अपने देश में अंत कर दिया। फिर दहेज तो एक कुरीति है, और हम एक साथ मिलकर एक स्वर में उसे ना कहेंगे तो इसको खत्म जरूर कर देंगे।
1: तभी किरण दीदी, हमारे समाज में किसी मासूम को जिंदा जलाया नहीं जाएगा, कोई भी बारात चौखट से वापस नहीं जाएगी, बेटी के पैदा होने पर कोई दुखी नहीं होगा, किसी भी लाडली को जन्म से पहले नहीं मार दिया जाएगा। और किरण दीदी, अब लाडलियां अपनी आवाज में ये कहेंगी, क्या

0: शेफाली और शिवानी, आपकी आवाज ने दहेज रूपी बुराई को जड़ से खत्म करने के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि इस कुरीत ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें भी जरूर छुआ है। चाहे वो परिवार की शादी हो या पड़ोस की, चाहे गांव की शादी हो या अपनी सोसाइटी में, दहेज प्रथा ने जरूर अपने किसी को चोट पहुंचाया है।
1: अंकुर, अपनी बातों में हमें फिर भूल गए कि गांव के गूंज के मंच पर दो बाल कलाकार हैं, और पता है मन्नत क्लास सेकंड की स्टूडेंट है, और आप लोग इसका जरा गाना सुनिए।

12 बरस की मैं ब्याह के आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं। 15 बरस की मैं

0: मन्नत की आवाज के जादू से, किरण दीदी यह तो सच है कि आज समाज के लोगों की सोच बदल रही है। हम अपनी बेटियों की एजुकेशन, उनके पालन पोषण में उतना ही ध्यान देते हैं जितना लड़कों पर देते थे, क्यों किरण दीदी?
1: हाँ शिफाली, इससे पहले माना जाता था कि दहेज का सबसे बड़ा कारण हमारे समाज की संरचना है। लड़कियों को चार दीवारी में बंद रखना, उनको कम पढ़ाना, पर अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सेना हो या ओलंपिक्स। गुड्डू के इस गाने के साथ दहेज को कैसे खत्म करें, इस पर थोड़ा और विचार करेंगे।

0: किरण जी, बचपन से हमने देखा है कि हमारी बहनों को हर समय माँ बाप, चाची, चाचा, दादी, बाबा और घर के सारे लोग सीख देते रहते हैं कि ये करो, ऐसे बोलो, यहाँ जाओ, ऐसा मत करो, ये सीखो और न जाने क्या क्या। पर कभी भी किसी ने हमें या हमारे भाई को कोई सीख नहीं दी कि बेटा, तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने वाइफ का ध्यान देना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना और उनसे कुछ मत मांगना, वो भी तुम्हारी फैमिली है।
1: हाँ अंकुर, बहुत सुंदर बात कही है तुमने, बहुत ही प्यारी सोच है तुम्हारी। अगर यह विचार घर में दिए जाने लगे तो एक बहुत ही सुंदर समाज की स्थापना हो।
2: हाँ किरण दीदी, गांव की गूंज एक छोटी सी कोशिश थी, पर तुम्हारी बातों ने तो अंकुर इसे एक मजबूत मंच बना दिया, जहां से हम समाज में फैली बड़ी से बड़ी बुराइयों का अंत कर सकते हैं। इस सॉन्ग के साथ

0: किरण दीदी, आपके स्वर और अंकुर भैया की सोच ने हमारे जैसे गांव के छोकरे को भी जिम्मेदार बना दिया।
1: हाँ गुड्डू, युवा पीढ़ी में बहुत ताकत होती है। हमें कभी नहीं लगता था कि दहेज प्रथा का हम लोग अंत कर पाएंगे, पर अंकुर की सोच ने एक नया आयाम दिया है। शिवानी बेटा, गांव के गूंज के श्रोताओं को अपना एक गाना सुनाइए जल्दी से।

0: किरण दीदी, सच विवाह एक पवित्र बंधन है। अगर इस समय लड़के वाले अपने को सुपीरियर ना माने और दोनों परिवार आपसी तालमेल के साथ बैठकर तय करें कि शादी में कौन क्या करेगा, शादी के बाद अपने बेटे बहू या बेटी दामाद को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसको कैसे पूरा करें।
1: Definitely. फिर तो शादी की रौनक ही कुछ और होगी, ना फिजूल खर्ची होगी और ना ही बेकार का दिखावा। हर कोई शादी में खूब मस्ती करेगा, तो शेफाली क्यों ना इसी पर एक मस्ती भरा गीत हो जाए।

गांव की गूंज का दहेज स्पेशल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। गांव की गूंज एक छोटी सी कोशिश होती है आपको अपने गांव से फिर से जोड़ने की, आपको अपनी मिट्टी की, अपनी संस्कृति की याद दिलाने की। तो दोस्तों, शेफाली के इस गीत के साथ हम धीरे धीरे ले रहे हैं आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। सुनते रहिए गांव की गूंज।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गुड आफ्टरनून एवरीवन, भाई बज चुके हैं 12, आ चुकी हूँ मैं आपकी आरजे आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द।

0: आपके दिल से जुड़ी हुई है।
1: पर क्या आप सच में जानते हैं कि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है?
0: भाई नाम तो बड़ा भयंकर लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है ये शायद आप इसे कुछ ही लोगों को पता होगा। आज मैं आपको इसी बारे में सारा कुछ समझाने आई हूँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, क्योंकि दोस्तों हेल्थ की बातें कॉम्प्लिकेटेड होनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब बात हमारे दिल की हो रही हो, जो दिन रात बिना रुके बिना छुट्टी लिए बस काम करता रहता है। बस आप एक बार अपने दिल की आवाज सुनिए। जी हाँ, क्या आपका दिल क्या कह रहा है? हाँ हाँ भाई, वही धक धक धक धक, ये है आपके दिल की धड़कन। अंदाजा लगाइए एवरेज एक इंसान एक दिन में कितनी बार उसका दिल धड़कता होगा। बताऊंगी भाई, मैं भी आपको इसका जवाब दूंगी, अराउंड 1,00,000 बार। एक दिन में 1,00,000 बार ये धड़कता है, और पूरी जिंदगी में अगर आप 70 से 75 साल जीते हैं तो ये दिल अराउंड 2.5 से लेकर के 3 बिलियन बार धड़कता है। सोचिए कितना मेहनती है ये छोटा सा ऑर्गन और इतनी सारी मेहनत, जिसका साइज बस आपकी मुट्ठी जितना है। जी हाँ, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो गया हो या ओल्ड एज का इंसान हो, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा आपका दिल होता है। ये बिना रुके बिना थके ब्लड को पंप करता रहता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और जब यही दिल यही मेहनती वर्कर थोड़ा सा भी स्ट्रगल करता है तो पूरी बॉडी पर भी इसका असर पहुंचता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते क्या है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक अम्ब्रेला टर्म है। जी हाँ, मतलब एक छाता जिसके नीचे बहुत सारी हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बीमारियां आती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने में आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है। आपने सुना होगा कि किसी किसी के नसों में ब्लॉकेज आ गई या दिल में ब्लॉकेज आ गई, तो वो यही होता है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर आता है हार्ट अटैक, जब हार्ट के किसी हिस्से को ब्लड मिलना बंद हो जाए तब इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। और स्ट्रोक, जिसका नाम आप अक्सर सुनते रहते होंगे, स्ट्रोक भी इसी फैमिली का एक हिस्सा है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक जाती है तब हमें स्ट्रोक आ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, भाई ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप सोचेंगे ये तो बीमारी है, हमें क्या लेना देना है इससे, हम तो भाई हेल्दी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीमारी हेल्दी लोग दिखते हैं, लेकिन ये बीमारी उनको भी हो सकती है। पर दोस्तों यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारे बीच सबसे ज्यादा है, कि आप दिखते तो हेल्दी हैं लेकिन अंदर ही अंदर कोई और बीमारी चल रही हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज दुनिया में नंबर 1 किलर है, यानी कि एक ऐसा किलर जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और ज्यादातर लोगों की मौत का कारण भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता है। मतलब जितनी भी बीमारियों से लोग मरते हैं दुनिया में, सबसे ज्यादा लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ही मरते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इंडिया में, यानी कि हमारे भारत में, ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हमारे देश में लोग वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 10 से 15 साल पहले ही हार्ट डिजीज के शिकार हो जाते हैं। मतलब जहां तक एक अमेरिकन 60 से 65 साल में हार्ट अटैक आता है, वहीं हमारे इंडियन को 45 से 50 साल में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सिर्फ हार्ट अटैक तक ही लिमिटेड नहीं है, इसमें कई तरह के कंडीशंस भी आते हैं। पहला, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो भी स्लो हो जाता है और वक्त के साथ कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकता है। दूसरा है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। अरे यही भाई, जो लोग बीपी के, तो आपके घर में मुझे लग रहा है कि हर 10 में से 8 इंसान बीपी का शिकार जरूर होता है। और यही बीपी की अगर हम बात करें तो यही एक साइलेंट किलर भी कहलाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स अक्सर दिखाई नहीं देते लेकिन इसका असर बहुत बड़ा रहता है। और तीसरा है अरिथमिया, जिसमें हार्ट की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का बीपी फ्लक्चुएट होता है। और अगर ये कई दिन तक लगातार चलती रही और इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ गई तो इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। उसके बाद चौथा है हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करता। ब्लड को जितनी बॉडी को जरूरत होती है उससे कम ही ब्लड पंप होता है। और पांचवा है स्ट्रोक, जो कि टेक्निकली ब्रेन से रिलेटेड है लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी

का एक पार्ट है, क्योंकि इसका कनेक्शन ब्लड वेसल से है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बड़ी उम्र के लोगों की प्रॉब्लम है, पर यही सबसे बड़ा मिथ है आजकल लोगों का। देखिए भाई, आजकल 25 से 30 साल के यंग प्रोफेशनल जो कि अपने डेली लाइफ को एक रूटीन से जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में लंच करते हैं, शाम को आते हैं और अपना खा पी के सो जाते हैं, अगले दिन फिर वही रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल तो 25 से 30 साल के लोग जो कि बहुत ज़्यादा यंग एज में हैं, वो भी इससे बचे नहीं पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। भाई देखिए, ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है। पहले लोग फिजिकली एक्टिव होते थे, खेत में काम करते थे, पैदल चलते थे, घर का खाना खाते थे, लेकिन अब क्या है, अब सारा दिन डेस्क पर बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने, जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं, स्ट्रेस लेके सोते हैं और स्ट्रेस के साथ ही उठते हैं। एक्सरसाइज का नाम सुनते भाई ऐसा भागते हैं कि एक्सरसाइज क्या ही हमारा दुश्मन आ गया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ भाई, ये जेनेटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में। अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को हार्ट डिजीज थी तो आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऐसा हो रखा हो तो 100% है कि आपको हो जाएगा, बस आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक लोडेड गन की तरह होती है और लाइफस्टाइल वो ट्रिगर है जो डिसाइड करता है कि वो गन चलेगी भी या फिर नहीं। मतलब अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आप अपने जेनेटिक रिस्क को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज हम ये विषय लेकर आए हैं, वो है अवेयरनेस के लिए हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस टॉपिक को समझेंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी और अपनों की जान बचा पाएंगे। कई बार सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ही दोस्तों लोग अपने सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते और चीजें बिगड़ जाती हैं और बात जान पर बन जाती है। तो ये एपिसोड सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इससे अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर करें और साथ ही साथ उनको भी बैठा के ये चीज सुनाएं। अगर आप नहीं शेयर कर पाते हैं तो याद कर लीजिए इसको, जो भी चीज मैं बताऊंगी, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर काम आ सकती है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आऊंगी मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज शनिवार के दिन हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भैया रिस्क फैक्टर की, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है और क्या मिथ है, क्योंकि हम इंडियंस मिथ्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और फैक्ट्स को दरकिनार कर देते हैं। फिलहाल इंजॉय करिए आप अपना प्रोग्राम, लेती हूँ आपसे थोड़ा सा विराम, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर। क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके आपका अपना प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी। जी हाँ, अभी तक हमने बात की कि आखिर ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होता क्या है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग आज की बातों पे लगाइए, क्योंकि ये विषय बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो हमने पिछले सेगमेंट में समझा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है, अब बात कर रहे हैं हम कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है, मतलब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। और दोस्तों, रिस्क फैक्टर दो तरह के होते हैं, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ। पहला, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, और दूसरा, जो हम अपने हाथों में ले करके कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोनों को हम थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें सबसे पहला है उम्र। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, आर्टरीज थोड़ी सी स्टिफ होने लगती हैं और रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है जेंडर, आदमी औरत के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हार्ट डिजीज का शिकार हो जाता है, लेकिन मोनोपॉज के बाद विमेन का भी रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोटेक्शन देता है वो कम हो जाता है। तीसरा है फैमिली हिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो हमारे हाथों में है, यानी कि जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है आज के एपिसोड का। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन्हें हम बदल सकते हैं। पहला है हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों, BP को साइलेंट किलर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। ज्यादातर केस में जब BP होता है तो वो बिन बुलाए और अचानक से पता चलता है, कोई सिम्टम हमें कभी नहीं नजर आता। आप बिल्कुल नॉर्मल फील करेंगे, पर अंदर ही अंदर आपकी आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा। इसीलिए साल में कम से कम एक बार BP जरूर चेक करवाइए। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, पहला LDL, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, दूसरा है HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब LDL बढ़ जाता है तो ये आर्टरीज की दीवारों में जमा होने लगते हैं, जैसे पाइपलाइन में कचरा जमा हो जाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी हमारी आर्टरीज में जम जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तीसरा है डायबिटीज। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर आर्टरीज को डैमेज करता है। चौथा है ओबेसिटी, मतलब ज्यादा वेट। जितना ज्यादा वेट, उतना ही ज्यादा लोड, वो भी हमारे दिल पे, यानी कि हमारे हार्ट पे। पांचवा है स्मोकिंग और टोबैको, यानी कि स्मोक करना और तंबाकू। जी हाँ दोस्तों, मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि इसकी सिगरेट का हर एक कश आपकी आर्टरीज को नुकसान पहुंचाता है। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को टाइट कर देती है, ब्लड क्लॉट बनाने का रिस्क बढ़ जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा। अब कई लोग ऐसे मजाक मजाक में, हंसी मजाक में दोस्तों के साथ कहते हैं, अरे भाई एक कष्ट ले ले, एक कष्ट ले ले, लेकिन याद रहे वो दोस्त दोस्त नहीं है जो आपको कह रहा है कि भाई एक कष्ट ले ले, क्योंकि वो एक कष्ट आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। छठा है फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं बिना हिले डुले, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चाहे आप वेट में पतले हो और चाहे आप ज्यादा हो, अगर आप बिना हिले डुले 8 से 9 घंटे बैठे रहते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। सातवां है अनहेल्दी डाइट। अब इसके बारे में अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो, और ये एक बहुत बड़ा कारण भी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, तो आप समझ जाइए कि हम इंडियंस कितने ज्यादा लापरवाह हैं। जी हाँ, ज्यादा नमक, ज्यादा तेल और ज्यादा प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड, कम फाइबर, ये सब कॉम्बिनेशन डायरेक्टली हार्ट के लिए खतरनाक है। आपका दिल भी बेचारा चीख चीख के कहता है कि यार मालिक, पेट की सुन रहे हो तो कभी दिल की भी सुन लिया करो, इतना नहीं बाहर का खाना खाया करो। आठवीं चीज है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस इतना नॉर्मल हो गया है कि हम जिस तरह से खाना खाते हैं ना, कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से हम स्ट्रेस भी लेने लग गए, यानी हमारे रोजमर्रा का हिस्सा हो गया ये। लगातार स्ट्रेस दोस्तों कोर्टिसोल हार्मोन को बढ़ा देता है जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। नौवीं है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल यानी वही शराब। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना भी बीपी को बढ़ा सकता है और हार्ट मसल को वीक करता है। अब दोस्तों चलिए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। जी हाँ, अब आपका दिल थोड़ा सा टूट सकता है क्योंकि शायद आप भी अभी तक इस मिथ के चक्कर में बैठे होंगे। पहला मिथ है सिर्फ मोटे लोगों को ही हार्ट डिजीज होता है और वही इसके शिकार बनते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सच बिल्कुल नहीं है। पतले लोगों को भी हार्ट डिजीज हो सकता है और इक्वल चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर उनका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो स्मोक करते हैं, तब तो भाई और भी ज्यादा रिस्क बढ़ सकता है। मिथ नंबर 2 है हार्ट डिजीज सिर्फ बूढ़ों की बीमारी है। हार्ट डिजीज सिर्फ बूढ़ों की बीमारी नहीं है, आपको यंग एज में भी हार्ट डिजीज हो सकती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल यंग लोग भी इस प्रॉब्लम के शिकार हो रहे हैं, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग से इस मिथ को तो भाई बिल्कुल निकाल के फेंकिए। उसके बाद बात करते हैं मिथ नंबर 3 की। अगर मुझे सिम्टम्स नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी कंडीशन में अक्सर कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं जब तक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। सिम्टम का वेट बिल्कुल मत करिए और अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। मिथ नंबर 4 है हार्ट डिजीज जेनेटिक होते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स एक फैक्टर है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस इस रिस्क को काफी मात्रा में कम भी कर सकते हैं। मिथ नंबर 5 है विमेन को हार्ट अटैक कम आता है। क्यों भाई, विमेन पे दिल नहीं होता क्या? होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से विमेन को भी हार्ट डिजीज हो सकती है। ये भी गलत है। देखिए, विमेन में हार्ट अटैक के सिम्टम अलग होते हैं, जैसे चेस्ट पेन के बजाय थकान होगा, सांस फूलेगा, जॉ पेन होगा, यानी कि जो हमारे जबड़े हैं वो दर्द करेंगे, इसीलिए बार बार डायग्नोसिस होने पर देरी हो जाती है। दोस्तों इन सब रिस्क फैक्टर को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि अरे मुझ में तो कोई फैक्टर मैच ही नहीं हो रहा है, तो मैं घबराऊं क्यों, यही अवेयरनेस का पहला स्टेप है। आपने जो भी समझा अभी तक, जो भी सुना, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि खतरा कहाँ से है, तब तक हम खुद को बचा नहीं पाएंगे। तो प्लीज अपने आप को ऑनेस्टी के साथ इवेल्युएट करिए कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, या अगर नहीं हो रहे हैं तो भी आपको साल में एटलीस्ट 2 बार अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। क्योंकि आपने वो लाइन तो सुनी होगी ना कि भैया दुर्घटना से देर भली है, थोड़ा सतर्क रहें। जी हाँ, सतर्क रहना दुर्घटना से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी हाँ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा दिल आपसे जो बातें करता है आखिर उसे समझे कैसे, दिल की बातें समझना कैसे है, उसकी भाषा क्या है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या ये थोड़ा रोमांटिक बनने वाली है। दिल की बात यानी सिम्टम्स को कैसे समझना है उसको हम बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आके आपसे फिर से बात कर देंगे।

0: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: वापस से स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके शो में स्वास्थ्य संगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या होता है और कौन से फैक्टर इसे ट्रिगर करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने दिल के संकेत को पहचानना, यानी कि जो वो आपसे बात कर रहा है उसको समझना। क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी कभी भी सीधा सीधा SOS नहीं बोलता। जी हाँ, वो छोटे छोटे सिग्नल देता है हमें और हमारा काम है उन्हें समझना, उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी ना करना। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक के सिम्टम की। दोस्तों फिल्मों में हम देखते हैं ना कि हार्ट अटैक का मतलब अचानक से चेस्ट पेन हुआ, इंसान गिरा और फिर खत्म। लेकिन रियलिटी में हार्ट अटैक अक्सर इतना ड्रामेटिक होता नहीं है, वो तो बस फिल्मी दुनिया में होता है। कई बार ये धीरे धीरे शुरू होता है हल्का सा डिस्कम्फर्ट के साथ और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं ये सोचकर कि शायद एसिडिटी होगी या थकान से हो रहा होगा। और सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, जैसे कोई चीज चेस्ट पर रख दी गई हो, या जकड़न सी महसूस हो रही हो, या प्रेशर सा फील हो रहा हो। ये पेन कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट के लिए आता है, फिर चला जाता है, फिर वापस आता है और इस तरह इसका आना जाना बना रहता है। दोस्तों इसे ऑन ऑफ पेन समझकर इग्नोर बिल्कुल ना करें। दूसरा सिम्टम है अपर बॉडी में डिस्कम्फर्ट, मतलब कि ये पेन सिर्फ चेस्ट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लेफ्ट आर्म में भी और दोनों आर्म्स में भी, बैक पे, नेक पे, जॉ यानी आपके जबड़े पे और आपके पेट में भी दर्द हो सकता है। बहुत सारे लोग जॉ पेन को दांत की प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं या बैक पेन को नॉर्मल बॉडी एक समझकर छोड़ देते हैं, जबकि ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तीसरा सिम्टम है सांस फूलना, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सिम्टम कभी चेस्ट पेन के साथ आता है और कभी अकेला भी हो सकता है। अगर आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करते वक्त सांस फूलने लगती है जो पहले नहीं होती थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग साइन है। चौथा सिम्टम है कोल्ड स्वेट, मतलब अचानक ठंडा पसीना आ जाना बिना किसी वजह के, स्पेशली अगर मौसम गर्म है तब भी आपको ठंडा पसीना आ रहा है। पांचवा सिम्टम है चक्कर आना। जी हाँ, अगर हल्का फुल्का चक्कर आता है तो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है हार्ट अटैक का। कई लोग हार्ट अटैक के वक्त उल्टी जैसी फीलिंग भी करते हैं। जी हाँ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि अब उल्टी होने वाली है या उन्हें लगता है कि वो बेहोश हो जाएंगे। ऐसी चीज अगर आपको महसूस होती है तो ये भी एक सिम्टम है हार्ट डिजीज का। छठा पॉइंट है एक्सट्रीम थकान। अब कभी कभी हम सोचते हैं अरे यार हमारे तो नेचर में ही है थकान, हम तो दिन भर थके रहते हैं, लेकिन भाई अगर आपको एक्सट्रीम थकान हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है जो बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के भी आपको महसूस हो रही है। दोस्तों ये सिम्टम स्पेशली वुमेन में ज्यादा आते हैं और उनमें ज्यादा कॉमन होते हैं और यही वजह है कि वुमेन में हार्ट अटैक अक्सर मिस हो जाता है क्योंकि लोग इसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों मैं यहाँ तक आपको बहुत एक बहुत जरूरी पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, वो ये है कि विमेन और मेन में हार्ट अटैक के सिम्टम थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, आदमियों में ज्यादा कॉमन होता है टिपिकल चेस्ट पेन, जबकि विमेन में सिम्टम ज्यादा सटल होते हैं। जी हाँ, जैसे थोड़ी थकान होगी, सांस फूलेगी, जॉ पेन होगा, स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए विमेन को और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सिम्टम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिए जाते हैं। इसीलिए इस बार आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं स्ट्रोक के सिम्टम की। जी हाँ, क्योंकि ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक पार्ट होता है। स्ट्रोक को पहचानने के लिए सिंपल फॉर्मूला है जो पूरी दुनिया में यूज होता है, वो है फास्ट, FAST। एफ मतलब होता है फेस, अगर चेहरे का एक साइड ड्रॉप कर रहा है या मुस्कुराने में एसिमेट्री दिख रही है तो ये एक सिम्टम है। उसके बाद ए फॉर आर्म्स। जी हाँ, अगर दोनों हाथ ऊपर उठाने में आपको दर्द हो रहा है या हाथ ऐसा लग रहा है कि कुछ हाथ से गिरता हुआ जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका खून रुक ही नहीं रहा है और वीकनेस फील हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है। उसके बाद है एस। एस मतलब स्पीच, अगर बोलने में दिक्कत हो रही है, वर्ड्स थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, यानी आप थोड़ा सा, मैं कह सकती हूँ आप हल्का सा तुतला रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड्स क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके बाद टी, यानी कि फास्ट का आखिरी वर्ड टी, जिसका मतलब है टाइम। अगर ये सब सिम्टम दिखे तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, तुरंत एमरजेंसी नंबर पे कॉल कीजिए। दोस्तों, स्ट्रोक में हर मिनट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना ही कम ब्रेन डैमेज होगा। तो देखा दोस्तों, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा सिम्टम देती हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए, इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि लोगों को ये सिम्टम होते हैं या बीपी इशू होता है तो वो सोचते हैं अरे बीपी लो हो रहा है, चलो नींबू पानी पी लो, अभी नॉर्मल हो जाएगा। हाई हो रहा है तो थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लो, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है तो ये इतनी हल्की चीज नहीं है जितने हमने हल्के में इसको ले रखा है। और कहीं ना कहीं यही हमारा इग्नोर कर देना, चीजों को ढील देना ही इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बढ़ने का और उससे होने वाली मौत के बढ़ने का कारण बन सकता है। जी हाँ, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे बात करेंगे इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो कह रही थी यही एक इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। अब भैया, दिल का बात समझ ली, दिल क्या कहना चाहता है वो समझ लिया, अब हम बात करेंगे कि दिल का ख्याल कैसे रखना है, यानी कि प्रिवेंशन क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप इंजॉय करिए अपना शो स्वास्थ्य संगिनी, लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी के आखिरी सेगमेंट में। भाई देखिए, समय बहुत जल्दी से भाग रहा है और हमने अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस तो किया ही नहीं, वो है कि आखिर इसका प्रिवेंशन क्या है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है प्रिवेंशन। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब बात दिल की हो तो ये लाइन और भी ज्यादा सच हो जाती है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी डाइट में बदलाव लेना। अगर आपकी डाइट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको सिम्टम आ रहा है तो आपकी डाइट जरूर बदलनी चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आप अचानक से अपनी पूरी डाइट को पलट के रख दीजिए या फेवरेट चीजों को खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए, छोटे छोटे चेंजेस से शुरू करिए और आप अपनी डाइट को बदल सकते हैं। जैसे फ्राइड फूड की जगह ग्रिल्ड या रोस्टेड ऑप्शन ट्राई करिए। नमक का यूज थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। अपनी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन शामिल करिए। दोस्तों, घर का सिंपल दाल चावल सब्जी जो कि हमारी दादी नानी बनाती थी, वो अक्सर सबसे हेल्दी ऑप्शन हुआ करता था। बस उसमें ऑयल और नमक की मात्रा का ख्याल रखिए। हेल्दी फैट्स की बात करें तो भाई घी और ऑयल को बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मात्रा को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। और नट्स जैसे वॉलनट और आलमंड्स, ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे फैट्स पाए जाते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक्ड स्नैक, बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें जितना कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस रोज 30 मिनट आपको वॉक पे जाना है, या आप साइकिलिंग कर सकते हैं, या अगर आपको थिरकना पसंद है ना, यानी कि डांस करना, तो आप 30 मिनट डांस भी कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है तो घर में ही थोड़ी बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, जस्ट कि आपका बॉडी एक्टिव रहे। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए, थोड़ी दूर तक पैदल चलिए। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं। जी हाँ, रोज थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हफ्ते में एक दिन इंटेंस वर्कआउट से ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। जी हाँ, कई लोग वर्कआउट के नाम पे सोचते हैं हफ्ते में संडे है, संडे के दिन खाली रहेंगे, उसी दिन एक्सरसाइज कर लेंगे, हो गया हमारे हफ्ते भर का कोटा पूरा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही गलत तरीका है। आपको डेली अपनी लाइफ से 30 मिनट निकालना है और वर्कआउट जरूर करना है। अब आप इसमें चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, डांस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरी चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओहो भाई, मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे अरे स्ट्रेस ही तो मैनेज करना है, लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसी चीज है जहां पे हम सभी फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे मैनेज तो कर ही सकते हैं ना। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अपने परिवार और दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपनी हॉबीज के लिए टाइम निकालिए, और अगर जरूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल से बात करिए, उसमें आपको जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अपने दोस्तों से डायरेक्ट कनेक्टेड है। होता है ना, कभी अपने दोस्तों से हम बात करते हैं, अरे भाई शाम को मिलते हैं, चाय पीते हैं, इतनी पक्की दोस्ती होती है आपकी। बिल्कुल इसी तरीके से मेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं या कोई ट्रॉमा लगता है तो हम बेहोश हो जाते हैं, या हमारे सीने में दर्द होने लग जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का है भाई। एक को कोई नुकसान होता है ना, तो दूसरा तुरंत इफेक्ट हो जाता है। चौथी चीज है स्मोकिंग और तंबाकू से दूर रहना। दोस्तों अगर आप स्मोक करते हैं तो ये जान लीजिए कि इसे छोड़ने में सिर्फ सिर्फ 24 घंटे बाद ही आपके हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है और रिस्क कम होना भी शुरू होने लगता है और एक साल के अंदर ये रिस्क काफी हद तक नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों अगर आप या आपका कोई अपना स्मोकिंग करता है तो आज ही एक छोटा कदम उठाइए कि सिगरेट की मात्रा धीरे धीरे कम करने लग जाइए। जैसे आप मात्रा कम करेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिगरेट छोड़ देंगे। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है रेगुलर हेल्थ चेकअप। दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर ये सारी चीजें हो रही हैं और आपका ये बढ़ा रहता है या फ्लक्चुएट होता है तो आपको रेगुलर चेकअप की जरूरत है। चाहे आप बिल्कुल फिट फील कर रहे हो, चाहे आपको कोई पेन ना हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम भी ना हो रही हो, फिर भी आपको इसको रेगुलर चेक करवाना चाहिए। देखिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई प्रॉब्लम बिना सिम्टम के भी आ जाती हैं और डेवलप होने लगती हैं। 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। दोस्तों हमारा दिल हमारी जिंदगी भर का सबसे वफादार साथी है। ये कभी कंप्लेन आपसे बिल्कुल भी नहीं करता, ना ही आपसे छुट्टी मांगता है, बस चुपचाप अपना काम करता रहता है। तो अब वक्त है कि हम इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। छोटे छोटे चेंजेस जैसे हेल्दी खाना, थोड़ा मूवमेंट, स्ट्रेस कम करना, स्मोकिंग से दूर रहना, रेगुलर हेल्थ चेकअप, ये सब मिलकर हमारे दिल को सालों साल तक हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए स्वास्थ्य संगिनी बस यहीं तक। इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो आप में हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम कम हो सकती है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार घर के सदस्य हैं तो अपना और अपने घर के बच्चों में भी इसका खास ख्याल रखें। लेती हूँ आपसे विदा इसी थॉट के साथ, अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान उससे भी ज्यादा रखिए।
0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं और अगर कोई परेशानी आए तो आयुष्मान संपर्क 24 घंटे कैसे करते हैं और आयुषी चैट बॉट कैसे आपकी मदद करती है इसमें। इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्यारे सेहतिया भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी।
2: जी
3: मैं बढ़िया हूँ और आज तो दिल खुश करने वाली खबर भी लेकर आया हूँ। हमारे गाँव की उर्मिला दीदी है।
2: अच्छा।
3: उम्र करीब 55 साल, कई महीनों से दिक्कत में थी, पेट में दर्द रहता था लेकिन पैसे की चिंता में अस्पताल जाने से डरती थी। एक दिन आशा दीदी ने उन्हें समझाया कि उर्मिला दीदी, आपके नाम पर आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, चलिए अस्पताल चलते हैं। उसी दिन आशा दीदी के साथ वे नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल गईं। अस्पताल वालों ने आयुष्मान कार्ड स्कैन किया और बिना एक भी रुपए लिए उनकी गॉल ब्लैडर सर्जरी करवाई। आज उर्मिला दीदी ठीक है और खेतों में काम भी कर रही हैं।
2: ओहो, अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, अस्पताल का पता न मिले या योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? और मतलब ये है मेरा कहने का कि कोई ऐसी जगह है जहाँ दिन रात कोई उनके सवाल सुनकर उचित जवाब दे सकता है।

0: को अस्पताल में ओपीडी या भर्ती के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो बस कॉल कीजिए, कॉल सेंटर वाले आपको एक एक चीज समझा देंगे।
1: बहुत अच्छे।
0: कई बार मरीज अस्पताल से लौट आता है लेकिन आगे की दवा या जांच कहाँ करानी है ये समझ में नहीं आता। ऐसे में भी आयुष्मान संपर्क वाले बताते हैं कि नज़दीक में कौन सा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहाँ फॉलो अप मिल जाएगा। अगर आपको अस्पताल में गलत जानकारी दी गई या शिकायत दर्ज करवानी है तो वो भी आप इस नंबर पर बता सकते हैं। एक बात और, ये सिर्फ जानकारी देने वाली जगह नहीं है, यहाँ लोग आपकी राय भी पूछते हैं कि सेवा कैसी लगी, क्या सुधार होना चाहिए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा सेहतिया भैया, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है तो क्या आयुष्मान योजना के लिए भी कोई ऐसी सुविधा है जहाँ लोग बिना कॉल किए मोबाइल या कंप्यूटर पर तुरंत अपना सवाल पूछ सकें, मतलब बस लिखें और तुरंत जवाब मिल जाए।
0: देखिए, आयुष्मान योजना की अपनी एक वेबसाइट है आयुष्मान UP.in। इस वेबसाइट पर आपको आयुषी नाम का एक चैटबॉट मिलता है। आयुषी बड़ी ही मददगार है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपका कार्ड बना है या नहीं, योजना में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, या आपके आसपास कौन सा अस्पताल आयुष्मान में सूचीबद्ध है, तो बस वेबसाइट खोलिए और आयुषी से बात शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही अपना सवाल टाइप करेंगे आयुषी तुरंत जवाब दे देगी। ना किसी का इंतजार, ना कॉल लगने की टेंशन, बस मोबाइल में लिखिए और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हो। चाहे आप लाभार्थी हो या अस्पताल चलाते हो, आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है। आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है।
1: हाँ सेहतिया भैया, हमारे एक एडिटर साहिबा भी हैं जिनका नाम आयुषी है, वो भी हर एक समस्या का समाधान करती हैं, एकदम ऐसे ही जैसे कि ये आयुषी चैट बॉट है। तो अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो PMJA है इसमें किन किन बीमारियों को कवर किया जाता है।
0: देखिए, आयुष्मान PMJAY बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बिल्कुल फ्री कर देता है। जैसे अगर किसी को जनरल सर्जरी की जरूरत है, मतलब पेट का ऑपरेशन, हार्निया, अपेंडिक्स वगैरह, योजना में सब शामिल है। फिर आता है ENT, यानी कान नाक और गले से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी का कान से पानी बह रहा है या टॉन्सिल की दिक्कत है तो इसका इलाज भी इस योजना के तहत होता है। मोतियाबिंद से परेशान लोगों की सर्जरी भी आयुष्मान PMJAY में होती है। महिलाओं के लिए भी ये योजना बहुत काम की है। प्रसूति और स्त्री रोग यानी डिलीवरी, महिलाओं की सर्जरी या अन्य बीमारियों का इलाज मुफ्त में हो जाता है। हड्डी वाली परेशानियां जैसे फ्रैक्चर, जोड़ बदलना या हड्डी में दर्द की समस्या भी इस योजना में आती है।
1: सेहतिया भैया, अभी आपने कई तरह के इलाज बताए, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए जैसे दिल की बीमारी या दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर समस्या, तो क्या उसका भी इलाज आयुष्मान PMJA कराता है?
0: बिल्कुल कराता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना बस छोटे मोटे इलाज तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुष्मान PMJAY कठिन और महंगे इलाजों को भी कवर करता है। जैसे अगर किसी की दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट में कई चोट लग जाए, कई जगह फ्रैक्चर हो जाए, इसे ही पॉलीट्रॉमा कहते हैं, ऐसे में इलाज बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में इसका खर्च कवर होता है। फिर आता है दिल का इलाज, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्टेंट लगाने में बड़े ट्रीटमेंट भी इस योजना में शामिल है। लोग लाखों के खर्च से बच जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग और नसों यानी न्यूरो सर्जरी की। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो या सिर में चोट के बाद ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो भी आयुष्मान PMJAY के तहत कराया जा सकता है। कैंसर का इलाज हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आयुष्मान PMJAY में कैंसर की सर्जरी कवर होती है।
1: तो सेहतिया भैया, अब एक सवाल और है आपसे कि क्या चेहरे का ऑपरेशन, जलने का इलाज, छोटे बच्चे की सर्जरी जैसी बड़ी इलाज भी आयुष्मान PMJAY में कवर

0: होती है।
1: आयुष्मान पीएम जय महंगे ऑपरेशन भी कवर करता है, जैसे प्लास्टिक या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। जैसे हादसे में किसी के चेहरे या हाथ पैर पर चोट आ गई या शरीर का कोई हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो इस सर्जरी से डॉक्टर मरीज को ठीक कर देते हैं। इसका खर्च भी योजना उठाती है। फिर है चेहरे और मुंह की सर्जरी। किसी को चेहरे में चोट लग गई, जबड़े में समस्या है या कोई जन्मजात दिक्कत है, तो इन समस्याओं का इलाज भी आयुष्मान पीएम जय के तहत होता है। अब बात करते हैं कार्डियो थोरैसिक और वास्कुलर सर्जरी की। ये छाती, दिल के आसपास और शरीर के नसों से जुड़ी बड़ी सर्जरी होती है
0: जी।
1: ये इलाज आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय इन्हें भी कवर करता है, जिससे लोगों को लाखों का खर्च नहीं उठाना पड़ता। फिर है बर्न्स मैनेजमेंट, यानी जलने के बाद का इलाज। अगर कोई घर में खाना बनाते समय झुलस जाए या किसी दुर्घटना में जल जाए, तो उसका पूरा इलाज, ड्रेसिंग, सर्जरी, सब कुछ योजना में शामिल है। और इस योजना की सबसे प्यारी बात बच्चों का इलाज है। अगर बच्चे को किसी बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत है, तो ऐसी सर्जरी भी आयुष्मान पीएम जय में कवर है। छोटे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन इस योजना से माता पिता का बोझ हल्का हो जाता है।
0: अरे वाह भैया, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि आपकी तबीयत नासाज होते हुए भी सर्दियों का असर है आप पे, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए। चलिए एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि अभी तक आपने जितनी भी सर्जरी वाली सुविधाएं बताई, मतलब कई सारी सुविधाएं बताई, हमने समझी भी उसे, लेकिन क्या जनरल मेडिसिन, नवजात शिशुओं की देखभाल या गुर्दे मूत्र से जुड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में आते हैं?
1: आयुष्मान पीएम जय सिर्फ ऑपरेशन वाला इलाज ही नहीं करता
0: जी,
1: बल्कि कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी कवर करता है, जैसे यूरोलॉजी यानी गुर्दे, मूत्र नली और प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानियां। अगर किसी को किडनी स्टोन है, मूत्र रुक रहा है या प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो इन सब का इलाज भी योजना में हो जाता है। फिर आता है जनरल मेडिसिन, जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बुखार, संक्रमण जैसे आम लेकिन गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है। अब बच्चों की बात करते हैं
0: जी।
1: बच्चों की सामान्य बीमारियां जैसे जुकाम से लेकर इन्फेक्शन, सांस की दिक्कत, ब्लड से जुड़ी समस्याएं इत्यादि का इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में होता है। नवजात शिशु की देखभाल भी इस योजना में कवर है। कई परिवार कैंसर का नाम सुनकर ही टूट जाते हैं, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में बच्चों के कैंसर का इलाज भी शामिल है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्कीम है। सेहतिया भैया, एक बात और जाननी जरूरी है कि क्या कैंसर की दवाइयाँ, रेडिएशन, इमरजेंसी इलाज, मानसिक स्वास्थ्य और अंग प्रत्यारोपण जैसे बड़े बड़े इलाज भी आयुष्मान पीएम जय में कवर होते हैं?
1: बिल्कुल कवर होते हैं। आयुष्मान पीएम जय का दायरा बहुत बड़ा है। कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, कई बार तो महीनों तक चलती हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में ये भी कवर होता है। इसके बाद आता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर को विकिरण से जलाकर खत्म करना। ये भी बहुत हाईटेक महंगी सुविधा है, पर योजना इसका खर्च भी अपने जिम्मे लेती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस योजना में शामिल है। डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई गंभीर मानसिक विकार का इलाज भी योजना में आता है। और अंग प्रत्यारोपण सबसे अहम है। दिल, किडनी, लिवर जैसे बड़े प्रत्यारोपण का खर्च सोचकर ही लोग कांप जाते हैं, लेकिन आयुष्मान पीएम जय में अंग प्रत्यारोपण भी कवर है।
0: सेहतिया भैया, जिन मरीजों को गंभीर बीमारी हो जाती है, जिन्हें पूरी तरह ठीक करना मुश्किल होता है, उनके तकलीफों को कम करने वाला उपचार भी क्या आयुष्मान पीएम जय में मिलता है?
1: देखिए, कई बार बीमारी ऐसी होती है कि मरीज पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, जैसे कैंसर का आखिरी स्टेज या कोई और गंभीर रोग। ऐसे में पॉलिएटिव केयर बहुत जरूरी होती है। इसका मतलब मरीज की तकलीफ कम करना, दर्द कम करना, सांस की दिक्कत ठीक करना, उसे आराम देना। आयुष्मान पीएम जय में ये सुविधा भी कवर है। अब आते हैं उन खास इलाजों पर जो बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जिससे बच्चों को सुनने की शक्ति वापस मिलती है, या किडनी प्रत्यारोपण। इन सब के लिए आयुष्मान पीएम जय में विशेष पैकेज है।
0: तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि आयुष्मान पीएम जय देश की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल है। ये योजना करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज के बोझ से बचाती है और अस्पताल के दरवाजे सबके लिए खोलती है। 5 लाख रुपए तक का सालाना उपचार किसी भी गरीब परिवार के लिए एक मजबूत सहारा है। जब इलाज बिना पैसे के, बिना भागा दौड़ी के कैशलेस हो जाता है तो घर के लोग राहत महसूस करते हैं। श्रोताओं, सेहत सही लाभ कई के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आयुष्मान पीएम जय के तहत बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे आशा और ANM की भूमिका, ऑनलाइन समाधान, अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाएं और मरीजों को मिलने वाली फॉलोअप केयर के बारे में। अब मुझे इजाजत दीजिए, पर हाँ, जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे
3: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
4: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
4: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
4: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
6: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
7: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने ही रेडियो स्टेशन को यानी रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और आपका अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आज का एपिसोड थोड़ा खास है। हम अपने इस श्रृंखला के पिछले बहुत सारे एपिसोड में हम बात कर चुके हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज की, कभी फाइलेरिया की, कभी काला आजार की, कभी मलेरिया की तो कभी डेंगू की, पर आज हम बात करेंगे एक अहम वेक्टर जनित रोग की, एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम या जापानी दिमागी बुखार के बारे में। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त आरजी आकांक्षा और हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ में एक बहुत ही खास सलाहकार और इलाके के सभी के मित्र हमारे साथ में हैं जिनका नाम है सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना याद कर रही हूँ। हमारे ही गांव के पास 6 साल की बिटिया चिंगी की बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया और चिंगी वहीं खेल रही थी। शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक दौरा पड़ने लगा।
1: हाँ जी आकांक्षा जी, वह मामला AES या जापानी एंसेफलाइटिस का ही था। परिवार को लगा बस थकान होगी, किसी ने झाड़ फूंक की सलाह दी और अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। यही इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी है, ये इंतजार नहीं करती।
0: और दुख की बात ये है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं है, बरसात के मौसम में कई बच्चे इसी तरह जोखिम में आ जाते हैं, बस इसलिए कि लोग समय पर पहचान नहीं पाते।
1: बिल्कुल, आज फिर कुछ काम की बातें करेंगे। आजकल मौसम ही ऐसा है कि सतर्क रहना जरूरी है, इसलिए आज हमें सुनने वालों को बताना बहुत जरूरी है कि जापानी बुखार या AES क्या है, कैसे फैलता है और गांव समाज मिलकर इसे कैसे रोक सकते हैं ताकि एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में ना पहुंचे।
0: बिल्कुल भैया, आजकल गांव, बाजार, खेत खलिहान हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और जापानी बुखार। लोग डर भी रहे हैं, उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरा ज्ञान दे दिया जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, AES और जापानी बुखार आखिर होता क्या है?
1: देखिए आरजी आकांक्षा जी, AES का पूरा नाम है अक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम, यानी अचानक होने वाली तेज दिमाग की सूजन वाली बीमारी, और JE जापानीज एंसेफलाइटिस यानी जापानी दिमागी बुखार AES का ही एक गंभीर रूप है।
0: यानी AES बड़ा नाम है और जापानी एंसेफलाइटिस इसका एक मुख्य कारण है।
1: बिल्कुल सही, जैसे बरसात में कई तरह के बाढ़ आते हैं पर उनमें से एक बहुत खतरनाक होता है, उसी तरह AES में कई वजह होती हैं, पर JE उनमें भारी बीमारी है।
0: अब सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि लोग कह रहे हैं कि ये हवा से फैलता है, कोई कहता है फल से फैलता है, तो कोई कहता है मच्छर से फैलता है, आखिर में सच्चाई क्या है भैया?
1: और जी आकांक्षा जी, जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE का फैलाव पूरे देश में एक जैसा नहीं होता, इसका कारण इसका अपना पर्यावरणीय चक्र है। इस वायरस को बढ़ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक एम्पलीफाइंग होस्ट जैसे सुअर और कुछ पक्षी, बगुला, सारस वगैरह, और दूसरा क्यूलेक्टस मच्छर, जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाता है। इस वजह से जेई ज्यादातर उन इलाकों में मिलता है जहां धान की खेती ज्यादा होती है, खेतों में पानी भरा रहता है और बरसात के बाद मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। यानी ये बीमारी ना पूरे देश में फैलती है, ना हर मौसम में, या खासकर धान के खेतों वाले इलाकों और बरसात के बाद सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और ये बीमारी क्यूलेस मच्छर की वजह से फैलता है।
0: अरे सेहतिया भैया, थोड़ी और आसान भाषा में समझाइए हमें।
1: अरे बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि जेई एक वायरल बीमारी है और वेक्टर यानी मच्छरों के जरिए फैलती है, खासकर क्यूलेक्स मच्छर। ये वही मच्छर होते हैं जो भारी गंदे पानी, खेतों के किनारे जमा पानी, स्वरों के पास तथा जंगल जंगल के इलाकों में ज्यादा मिलते हैं।
0: मतलब मच्छर ही इसका मुख्य कारण है।
1: हाँ, और बात यही नहीं खत्म होती, ये वायरस पशुओं, खासकर सुअर और पक्षियों में चक्कर लगाता है और मच्छर उसे इंसानों के शरीर तक पहुंचा देता है। इसको बोलते हैं जूनोटिक चक्र।
0: अच्छा भैया, और AES ये क्या है?
1: AES कई कारणों से हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, पोषण की कमी, लीची खाने से भी, अगर बच्चा भूखा हो। लेकिन जेई इसका सबसे खतरनाक रूप है।
0: अरे भैया, आपने तो हमारे लीची खाने पे भी प्रतिबंध लगा दिया, वो तो हमारा सबसे पसंदीदा फल था। चलिए कोई बात नहीं, अब लोगों को सबसे ज्यादा यही जानना है कि कौन से लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
1: बहुत जरूरी सवाल। AES या JE में लक्षण अचानक आते हैं। PDF में जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है। मुख्य लक्षण: तेज और अचानक बुखार आ जाना, उलझन, बच्चा बार बार रो रहा हो, नींद ज्यादा आना या उल्टा लगातार रोना, दौरा पड़ना, बच्चा होश में ना रहे, गर्दन अकड़ना, चलने फिरने में दिक्कत, ये सारे इसके लक्षण होते हैं।
0: मतलब ये है कि लक्षण ये है कि बहुत तेजी से स्वास्थ्य खराब होता जाता है।
1: जी आकांक्षा जी, AES समय बर्बाद नहीं करता, इसलिए हमें भी नहीं करना चाहिए।
0: अच्छा सिहातिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाए तो घर वाले क्या करें?
1: कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आसान भाषा में बताता हूँ। पहला, तुरंत अस्पताल ले जाएं, समय न गवाएं, घरेलू इलाज, झाड़ फूक, देसी दवा में समय बर्बाद न करें। दूसरा, रास्ते में मरीज को सुरक्षित रखें, बच्चा बेहोश हो तो कुछ भी मुंह में ना दे, ना पानी ना दवा, बुखार ज्यादा हो तो गुनगुने पानी से पट्टी लगाएं, फिट्स आए तो बच्चे को दोनों ओर करवट दिलाकर रखें, रास्ते में गिरने से बचाने के लिए सिर को सपोर्ट दें। तीसरा, अस्पताल में बताए गए नियमों का पालन करें, किसी भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा उपचार बीच में ना रोके।
0: तो भैया, बीमारी तो एक तरफ है, पर गांव समाज की भूमिका क्या है? हम AES और जापानी बुखार को रोकने में क्या कर सकते हैं?
1: बहुत कुछ कर सकते हैं आरजे जी।
0: जैसे
1: AES जापानी एंसेफेलाइटिस के खिलाफ असली लड़ाई गांव की ही जीत हो सकती है। जैसे जेई वैक्सीन, 1 से 15 साल के बच्चों को टीका जरूर लगे, यह टीका मुफ्त उपलब्ध है और बहुत प्रभावी है। दूसरा, मच्छरों को पनपने से रोके, घर आंगन में पानी जमा ना होने दे, स्वरों के बाड़े को घर से दूर रखे, नालियों की सफाई, पानी की टंकी ढककर रखे और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। तीसरा, बच्चों को सुरक्षित रखे, खेलते समय पूरा कपड़ा पहनाए, शरीर खुला ना रहे और सुबह शाम बच्चा बाहर ना जाए। चौथा, पानी और खाना हमेशा साफ रखे, अस्वच्छ पानी AES के मामलों में बड़ा कारण है। उबला पानी दे, बासी खाना ना खिलाए और लीची खाली पेट ना दे। पांचवा, लक्षण दिखते ही बेझिझक अस्पताल जाएं, समय पर इलाज, मतलब कि जीवन बच जाना।
0: मतलब आपने हमारी लीची वाली समस्या का समाधान कर दिया। तो भैया अब आपसे ये कहना है कि हमारे एक श्रोता हैं

0: जिनका नाम है राम भवन, जो हमें बभनान गोंडा से सुनते हैं। पिछले साल उनके पड़ोसी का बच्चा बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले, दो दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाओ। पर जब अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
1: अरे AES में 24 घंटे ही निर्णायक होते हैं। लोग समझते देर कर देते हैं, बीमारी नहीं समय देखती। भाइयों बहनों, AES या जापानी इंसेफेलाइटिस कोई आम बुखार नहीं है। यह ऐसी बीमारी है जो हमें सोचने का समय भी नहीं देती। हम जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी जान बचेगी।
0: और सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को समझा सके कि AES और जापानी बुखार कितनी गंभीर है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है?

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें।

0: अंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और आज साथ में हमारे अंशिका नहीं है, आज है हमारे साथ संध्या जी जो कि सबसे पहले भी कई बार हमारे साथ शो में आ चुकी हैं। तो वेलकम टू माय शो सुन सहेली संध्या जी।
1: हेलो मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं हूँ संध्या और मेरे लिसनर को भी बहुत ज्यादा थैंक यू
0: जी। तो लिसनर्स को थैंक यू क्यों?
1: अरे वो क्योंकि मैं उनके साथ बात,
0: वो आपको आधा घंटा अभी और झेलने वाले हैं इसलिए थैंक यू।
1: हाँ।
0: है ना, इसलिए थैंक यू।
1: यस मैम,
0: कोई बात नहीं, झेलेंगे नहीं। आज हम दोनों की दोस्ती जो है वो आज अब हम दोनों की जुगलबंदी आप सुनेंगे। तो आज का शो होने वाला है बहुत ही अच्छा और इत्तेफाक की बात है कि आज प्यार से प्यारे रिश्तों पर हम आज कुछ बात करने वाले हैं। तो सब बात करेंगे लेकिन उसके पहले आई विश कर दे एक साथ एक ही फ्रेम में आप सभी को शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया,
1: शुभ दोपहरिया लिसनर्स
0: जी। और आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
1: सुन सहेली।
0: सुन सहेली में आज हमारे साथ है संध्या जी एंड मैं हूँ आपकी आर्य समता। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज, बिना देर लगाए हुए, बिना बकबक किए हुए। आज के शो के बारे में पहले बता दें कि आज हमारा फ्राइडे, यानी फ्राइडे के दिन हम लेकर के आते हैं खूबसूरत रिश्तों को लेकर के और अपने व्यक्तित्व को निखारने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। तो आज संध्या जी खूबसूरती के बारे में हमें आप कौन से टिप्स देने वाली हैं?
1: जी मैम, खूबसूरती तो फिर नाम ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
0: हाँ।
1: पर अगर रिश्तों की खूबसूरती कहें तो बहुत अच्छी होती मैम, लेकिन उसे अगर ढंग से निभाया जाए तो।
0: एग्जैक्टली, तो आपके पास बहुत कुछ है बताने को आज।
1: यस मैम।
0: तो सबसे पहले जो हमारी औपचारिकता होती है जो कि एक सुंदर सी पोयम हम देते हैं हर रोज, तो हम पहले पोयम सुना दें।
1: जी मैम।
0: उसके बाद आप बताइएगा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है?
1: जी मैम।
0: तो सुने?
1: यस मैम।
0: आज अंशिका को मिस कर रहे हैं, वो मुझे रास्ता देती है कि आपकी आरजे, आइए सुनते हैं पोयम आपकी अपनी आरजे समता के साथ। तो वो दो चार लाइन अपने हिसाब से बोल देती है बट कोई नहीं, चलिए हम आज पोयम शुरू करते हैं।
1: Yes,
0: तो आज की पोयम का जो शीर्षक है वो है दोस्ती। दोस्ती वो नहीं जो हर पल साथ निभाए, जो साथ दिखाई दे। दोस्ती वो नहीं जो हर पल साथ दिखाई दे, दोस्ती वो है जो दूर रहकर भी पास दिखाई दे। हंसी में साथ हो तो हर खुशी दुगनी हो जाए, गम में हाथ थाम ले तो दर्द भी कम लगे। रास्ते बदल जाएं मगर रिश्ता नहीं बदलता, रास्ते बदल जाएं मगर रिश्ता नहीं बदलता। सच्चा दोस्त वक्त के साथ कभी नहीं फिसलता। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, कुछ दिल से बनते हैं। कुछ लोग कुछ और दोस्त वही हैं जो उम्र भर दिल में बसते हैं। कभी बिना कहे जो मन की बात समझ जाए, आंखों में छुपे आंसू भी पल में पड़ जाए। जिसके सामने चेहरे पर नकाब की जरूरत ना हो, जिसके सामने अपने दर्द को छुपाने की आदत न हो, वो दोस्त ही है जो गिरने पर उठाता है, हार के वक्त भी जीत का हौसला दिखाता है। दुनिया चाहे लाख सवाल करे हमारे होने पर, एक दोस्त ही खड़ा रहता है हमारे होने पर। समय की धूप में जब रिश्ते बदलने लगते हैं, कुछ अपने भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, तब एक दोस्त की आवाज बहुत कुछ कह जाती है। मैं हूं ना, बस इतनी बात दिल को छू जाती है। दोस्ती कोई वादा नहीं, एक एहसास होती है जो हर मौसम में दिल के आसपास रहती है। जिंदगी में दौलत मिले ना मिले कोई गम नहीं, जिंदगी में दौलत मिले ना मिले कोई गम नहीं, अगर एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो कमी फिर कोई और नहीं, तो फिर कमी कोई और नहीं।
1: वाह मैम, बहुत अच्छा पोयम था, बहुत अच्छा पोयम था, बहुत अच्छा।
0: मतलब दोस्त अगर एक जिंदगी में है तो फिर हमें कोई
1: कमी,
0: धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें कोई ऐशो आराम की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक सच्चा दोस्त जो उम्र भर आपका साथ निभाए और आपके खुशी में तो आपका साथ दे ही दे, बट जो दोस्त आपके गम के पलों में साथ दे, इट्स अ रियल फ्रेंड्स ऑफ योर लाइफ।
1: यस मैम, बिल्कुल सही बात कहा आपने।
0: मैं आपसे जानना चाहती हूँ संध्या, कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा फीमेल या मेल कोई ऐसा दोस्त है जो कि आपकी जिंदगी के में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता हो?
1: यस मैम, हाँ, एक शख्स तो है मेरी लाइफ में, वो भी मेल है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लेकिन वो मतलब एक कहते नहीं है कि मुझसे वो कुछ नहीं चाहता है और पूरी ईमानदारी के साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए
0: सपोर्ट करता है।
1: यस मैम।
0: एग्जैक्टली ऐसा दोस्त होना बहुत लकली होता है, क्योंकि बिना कुछ आपसे चाहे हुए अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी अच्छी आदतों को वो सपोर्ट कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, इट मीन्स कि वो आपकी आगे जिंदगी के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा वाला साबित होने वाला है।
1: यस मैम, क्योंकि आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें कोई सीधे मुंह आज बात नहीं करना चाहता, किसी के पास बिना मतलब टाइम के, नहीं, बिना मतलब के कोई बात नहीं करना चाहता है। और कोई है जो आपको हर एक सही रास्ता दिखाता है, आपकी कमियों को बताता है, वो भी इस अंदाज में ताकि आपको बुरा भी ना लगे, वो समझा भी लेता है, तो फिर वो मेरे लिए तो सुपरमैन ही है।
0: एग्जैक्टली, और संध्या को तो उनका सुपरमैन है, यानी उनका फ्रेंड बहुत ही अच्छे जिस तरीके से वो तारीफ कर रही हैं। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, उसके बाद इस टॉपिक को करेंगे हम और स्टेन, क्योंकि इस टॉपिक को हम जितना बड़ा करना चाहें, इस टॉपिक पर हम जितनी बड़ी बहुत सारी बातें करना चाहें, ये जो होता है ना, ये बहुत ही कम है। तो मैं चाहती हूँ संध्या जी की रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपके हिसाब से आज क्या है?
1: मैम, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से ये है रिलेशनशिप में, कि अगर रिलेशनशिप में संवाद होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ,
1: कभी कभी ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई बात नहीं होती, सिर्फ एक दूसरे से बातें ना करना रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार लाती हाँ। है, गलत फहमियाँ हर रिश्ते में होती हैं। लेकिन उन्हें दूर करने के लिए मात्र आपको उनसे खुलकर बात करनी,
0: और अगर कोई बात,
1: जो बात हाँ। है भी, अगर कोई डाउट वाली बात है तो उसे बढ़ाएं नहीं, या फिर उसमें गैप ना डालें कि चलो छोड़ो रहने दो, उसको सामने से बात कर लें, उसे समझा लें, वो सबसे बेस्ट होता है लाइफ के।
0: बिल्कुल, और अगर कोई बिना कहे ही उस रिश्ते को ख़त्म कर दे, या फिर सिर्फ आप अपनी मतलब बातों को ऊपर रख कर के उनकी नज़र में ये लगे कि हाँ मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो ऐसे रिश्ते अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो उन्हें तुरंत दफन कर देना।
1: यस मैम, क्योंकि बहुत लोग के मतलब रिश्तों में क्या होता है कि अगर मान लें कि मेरी तरफ से कहीं गलती है
0: हाँ।
1: और दूसरा वाला इंसान उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है ना, तो उसे सुलझाने की कोशिश करता हाँ। है, कभी कभी वो एकदम साइलेंट हो जाता,
0: कभी कभी वो सिर्फ साइलेंट नहीं, वो दूर होने की सोचते हैं
1: हाँ, हाँ। नहीं, वो सोचते हैं कि अब मैं इनसे बात नहीं करूँ, इनसे कुछ कहूँगा नहीं, केयर नहीं करूँगा, तो जो वो बोलते नहीं, बात नहीं करते हैं, साइलेंट कहीं निकल जाते हैं लाइफ से, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पैदा कर देता है लाइफ में, रिश्तों में। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप मौन व्रत न धारण करें अपने रिश्तों में, आप एक दूसरे से कोई शक है, कोई बात है, तो उसे बात करके एकदम क्लियर करें और अपना रिश्ता मेंटेन बनाए रखें।
0: बिल्कुल, तो इस टॉपिक को हम अभी और एक्सटेंड में लेंगे, लेकिन उसके पहले संध्या, हमारे लिसनर्स वेट कर रहे होते हैं आज का पहला गाना, जो कि है बहुत ही प्यारा सा, तो आइए हम गानों की ओर चलते हैं, तो एक गाना सुना देते हैं, उसके बाद आएंगे इस टॉपिक को और ज़्यादा तरीके से हम आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज है हमारे खूबसूरत रिश्तों पर, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है ना, ये एक दोस्ती का रिश्ता आज हम ले रहे हैं, तो आइए बिना देर लगाए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज है हमारे संध्या जी। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के ब्यूटीफुल से टॉपिक को, क्योंकि जो है रिश्तों में दरार पड़ना या रिश्तों का उलझ जाना।
7: जी तो मैम,
6: कुछ बताऊं?
7: यस मैम।
6: चलो तो मैं कुछ बताती हूँ और उसके बाद तो आज संध्या जी के पास बहुत सारा कुछ है। तो भाई देखो, रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो मम्मी पापा का हो, एक माँ बेटी का हो, पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, दोस्त का हो, बॉयफ्रेंड का हो, गर्लफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता हर खूबसूरत होता है, लेकिन उसको निभाना और उसको बना के रखना ये मेन बात होती है। तो रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन रिश्तों की खूबसूरती सिर्फ प्यार में नहीं होती है, बल्कि गलतफहमियों के बाद भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करने में होती है। हर रिश्ते में कभी ना कभी नाराजगी आती ही है, बातों का गलत मतलब निकलता ही है, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तब, और छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ी बन जाती है और दूरी बन जाती है। असली सवाल ये नहीं है कि रिश्ते में उलझने क्यों होती है, उलझल क्यों हो जाती है। असली सवाल यह है कि जब रिश्ता उलझ जाए तो हम उसे सुलझाने के लिए क्या करते हैं और क्या करना चाहिए।
7: यस मैम, अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में कोई भी रिश्ता हो बहुत अच्छा चलता है, बहुत इम्पोर्टेंस मिलती, बहुत केयरिंग होती है, इवन लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए कुछ है ही नहीं,
6: कोई इंसान था ही नहीं, कोई बना ही नहीं था।
7: पर मसला तब होता है कि जो इंसान स्टार्टिंग में था एक्चुअल में वो एंड तक साथ में बना रहे, तो वो रिश्ता एकदम मतलब एकदम स्टेबल होता है। पर अगर सोचो कि हाँ, जो पहले एकदम इम्पोर्टेंस मिल रही थी वो बाद में जब नहीं मिलती तो फिर कितना हर्ट होता है इंसान को। और इसी की वजह से मैम मेनली रिश्ते टूटते हैं, सिर्फ इसी रीजन की वजह से।
6: बिल्कुल 100%,
7: क्योंकि मैम जो प्रायोरिटी इंसान को स्टार्टिंग में मिलती है अगर वही एंड तक मिलती रहे तो कभी डिसबैलेंस कोरिलेशन हो ही ना। और जब ये चीज़ें नहीं हो पाती, स्टार्टिंग में लोग बहुत केयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होने लगता है, टाइमिंग, केयरिंग, सब कुछ.
6: एग्जैक्टली. और संध्या एक बात बता दूं.
7: जी मैम.
6: जैसे तुमने अभी कहा ना कि स्टार्टिंग में जो चीजें होती हैं वो बाद में धीरे धीरे नहीं मिलती हैं, तो उसका कारण पता है, उसका कारण हम खुद है.
7: यस मैम.
6: हमें वो उम्मीद होती है, हमें वो आदत बन जाती है.
7: यस मैम.
6: और जब आदत बन जाती है तो कहीं ना कहीं हम उस पर डिपेंड होने लगते हैं, डिपेंड ऑन हो जाते हैं कि यार ये सामने तो बहुत अच्छा है, उसने मेरे साथ ये किया है. तो ये सारा जो मसला होता है ना, ये पूरा उम्मीद का होता है.
7: हाँ मैम. कभी कभी क्या होता है कि हर एक चीज परफेक्ट नहीं होती दुनिया में. कोई रिश्ता या कोई इंसान मैम परफेक्ट नहीं होता.
6: हाँ.
7: शुरुआत का जो वो अट्रैक्शन होता है वो जब खत्म होने लगता है हर रिश्ते में, तो फिर वो कमियां दिखने लगती
6: है. एग्जैक्टली. वो कमियां दिखने लगती हैं. पर मुझे लगता है संध्या कि जो हम लोग उम्मीद कर बैठते हैं ना, बहुत
7: ये हम लोग की सबसे बड़ी फॉल्ट
6: है कि हर रिश्ते को फ्री छोड़ना चाहिए.
7: फ्री छोड़ना चाहिए.
6: पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि वो मुझसे बात करे, वो मतलब वो अगर बिजी भी है तो भी मुझसे बात करे, मेरे को घुमाए और मुझे क्या कहते हैं गिफ्ट्स दे, मेरी हर मतलब मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है और उसको बिना बताए अगला समझ जाए.
7: यस मैम.
6: तो ये जो गलतियां हो जाती है ना, ये गलतियां जब होती हैं तो ही रिश्तों में दरार और उलझने ज्यादा पैदा होती.
7: लेकिन मैम कभी कभी ये होता है कि सामने वाला इंसान सोचता है कि जो मेरा रिलेशनशिप जिससे चल रहा है, मम्मी मतलब पापा मम्मी का हो या फिर भैया भाभी का हो या फिर GFBF का हो, तो फिर एक वो लोग सोचते हैं, हस्बैंड यही सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ मेरी वाइफ वही करे.
6: हाँ.
7: पर कभी कभी उसको भी समझना चाहिए कि मेरी वाइफ मुझसे क्या चाहती, कभी उसका भी उसकी भी बातों का उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए.
6: Exactly.
7: और ज़्यादातर यही होता है कि हम फीमेल्स की जो मतलब मतलब फीलिंग्स होती है. हाँ. उन्हें जो भी मेल है वो समझते नहीं.
6: हाँ.
7: तो फिर रिश्ते दरारें यहाँ भी बहुत आती हैं कि वो पूरा दिन काम करती हैं, आपका घर संभालती हैं, मतलब जितना भी हो वो हो पाता वो अपना 100% देके करती हैं.
6: हाँ.
7: फिर भी अगर उसका पति या जो भी
6: उसका
7: है
6: अगर, हाँ. उसका प्रतिफल अगर उसके हस्बैंड के रूप में ना मिले तो यार दुख तो होगा.
7: दुख होगा ना मैम. तो फिर उसके लिए भी रिश्तों में दरार आती
6: है. मानो संध्या तुम्हारी शादी कल को हो रही है, ठीक.
7: यस मैम.
6: आपके दिमाग में बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे सपने हैं, ठीक है. हर एक लड़की के मन में होता है, हर किसी का सपना होता है. आप घर जा रहे हो, आप नए नए घर जा रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे आपको रिश्ते मिल रहे हैं. सास मिल रही है, ससुर मिल रहे हैं, नंद मिल रहे हैं, जिठानी जी मिल रही हैं, और भी उनके रिलेटिव मिल रहे हैं. हस्बैंड से हम लोग 6 महीने 1 साल फोन पे बात करते हैं.
7: yes,
6: बस इतना ही तो. बाकी उनको हम पर्सनल तो नहीं जान पाते हैं ना,
7: उनकी
6: हैबिट्स क्या है. वो बाई नेचर फोन पे तो क्या कहते हैं कैसा है, लेकिन उनके साथ रह करके पता चलता है.
7: यस मैम.
6: पर हम क्या करते हैं, हम इन 8 रिलेशंस में क्या करते हैं, एक नया एक पिंजरा बना लेते हैं.
7: yes,
6: एक बड़ा सा केव बना लेते हैं.
7: yes,
6: कि उसकी एक एक तार बहुत सुंदर है. बट जब हम वहाँ उस पिंजरे में जाते हैं और जब हम उसमें कैद होते हैं, तब हमें असली उसकी खूबसूरती पता चलती है.
7: मैम वो पिंजरा ही है, एक एक जो तार से वो बना होता. हाँ, वही चुभने लगती
6: है. चुभने लगता है. और पहले तो मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, भाभी जी चलता है.
7: अरे मैम, अब मैं अभी इस बात से एक मुझे रियल स्टोरी याद आ गई, वो किसी और की नहीं, मेरी दीदी की है.
6: हाँ, हाँ.
7: मेरी दीदी की शादी फिक्स हुई. स्टार्टिंग में वो मतलब 24/7 जैसे कहते नहीं. हाँ, किसी से बात करो तो उनकी जीजा की ऐसे बात होने लगी. तो जीजा मेरे बहुत शार्प माइंड के थे, वो अपने घर की बात कोई रिवील नहीं करते थे.
6: okay.
7: और मेरी जो दीदी थी, अगर यहाँ पे अगर किसी ने खास दिया होगा या किसी को छींक आई होगी,
6: वो भी
7: बात जीजा तक शेयर करती थी. अब क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग में अपनी ससुराल वालों का बहुत मतलब तारीफ करे, मेरी ननद ऐसी है, मेरी ननद वैसी है. फिर हम लोग सोचे भी कि इतना भी ज्यादा कोई मतलब हम लोग दीदी हम लोग दीदी की सिस्टर हैं, पर अगर हम लोग कोई बात बोल दे तो वो उन्हें बुरी लगती थी. इवन अगर उनकी दीदी उनकी ननद उनसे अगर कुछ कह दे कि सुनैना तुम ये करो, तो दीदी मेरी वो चीजें करती थी. पता नहीं क्या, इतनी बड़ी फैन थी, उनको लगता था कि सब कुछ उनकी ननद है.
6: और अगर आप लोग कुछ बोल देते होंगे ना तो उन्हें बुरा लगता,
7: टॉक्सिक बन जाते थे. अब शादी उनकी मतलब फिक्स थी, होने वाली थी. अब जैसे मतलब ननद नहीं, एकदम जगदम्मा माता जी हूँ, उनकी बात को मानती थी. हम लोग कहे ठीक है शादी हो जाए, पता नहीं अच्छी हूँ, वाकई में अच्छी ननद मिल गई हूँ. शादी होके गया, 1 महीने बीते, 1 महीने में उनका थोड़ा सा मतलब वो रूप देखे,
6: 1 पॉइंट नीचे आया.
7: हाँ. 2 महीने

0: और पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सब रिश्ता इतना बहुत, मतलब जैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड होता है.
1: यस मैम.
0: ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि नंद अच्छी नहीं होती है, सास अच्छी नहीं होती है? एक्चुअली हम लोग उसमें सफर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि वो रिश्ता हो सकता है कि जैसे अभी तुमने बोला, तो तुम्हारी तो बहन है इसलिए तुमने अपनी बहन का बहन की साइड ली. ऑब्वियसली बात है कि तुम अपनी बहन की साइड लोगे. अगर ब्लॉक लिस्ट में है तो हो सकता है ना कि तुम्हारी बहन की भी कहीं ना कहीं गलती रही हो.
1: हो सकता है मैम.
0: क्योंकि कहा जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती,
1: नहीं बजती
0: है ना. तो हम ऐसा ही रिश्ते को अगर हम आज बात कर रहे हैं तो सब मामलों में वो सास नंद और ससुर देवर ही क्यों बुरे होते हैं, कहने वाली बात है.
1: यस मैम.
0: वाली बात है, क्यों ही बुरे होते हैं?
1: पता नहीं क्या है मैम, पर बुरे तो होते हैं. मैं तो ये कहूंगी
0: नहीं, मैं एक खुद नंद हूँ तो मैं तो बुरी नहीं हूँ, मुझे लगता है.
1: लेकिन मैम, अब आप बुरा ना मानेगा, अपनी भाभी से पूछिए. पता नहीं आपने अगर वहाँ पे अच्छा वाइब बना रखा
0: हाँ,
1: होगा
0: तो उनके लिए तो मैं अच्छी नहीं हूँ. उनके लिए तो मैं अच्छी नहीं हूँ.
1: तो फिर ऐसे समझ लीजिए कि सबके पीओवी से
0: तो ऐसे तो ऐसे तो ये भी कह सकते
1: हैं. मैं भी किसी की नंद रही बनूंगी तो मैं भी उसके लिए पता नहीं अच्छी ना रहूंगी.
0: तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर नंद किसी के लिए अच्छी नहीं है तो हो सकता है ना ये भी कि भाभियां भी तो अच्छी नहीं हो सकती हैं.
1: यस मैम.
0: है ना.
1: लेकिन मैम ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वही भाभी जो आपके नाम का माला जाप करती थी, फिर शादी के बाद आपके घर पे आने के बाद भाभी को ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगी?
0: हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही.
1: ऐसा नहीं है कि फॉल्ट दीदी में ही रही होगी, हो सकता है वो फॉल्ट उसमें भी रही
0: उसमें भी
1: तभी
0: रहा
1: तो
0: हाँ.
1: अब ये हो सकता है कि किसी में 75% गलती रही हो, किसी की 25%
0: पर होती दोनों,
1: पर होती दोनों तरीके से.
0: जी, तो आइए हम लौट आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारा जो खूबसूरत सा रिश्ता है एक एक प्यारा सा दोस्त का, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे जो मिला है वो है, सबसे पहले गुस्से में फैसला कभी नहीं लेना चाहिए.
1: जी मैम.
0: क्योंकि जब मन दुखी होता है तो हम अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो पाता है. इसलिए
1: और मैम वो जो शब्द आप गुस्से में बोल देती हैं वो किसी के लिए एक, मतलब कहते हैं, स्टोरेज के रूप में वो अपने आप में रख लेते
0: हैं. हाँ, वो तो हमेशा से रहते हैं ना कि तलवार का घाव जो होता है वो भर जाता है, पर शब्दों का जो बाण होता है, शब्दों से जो एक तीर चलाए जाते हैं वो ताउम्र आपके जहन में रहते हैं. इसीलिए अगर रिश्ता किसी बहस के बीच उलझ गया है तो तुरंत यह तय न करें कि अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि ये लाइन जो होती है ना ये दोनों को कहीं ना कहीं खाली कर जाती है. और खाली उसके लिए ज्यादा होता है क्योंकि जो जिसे सर्वस्व अपना मान चुका होता है, जिसके लिए केवल टाइम पास होता है, तो उसके लिए ये लाइन मायने नहीं रखती.
1: तो उसके लिए तो कुछ भी मायने नहीं रखता, वो फिर उसे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा रिश्तों से कि हाँ क्या चल रहा है, छूट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं बन रहा है, तो कोई बात ही नहीं, उसका तो टाइम पास चलिए. लेकिन मैम एक पॉइंट ये भी है कि समय की जो टाइम की नीड होती है वो भी रिश्तों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है.
0: बहुत जरूरी होती है क्योंकि अगर हम किसी को
1: मैम
0: प्यार कर रहे हैं
1: हाँ.
0: तो हमें उसको टाइम देना इम्पोर्टेंट है.
1: हाँ.
0: ऐसा नहीं, अगर हम टाइम नहीं दे रहे हैं तो फिर या तो फिर वो सामने वाला भी समझे कि देखो मैं बिजी हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों आजकल जॉब में रहते हैं, तो मेल को भी समझना है और फीमेल को भी समझना है.
1: yes,
0: ये नहीं कि मेल जानबूझ करके उसके उसके जॉब टाइम पे कॉल करे और फीमेल अपने उसे जो भी काम कर रहा है तो वो उसके काम के क्या कहते हैं दरमियान उसको परेशान करे.
1: yes,
0: ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए.
1: तो वही बात है कि रिश्ते अपने आप नहीं चलते हैं मैम, इसको चलाने के लिए दोनों साइड से इक्वल वो एफर्ट्स होने चाहिए.
0: जी
1: एक
0: हाँ.
1: दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा रिश्तों को अच्छे बनाने के लिए कोशिश में रहना चाहिए, नहीं कि हम एक दूसरे का पॉइंट ढूंढें कि हाँ अब मुझे पॉइंट मिलते ही मैं इन्हें सुनाऊंगी.
0: एग्जैक्टली. तो प्रीति जी, अरविंद जी, धर्मेंद्र जी एंड आशु जी अभी रास्ते में आ रही हैं. तो आज का टॉपिक है अरविंद जी कि रिश्तों, अगर रिश्ते उलझ गए हैं तो हमें उन्हें सुलझाना कैसे है, ये है आज का टॉपिक. तो चलिए हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आएंगे, इसी टॉपिक को अभी और करेंगे एक्सटेंड, क्योंकि अभी बहुत कुछ है इसमें बाकी, इसका जो फुल एंड फाइनल वाला डिसीजन है वो भी बाकी है. लेकिन उसके पहले आइए सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना स्टेज पर.

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी RJ समता और साथ और साथ में आज हमारे हैं संध्या जी। तो जिस टॉपिक पे बात हो रही थी तो आइए उसी को एक्सटेंड करते हैं। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं जो कि बताने वाली हैं आपकी अपनी संध्या जी।
6: जी मैम, तो फिर रिश्तों में अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये हम सोचते हैं कि अगर कोई टाइम नहीं दे रहा है तो फिर हम उससे ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, नाराज रहते हैं, और इवन हम उनसे खुल के ये नहीं कह सकते, ना कह पाते हैं कि हाँ हम दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं है, अब इसे थोड़ा मतलब अच्छा करना चाहिए।
5: बिल्कुल,
6: तो एक दूसरे के बीच में दोनों को ईगो बना रहता है।
5: और इसी के लिए अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि कोशिश करें कि सॉरी बोल के अपनी गलती, अगर गलती ना भी हो तो सर झुका करके आप उनसे माफी मांग लें।
6: ठीक है, अगर
5: ज्यादा दिनों तक रिश्ता चलाना है तो
6: यस मैम।
5: एंड एक और बात लिखी है कि अगर किसी रिश्ते को बहुत दिनों तक चलाना है तो माफी मांग लो और या फिर माफ कर दो। एग्जैक्टली अरविंद जी, मैंने अपने एक रिश्ते में ऐसे ही किया हुआ है। और उसके बाद में एक पॉइंट और है संध्या, कि अपनी बात कहने से पहले सामने वाले की बात को पूरा का पूरा सुनना चाहिए।
6: यस मैम, एकदम सही बात है। क्योंकि अगर जब तक हम पूरा ना सुनेंगे और ना समझेंगे, फिर तो वो कुछ हम वैसे जो वो चाहता वैसे हम रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाएंगे।
5: बिल्कुल,
6: उस रिश्तों में। तो इसीलिए मतलब सामने वाले की बात सुनना और समझना, फिर अपना कोई रिस्पांस देना बहुत ज़रूरी होता है।
5: बिल्कुल, तो इसीलिए जब अगर हमारी मान लीजिए गलती है तो अगला सामने वाले को फिर ये होना चाहिए कि आप हमारी बात को सुनो तो, समझो तो पहले कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमेशा आपकी आपकी नज़र में अगर कोई रिश्ता गलत है तो वो गलत नहीं होता है। कभी ना कभी तो इंसान वो सच बोल रहा होता है ना, कि जैसे कहते हैं ना, आपने एक बात सुनी है कि एक गांव में एक इंसान था, वो हमेशा बोलता था शेर आया, तो उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता था।
6: यस मैम।
5: लेकिन एग्जैक्टली एक दिन आ गया तो लोगों को लगा कि अरे आज भी ये झूठी बोल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है रिश्तों में। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें रिश्ता लंबे समय तक चलाना है तो सबसे पहले यही निवारण है कि आप उन्हें माफ कर दो और आप माफी मांग लो।
6: Yes,
5: और सबसे पहले कि मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम पूरी बात कहो, सिर्फ इतना ही कह देने से आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है।
6: Yes, ma'am.
5: एंड समस्या को इंसान को अलग रखें, मतलब समस्या और इंसान को दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि समस्या सामने वाले इंसान से सेम टू सेम हो, अलग भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है।
6: Yes, ma'am. तो फिर ये होता है कि हाँ अपनी बातें रखने से अपने मतलब जो पार्टनर हमारा है उसे सपोर्ट करें। और कभी कभी ये होता है कि हम अपनी बातें उन तक पहुंचाते ही नहीं, कोई बात को लेके परेशान रहते हैं, और जब तक अपने आप पार्टनर या जो भी आपके साथ में एक सुपरमैन है उससे अपनी बात बताओ, ताकि किसी बात से परेशान हो तो वो कम से कम समझ के उसका सोल्यूशन दे आपको।
5: बिल्कुल। और एक और पॉइंट है मेरे पास कि पुराने हिसाब किताब को मत खोलिए। मतलब अगर आपकी जिस बात पे लड़ाई हुई है, जिस बात को लेकर के आप दोनों में अनबन हुई थी, तो उन पुराने हिसाब किताब को कभी भी ओपन ही नहीं करना।
6: यस मैम। और ये जो आपके यहाँ अभी वो किसने कमेंट किया था कि रिश्तों में शादी
5: में,
6: अरविंद जी ने एकदम 100% राइट बात की है कि ऑल प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है सॉरी। अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो आपका रिश्ता अच्छा बना रहता है। कभी कभी अगर आपकी गलती नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ मुझे झुकने से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पे झुक जाना ही बेहतर।
5: एग्जैक्टली और समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों की जगह बराबर होनी चाहिए।
6: यस मैम,
5: रिश्ता तभी सुलझता है जब समाधान सिर्फ एक इंसान की इच्छा पर आधारित नहीं हो। दोनों को ये मौका मिलना चाहिए। आगे ऐसा किया जाए कि यही समस्या दोबारा ना आए। मतलब हम आपको समझेंगे और वो भी हमें समझे, ऐसा कुछ सलूशन करके अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहिए।
6: यस मैम, बिल्कुल सही बात कहा है आपने। तो इसीलिए हमें अपने रिश्तों को बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, एकदम बैलेंस बनाए रखना है। क्योंकि रिश्तों में अगर बैलेंस, रिश्ते ही नहीं इवन कोई भी चीज़ है, बैलेंस ही होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लाइफ हो या कोई थिंग्स हो।
5: और एग्जैक्टली अरविंद जी लिख रहे हैं कि जरूर सुनना चाहिए अगर वो हित के लिए बात हो। मुझे लग रहा है कि अरविंद जी यहाँ पर आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर अगर एक रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है या फिर अपनापन है तो वहाँ हित और अहित की कोई बात हो ही नहीं सकती है। आपको सुनना है, उसके बाद आपको फैसला करना है। लेकिन सुनना तो है ना, अगले सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसको समझो तो, सुनो तो। हो सकता है कि इस बार वो गलत ना हो।
6: Yes, मैम बिल्कुल सही बात
5: है ना। हाँ। तो चलिए इस टॉपिक को करते हैं यहीं पर क्लोज और अब लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, आपके ब्यूटीफुल से टिप्स आपका इंतजार कर रहे हैं एंड एक मोरल स्टोरी जो कि हर इंसान के रिश्ते को कैसे बनाती है खूबसूरत, अभी बहुत कुछ है बाकी। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में हमारे हैं आज संध्या जी। तो चलते हैं फटाफट आज के ब्यूटी टिप्स की ओर, जो कि देखते हैं आरजे नहीं हमारी जो बहुत ही अच्छी सी दोस्त हैं संध्या जी, वो क्या लेकर के आई हैं आज।
3: जी मैम, हमें अपने हेयर के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हम लोग अपने बालों के साथ बहुत ज्यादा ही खिलवाड़ कर लेते हैं।
2: अभी ज्यादा हो रही है, कभी हीटिंग से तो कभी,
3: क्योंकि इस टाइम का मैम इस टाइम का वेदर ही ऐसा चल रहा है, कभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा हॉट, तो फिर इसी वजह से बहुत ज्यादा वो दोनों के बीच में जो एक वो बन जाती है डिफिशियंसी, तो ये हम लोग का मतलब बॉडी पे तो असर करता है, हेयर पे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट दिखाता है क्योंकि इतने हेयर फॉलिंग, इतना डेंसिटी बालों का गिरना, ये सब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसके ही, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब केयरलेस होते हैं अपने हेयर को लेके। सब नहीं होते, कोई कोई तो बहुत ज्यादा मैम केयर करता है।
2: हम तो बहुत केयर करते थे लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगता है ना कि जितना आप केयर करेंगे ना उतने बालों बाल ज्यादा वो ना वो ढीठ हो जाते हैं, उनको लगता है अरे मेरी तो केयर हो रही है ना, चलो ठीक है अभी थोड़ा झड़ जाते हैं फिर से आ जाएंगे नए बाल।
3: नहीं तो मैम उसके लिए आप फिर से उसका थोड़ा केयरिंग करना शुरू कर दें, न्यूट्रिशन दें और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें लें ताकि आपके बाल फिर से वैसे जैसे एकदम अच्छे से थे वैसे हो जाए।
2: सबसे ज्यादा जो एक प्रोटीन और एक न्यूट्रिशन होता है ना वो होता है
3: प्रोटीन और ओमेगा 3 मैम, ये बहुत मस्त होता है,
2: सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरा मानना ये है संध्या कि अगर आपने ढंग से पानी पी लिया ना प्रॉपर एक दिन में, तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है और आपके बाल भी अच्छे होते हैं।
3: जी मैम, पर मैम वो पानी पीना भी लेकिन उसे सही तरीके से, क्योंकि अब मैम इतना क्लाइमेट गंदा होने की वजह से जो पानी है तो ऊपर जो अब माना कि सबके यहाँ समरसेबल नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जो समरसेबल का पानी आता है वो वाकई में अच्छा होता है, अगर आप बिना फिल्टर के भी पीते हैं तो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा। लेकिन जो कम मतलब बोरिंग वाले लेवल का पानी आता है अगर वो आप पीते हैं तो एकदम मतलब कहते नहीं कठोर वाटर होता है।
2: आपने देखा होगा कि कई घरों में देखा होगा कि जैसे आप ग्लास भरते हैं ना मतलब नॉर्मल मोटर के पानी से, तो ऊपर से उसके व्हाइट व्हाइट पूरा वो हो जाता है, जैसे झाग हो जाती है।
3: यस मैम,
2: और थोड़ी देर के बाद वो सारे कण नीचे बैठ जाते हैं
3: और वो येलो कलर के एकदम से,
2: और यही सबसे ज्यादा हानिकारक होता है बालों के लिए, जब आप बाल धुलते हैं तो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है।
3: यस मैम, तो फिर हाँ पानी पिए तो अगर अगर आपके यहाँ मतलब डीप सप्लाई पानी नहीं आ रहा है तो फिर या तो फिर आप उसे बॉयल करके पिए, अगर बॉयल नहीं है, अगर आपके यहाँ आरो लगा है फिल्टर लगा है तो सबसे बेस्ट कोई बात ही नहीं है, उसमें इब्बट करने वाली कोई बात ही
2: तो
3: नहीं।
2: अंशिका याद कर रही है संध्या जी, मैं तो आरो ही पीती हूँ क्योंकि ना मुझे लगता है कि अब ना अब आदत में आ गए हम लोग।
3: यस मैम,
2: आदत में आ गए हैं कि अगर हम लोग आरो नहीं पिएंगे या तो प्यास नहीं बुझती है, कहीं बाहर जाओ तो एक बॉटल लेनी पड़ती है, तो ये एक आदत में आ गए हम लोग।
3: लेकिन मैम जैसे हम जैसे कुछ लोग जो ऐसे थोड़ा डेवलप एरिया में रहते हैं तो उनके लिए आरो मिल जाता है, लेकिन जिनका घर गांव में है उनके यहाँ तो मतलब मोस्टली घर में तो आरो होता नहीं है। ये सजेशन उनके लिए है जिनके घर में मतलब आरो अवेलेबल नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: तो फिर वो ऐसा करे या तो फिर क्योंकि वो खुद ही देखें, अगर वो पानी भर के रख देते होंगे जग में या बाल्टी में कहीं भी तो वो एकदम येलो येलो कलर का हो जाता है,
2: पूरा येलो हो जाता है।
3: हाँ, तो इसीलिए आपने जो कहा कि पानी पिए वो तो फिर बाल ही के नहीं पूरे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, पर हमें सिर्फ उसी से ये नहीं कि पानी पीने से, हमें कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना होता है मैम। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत गुनगुने पानी से बाल धुल लेते हैं, गर्म पानी से गीजर से नहाए बाल धुल लिए, तो जो कभी कभी गर्म पानी हाँ गुनगुना पानी ठीक है, लेकिन एक होता है कि ज़्यादा गर्म पानी से लोग बाल धुल देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे स्कैल्प पर जो नेचुरली ऑयली एक लेयर होती है वो हमसे डिटैच हो जाती है। तो इसीलिए आप कभी गुनगुने पानी से मैम बाल कोई भी ना धुले, मेरा तो ये है कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है ऐसे धुलने में, लेकिन आप एकदम बाल को, अब ये भी नहीं, कभी कभी लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हैं तो उनको तो पता है, लेकिन जिनके घर में ये है छोटे बच्चे नहाते हैं शैम्पू लगा के, वो ढंग से बाल मतलब एकदम क्लीन धुल नहीं पाते, उससे भी उनके बाल बहुत टूटते हैं।
2: एग्जैक्टली। और मेरे पास एक पॉइंट है संध्या, कि बालों को हमेशा से साफ रखना चाहिए, अपने बालों को और स्कैल्प के हिसाब से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज्यादा शैम्पू करने या स्कैल्प को रगड़ने से भी बचना चाहिए।
3: यस मैम।
2: जिससे क्या होता है कि आपके बाल जो है वो टूटते हैं और उन और हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है वो कमजोर हो जाती है।
3: यस मैम, वो रूखी पड़ने लगती है। और मैम वो एक पॉइंट ये भी है कि आजकल लोग जनरेशन के हिसाब से कंडीशनर बहुत यूज करते हैं कि उनके बाल स्मूथ दिखे, थोड़ा लेंदी दिखे, शाइनी दिखे, तो उसकी वजह से वो कंडीशनर बहुत यूज करते हैं। हाँ, कंडीशनर यूज करिए, पर वो भी सोच समझ के, और देखिए पहले आप ये चेक करिए कि आपके बाल कर्ली हैं या फिर मतलब वो
2: बेबी, अगर बेबी हैं बाल आपके तो कंडीशनर यूज करना चाहिए, आई थिंक सो, है ना।
3: यस मैम।
2: और अगर आपके स्ट्रेट हैं, हाँ, तो आपको स्ट्रेट बाल चाहिए।
3: हाँ, तो फिर ये सब चीजें देख के, और फिर अगर आप कंडीशनर यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग करते ही करते ही मैम, तो फिर ये होता है कि आप अपने कंडीशनर को एकदम बालों के हेयर के रूट में न लगा के, जो आपके बाल और मतलब स्कैल्प के बीच में है, बिल्कुल स्कैल्प में ना लगाएं,
2: स्कैल्प पे नहीं लगाना,
3: मतलब अपने बालों के लेंथ पे लगाइए, लेंथ से लगा के एकदम नीचे, एकदम जो मतलब एकदम पीक होता है लास्ट का टेल, वहां तक लगाइए, लेकिन स्कैल्प में ज्यादा ना लगाएं,
2: वो स्पेस छोड़ करके ही लगाना चाहिए, स्कैल्प छोड़ के लगाना चाहिए,
3: क्योंकि जो लेंथ है उसमें वो शाइनिंग दिखेगा, वो अच्छा रहेगा, वो एकदम सिल्की रहेगा, लेकिन अगर आप स्कैल्प में लगाते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा मतलब वो हार्मफुल होगा,
2: हार्मफुल होगा।
3: और
2: exactly, संध्या यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, एक छोटू सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा गाना लेकर के आएंगे।
3: yes,
2: ठीक है। और क्योंकि उसके बाद हमें बताना है अभी स्किन के लिए, तो मैं सोच रही थी कि स्किन के लिए भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आएंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल टिप्स आज हमारे पास हैं और संध्या के पास भी हैं फॉर स्किन के लिए, तो चले।
3: यस मैम, बिल्कुल।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में है आज संध्या जी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के ब्यूटी टिप्स की ओर।
3: यस मैम, ब्यूटी टिप्स में हमें अपने मतलब स्किन का बहुत ज्यादा केयर करना होता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव
2: होती है ना। तो मैं बताऊँ एक बात कि आपको सबसे पहले तो आज मैं कोई आपको मतलब रेमेडीज नहीं बताएंगे हम लोग आज। आज हम लोग आपको ना कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसका डेली रूटीन करने से केवल आपकी स्किन सुंदर हो सकती है और आपके चेहरे पे कभी भी कोई एक्ने या फिर कोई दाने नहीं होंगे।
3: यस मैम बता दीजिए, मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ।
2: सबसे पहले क्या करना है कि आपको दिन में दो बार अपना जो चेहरा है वो आपको साफ करना है। सुबह और रात को अपनी त्वचा को बिल्कुल ऐसे साफ करना है जैसे कि मानो कि आपने अपनी स्किन पे कोई भी कोई क्रीम नहीं हो, कोई काजल नहीं हो, कुछ नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद में फेस वॉश, माइल्ड फेस वॉश आपको यूज करना है। कोशिश किया करिए कि ऐसे फेस वॉश को जो आपको हार्म नहीं पहुंचाए, मतलब आपकी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाए, नॉर्मल वाला आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा है कि आपको मॉइस्चराइजर हमेशा से अपनी स्किन पे लगा के रखना है और अगर जिसकी ऑयली स्किन है या फिर ड्राई है तो उसी तरीके के मॉइस्चराइजर को आपको यूज करना है।
3: मैम मेरा तो ऑयली है, बता दीजिए।
2: ऑयली है आपकी स्किन, ऑयली है तो आपको, भाई देखो मैं तो आपको बताऊं कि हमेशा से क्या होता है कि हम लोग ना एलोवेरा के लिए सुनते हैं पर एलोवेरा कोई यूज नहीं करता है।
3: yes, ma'am.
2: लेकिन एलोवेरा को हमेशा यूज करना चाहिए। एलोवेरा एक ऐसा है जो हर स्किन टाइप को सूट करता है।
3: yes, ma'am.
2: ठीक है तो आपको वो लगाना है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाना है और रात को सोने से पहले आपको लगा लेना है। मतलब जब आपने अपना चेहरा साफ कर लिया उसके बाद में आपने ये मॉइस्चराइजर लगा लिया।
3: yes, ma'am.
2: धूप में आ रही है आप, अपने ऑफिस जा रही है, कहीं भी जा रही है तो आपने यही बस इस्तेमाल करना है। इससे आपका चेहरा भी खिलेगा प्लस आपकी जो फेस पे एक्निक है, दाने हैं, वो सब कुछ ठीक होता है।
3: yes, ma'am.
2: ठीक है। और एक बात और है कि सनस्क्रीन को अपनी आदत बना लें। घर से बाहर निकलने से पहले SPF 30 या उससे अधिक ब्रांड स्पेसिफिक सनस्क्रीन को लगाएं। बाहर रहने पर लगभग हर 2 घंटे में ये चीज को दोहराना चाहिए। अगर आपको सनस्क्रीन सूट करता है, भाई मुझे तो नहीं करता है, मेरी स्किन और काली हो जाती है जब मैं लगाती हूँ तो मुझे नहीं सूट करता, तो मैं सिर्फ जो एक क्लिजर मिल्क आता है ना, क्लिजर मिल्क लगाती हूँ मैं।
3: यस मैम।
2: और आपको क्या करना है कि आप अपनी आंखों को आराम देना है। ठंडे खीरे की स्लाइस से कुछ देर आंखों पर रखने से ताजगी आपकी आंखों पे आती है और उससे आपकी आंखें भी सुंदर लगती है और आपके चेहरे में भी एक बढ़िया सा निखार आता है।
3: मैम एक पॉइंट ये भी तो है, पर अब तो सीजन कोल्ड वाला आने लगा, अदरवाइज जब समर का सीजन था तो फिर वो अगर आइस का एक टुकड़ा हल्का हल्का अगर आप अपने फेस पे ऐसे ऐसे अप्लाई करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है।
2: तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मैं आपको बताऊं कि अब तो आइस क्यूब्स आने लगे हैं, एक प्लास्टिक का पूरा केव आता है।
3: yes, ma'am.
2: उसमें आपने बर्फ को जमा देना है, ढक्कन खोलना है, अपने फेस पे उसको अप्लाई करना है।
3: yes, ma'am.
2: लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको आइस क्यूब तो सभी के घर में फ्रिज है होता ही है, एक बर्फ का टुकड़ा निकालना है, एक कोई कॉटन कपड़ा लेना है, उसमें उसको रख देना है।
3: yes,
2: ठीक है। और उस कॉटन के कपड़े के अंदर रखी हुई बर्फ को अपने चेहरे पर हल्की हल्की मसाज करना है। डायरेक्टली नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको बर्फ का टुकड़ा नहीं यूज करना है, आपको धीरे धीरे अपने फेस पे उसको अप्लाई करना है।
3: yes, ma'am.
2: लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हरी सब्जियां खानी है, आपको फल फ्रूट खाना है, इसको हमेशा के रूटीन में बना लीजिए और पानी आपको बढ़िया से पीना है ताकि आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेट रहे और आपकी स्किन ग्लो करे।
3: yes, ma'am.
2: ठीक है।
3: yes, ma'am.
2: अब आपको करना पड़ेगा।
3: अच्छी बात,
2: मतलब ये सारे जो रूटीन आज मैंने आपको बताए हैं ना, ये रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं।
3: हाँ मैम, ये कोई टफ भी नहीं, अगर इंसान करना चाहिए खुद की, क्योंकि मैम लोग दूसरों के लिए तो पूरी जिंदगी जीते आए, कभी अपने लिए भी वक्त निकालना बहुत जरूरी है।
2: एग्जैक्टली तो भाई यार, आप लोग जरूर से इसको किया करिए और इस रूटीन को फॉलो जरूर किया करिए जो भी है। ठीक है,
3: क्योंकि पूरी जिंदगी आप सारे काम ही काम करते रह जाते हैं, कोई अवार्ड नहीं मिलता है तो क्यों ना कुछ अपने लिए भी दो पल कर लिया जाए।
2: तो चलिए, और संध्या थैंक यू सो मच आज के लिए जो आपने आज हमारा साथ दिया।
3: एंड
2: कल मिलेंगे हम सेम प्लेस सेम टाइम पर, और कल हमारा सुपर से भी ऊपर वाला सैटरडे है। एंड आई होप सो कि कल भी हमारे साथ संध्या जी रहने वाली हैं। कल तो गेम होने वाला है संध्या, ठीक है? तो कल मिलेंगे
3: स्टडी में ना मैम।
2: हाँ जी,
3: अरे वाह मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड।
2: चलिए तो कल मिलेंगे फिर से सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
3: बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड से जुड़े होंगे तो तैयार रहेगा, अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि हम कहीं भी ब्रेक नहीं लेने वाले हैं। फिलहाल आइए ट्यून कर लेते हैं हमारे पहले गाने को, जो कि हमारी सुनील जी की फरमाइश है। एंजॉय करते रहिए और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर। आप रेडी रहिएगा क्योंकि हमारे पास सवालों की छड़ी तो तैयार है। सुनते रहिए कॉल ऑफ ट्यून गोंडा।

0: बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई।
1: और क्योंकि भैया आपको बम्बई जम गई है तो बम्बई से ही कुछ सवाल कर लिए जाएं। और आज कॉल ट्यून में हमारे पास पहला कॉल आ चुका है, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: कौन है आप?
2: हम खुसुर फुसुर करने आए हैं जी आपसे बस।
1: और ये हम समझ गए हैं आप हैं अरविंद जी, स्वागत करते हैं आपका कॉल ट्यून गोंडा में। फिलहाल कैसे हैं?
2: जी हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं, माला लेके छोटा छोटा सा, दो तीन माला है मेरे पास, लेके मैं स्वागत कर
1: मेरे
2: सकता
1: गले
2: हूं।
1: में आएगा कि मुझे उंगलियों में पहनना पड़ेगा?
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं गले में नहीं जी, गले में जिसको पहनाना था पहना चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ उनसे, अब मैं हाथ में पहना दूंगा।
1: क्या बात है, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल ये बताइए बॉलीवुड के सवालों के लिए रेडी है आप?
2: बॉलीवुड बोले तो क्या होता है जिसमें पिक्चर बनता है, दो तीन हीरो होते हैं, एक विलेन होता है।
1: अच्छा,
2: जिसमें लोग लास्ट में का भगवान के लिए मुझे छोड़ दिया जाए।
1: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड,
2: वही वही क्वेश्चन होना है?
1: नहीं ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है,
2: आपको कसम है मेरी।
1: अरे ये क्या बात है,
2: क्वेश्चन देना जो मैं आंसर दे सकूं।
1: इसे दुविधा में डालना कहते हैं जनाब।
2: तो आप भी तो हमें डाल देते हो।
1: चलिए अब आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड के बादशाह किसे कहा जाता है।
2: बॉलीवुड के बादशाह, अब वैसे तो हम अमिताभ जी को जानते हैं।
1: आप जानते जरूर हैं लेकिन ये टाइटल किसी और के पास है।
2: टाइटल किसके पास? मैम फिलहाल हमारी नजरों में तो वही
1: बच्चा बच्चा जो आता है ये सवाल, बच्चा बच्चा, आप बड़े हो चुके हैं, बताइए बताइए।
2: या तो फिर मैम अगर नेक्स्ट कोई है तो शाहरुख खान जी।
1: वाह वाह वाह, मतलब आंसर देना

0: है लेकिन घुमा के देना है कि जलेबी वाला अंदाज हमें काफी पसंद आया।
1: थैंक यू मैम।
0: चलिए ये बताइए, शोले फिल्म के अंदर गब्बर सिंह का प्रसिद्ध डायलॉग कौन सा था?
1: कौन सा मैम दोबारा बोलना।
0: शोले फिल्म के अंदर गब्बर का सबसे फेमस डायलॉग कौन सा था?
1: इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती।
0: ये गब्बर का डायलॉग था?
1: हाँ ये गब्बर का ही डायलॉग।
0: वाह,
1: नहीं तो धर्मेंद्र भैया थे हमारे।
0: नहीं आप, ये गब्बर के नाम पे दर्ज कर दिया गया है और मैं अभी गब्बर को लेकर आती हूँ।
1: गब्बर को आप लेके आइए, फिर उनसे मैं पूछ के फिर आपको बताता हूँ।
0: क्या बात है, गब्बर बेचारा शर्मा चुका है अब।
1: वैसे फिलहाल उसका डायलॉग था तो रामगढ़ में लूटने जाता था बार बार, वो बेचारा लूट नहीं पाता था, डायलॉग याद नहीं है जी।
0: चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप डायलॉग याद करते हैं हमें अपना गाना बता दीजिए और हम आपके गाने को प्ले कर देते हैं।
1: जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना दिल ना लगे।
0: क्या बात है।
1: और डेडिकेट नहीं रहेगा वो तो मैं आपको खुद मैसेज कर दूँ या
0: आप खुद ही बोल दीजिए। निकी और पूछ
1: नागेश्वर भाई हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, अरीबा जी हैं, गुलफ्ता जी हैं और इट्स भाई हैं जो रीवा एमपी से हैं और भी लोग हैं जो चैट बॉक्स में हमारे साथ लगे रहते हैं, उन सबको हमारा ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा। और आपको
0: थैंक यू सो मच। तो एंजॉय करते रहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो भाई इससे पहले कि हम आप भी कह दें कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना और ये हमारे गब्बर का डायलॉग है, आई होप आपको याद होगा कि गब्बर का फेमस डायलॉग कौन सा है और वो उसने किसके लिए बोला था। अगर आपको पता है तो अपना फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए 6393316429। हम मिलते हैं इस गाने के उस बार, आपकी अपनी फरमाइशें लेकर के बॉलीवुड रैपिड फायर खेलने के लिए तैयार रहेगा क्योंकि आर्जुन भी मौजूद है फुल बॉलीवुड स्टाइल में आपके साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: और ये फरमाइश थी हमारे अरविंद मौर्य जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं कॉल ऑफ ट्यून गोना में हमारी अगली कॉल की तरफ। लेट्स सी हमारे साथ कौन छोड़ गया है। हेलो
1: हेलो जी मैम नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम उस्मान खान है, एमए ट्रेडिंग कंपनी गोंडा से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है, गोंडा में गोंडा से आपका स्वागत करते हैं। अच्छा ये बताइए उस्मान जी, फिलहाल आप हैं कैसे?
1: बिल्कुल ठीक है,
0: बहुत बढ़िया।
1: और आप लोगों के दुआएं हैं
0: तब तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे होंगे आप, क्योंकि हम दुआएं बहुत अच्छी देते हैं।
1: जी जी अच्छी बात है।
0: चलिए बताइए आप हमारे साथ गेम खेलना पसंद करेंगे, वो भी बॉलीवुड रैपिड फायर यानी कि बॉलीवुड के सवालों के जवाब।
1: बॉलीवुड में इतनी जानकारी नहीं है लेकिन फिलहाल गेम खेलेंगे, अगर बताने लायक होगा तो जवाब देंगे।
0: अच्छा चलिए देखते हैं। आपको ये पता है कि हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार किसको कहा जाता है?
1: जी
0: हिंदी सिनेमा में पहला सुपरस्टार का जो टाइटल है वो किसको मिला है?
1: देवानंद जी को मिला।
0: आहा, आपका जवाब गलत है और आपको हम 7 करोड़ अब नहीं देंगे।
1: कह तो रहे फिल्म में हमें इतनी जानकारी नहीं।
0: ऑलराइट चलिए कोई बात नहीं, तो आप जरा एक डायलॉग बोल के दिखाइए वो वाला डर फिल्म से, तू हाँ कर या ना कर।
1: कितने आदमी थे?
0: नहीं मैं नहीं थी, मैं नहीं डरा रही थी किसी को।
1: सोले वाला डायलॉग कितने आदमी थे?
0: चलिए यही बोल के बता दीजिए कितने आदमी थे, और थोड़ा सा गब्बर के स्टाइल में बोलिएगा प्लीज।
1: गब्बर के स्टाइल में कैसे बोलेंगे?
0: कोशिश
1: गब्बर एक ही था, दूसरा कोई गब्बर हुआ ही नहीं।
0: कोई बात नहीं, आप उसके भाई बन जाइए कुछ देर के लिए और बोल के दिखाइए।
1: अब ऐसे कैसे बोले, हंसी लग जाती है।
0: अरे कोई बात नहीं, हंस के बोल दीजिए।
1: कितने आदमी थे?
0: अरे ओसामा, कितने आदमी? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार।
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, कॉल ऑफ ट्यून गोंडा में। आपका दिन शुभ हो। और ये तो थे हमारे उस्मान खान जी, जो हमें नहीं बता पाए कि बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार किसे कहा गया था। अगर आपको पता है तो भैया इंतजार ना करें, क्योंकि इंतजार में ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और हम बैठे रहते हैं पल के बिछाए कि मोबाइल लिसनर आएंगे। तो आइए जरा उठाइए अपना फोन, डायल कीजिए 6393316429 और अगर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये है आपका कॉल ऑफ ट्यून गोंडा विद फुल बॉलीवुड वाला स्टाइल।

0: और ये फरमाइश थी हमारे उस्मान खान जी की, कस्मे बादे प्यार वफा। और इसी के बीच में हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत कर लें क्या। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम सतीश बोल रहे हैं मैम।
0: सतीश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हरदोई से बोल रहे हैं मैम।
0: क्या बात है, क्या बात है, स्वागत करते हैं आपका गोंडा में। और वैसे सतीश जी, आपसे एक बात पूछे। मैं आपसे एक बात पूछूं क्या?
1: हाँ पूछो मैम।
0: हरदोई वाले लोगों को कहा जाता है कि ये बहुत गुस्सैल होते हैं, क्या ये बात सच है?
1: हाँ ये तो है मैम।
0: उड़ी बाबा, आप हमको डरा रही हैं।
1: डरा नहीं रहे हैं, सच में है मैम।
0: सच में?
1: जी मैम।
0: ओके, तो मुझे लगता है बहुत ही शराफत के साथ आपके साथ गेम खेलना पड़ेगा।
1: क्या बोली मैम?
0: तो मुझे लगता है कि बहुत ही शराफत के साथ आपके साथ गेम खेल लिया जाए, इससे पहले कि आपको गुस्सा आ जाए।
1: हाँ हाँ मैम बिल्कुल।
0: ओके, तो डरते डराते हम आगे बढ़ते हैं। और ये बताइए कि मिस्टर इंडिया कौन थे?
1: क्या मैं बता रही हूँ?
0: मिस्टर इंडिया कौन थे?
1: कौन कौन मैम जी, आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है।
0: ओके, माफी चाहेंगे। क्या अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है?
1: बहुत स्लो आ रही है।
0: ओके, आई थिंक सिग्नल प्रॉब्लम है। हेलो,
1: हाँ आ रही है मैम।
0: अच्छा ये बताइए, मेरा आपसे सवाल था कि आपको पता है कि मिस्टर इंडिया कौन थे?
1: मिस्टर इंडिया नहीं पता है मैम।
0: आपने मिस्टर इंडिया फिल्म नहीं देखी?
1: नहीं देखी
0: है। ओह माय गॉड, यही तो एक फिल्म है जिसको देख देख के हम बड़े हो गए थे।
1: हमने नहीं देखी अभी।
0: अच्छा चले, कोई बात नहीं, आपको माफ किया। एक और सवाल है आपसे कि बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन आपको कौन लगता है?
1: हमें तो गोविंदा लगता है
0: ना। विलन?
1: जी मैम।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, ये गोविंदा जी को भी नहीं पता है कि वो कभी विलन बने थे, उन्हें तो बस आज तक हीरो ही याद रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और ये एक्चुअली मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि हमारे गोविंदा जी कभी विलन भी हुआ करते थे। आपको पता था ये बात? हमको नहीं पता था। लेकिन आइए भैया, हम गाना एंजॉय कर लेते हैं हमारे सतीश जी की फरमाइश का, जो उन्होंने अपने दोस्तों के नाम पर आई थिंक फरमाइश की है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉलर ट्यून गोंडा विद आरजीवती। और इन सवालों की चड़ी यूं ही चलती रहेगी, बस आपको उठाना है अपना फ़ोन, डायल करना है 6393-316-429। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे आपके वाले चैट बॉक्स में लेकर के आपके मैसेजेस। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मैसेज, आपके कॉल्स और आपकी फरमाइशों का इंतजार आज है पूरे 2 घंटे, यूं ही सिलसिला चलता रहेगा।

0: और ये फरमाइश है हमारे सतीश जी की, और इंजॉय करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, आ गई हैं, देखते हैं कौन है भैया। हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
1: जी हम बिल्कुल ठीक हैं।
0: आपके आते ही हमारी आवाज में बदलाव आ गया।
1: जी नाम बता दें अपना।
0: जी हाँ, आप अपना शुभ नाम बताइए, प्यारा प्यारा नाम बताइए।
1: वैसे आप तो जान ही गई होंगी।
0: हम सब जान जाते हैं, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं।
1: जी हमारी बस एक बात कर रहे हैं संडीला से।
0: क्या बात है शेख जी, आपका स्वागत करते हैं। वैसे मैं शेख जब भी सुनती थी मुझे लगता था हमेशा दुबई में ही होते होंगे ये लोग।
1: जी नहीं मैम, इंडिया में भी हैं।
0: वो तो आपसे मुलाकात करने के बाद पता चला ना कि हमारा एक शेख एक इंडिया में भी है।
1: अच्छा।
0: चलिए ये बताइए कि आप बॉलीवुड के लिए तैयार हैं?
1: जी मैम, इसीलिए तो कॉल
0: किए। ओके, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी दोस्तों, मतलब दोस्तों नहीं अरीबा जी, कि आपका पसंदीदा बॉलीवुड का डायलॉग कौन सा है, और उसको बिल्कुल उसी अंदाज में बोलने की कोशिश कीजिएगा।
1: जी मैम, मेरा पसंदीदा डायलॉग है धड़कन मूवी का सुनील शेट्टी का।
0: अरे वाह, मैं तैयार हूँ अंजलि बनकर, बस आप शुरू हो जाइए जरा देव बन के।
1: जी बिल्कुल, लेकिन मैं आवाज सुनी।
0: अब कोई बात नहीं, आवाज नहीं अंदाज लेकर आइए।
1: सॉरी मैम गलत हो गया,
0: आवाज ही नहीं आई आपकी।
1: जी आप
0: चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। बॉलीवुड का बहुत ही फेमस डायलॉग सुनील शेट्टी।
1: अब आई?
0: हाँ आप थोड़ी थोड़ी सी आई।
1: अंजलि अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। और इसी डायलॉग को मैं थोड़ा सा बदल के बोलूं, अरीबा जी तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब ये बता दीजिए कि आपका गाना कौन सा है।
1: जी मैम, मुझे धड़क मूवी का सुना दो।
0: धड़क कौन सा?
1: तेरे नाम की कोई सड़क।
0: ओके ओके, धड़क का टाइटल ट्रैक एंजॉय करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कॉलर ट्यून गोंडा में, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये तो थी हमारे साथ हमारी अरीबा जी, जिन्होंने आकर बता दिया है भैया कि अंजलि मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा होने नहीं दूंगा, तुम मुझे भूल जाओ ये भी हो नहीं सकता। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई डायलॉग है ना, तो जरा यहाँ आइए और हमें बताइए। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं पहले हमारा दोस्ती का गाना, फिर हम चलेंगे हमारी अरीबा जी की गाने की तरफ। तो बने रहिए, सुनते रहिए कॉल ऑफ गोंडा। दिस इज योर रेडियो ज्ञान 89.6 FM, गोंडा का अपना FM।

0: का।
1: तो भैया ये फरमाइश थी हमारे हरदोई से सतीश जी की, एंड आइए ट्यून कर लेते हैं हमारी अगली फरमाइश। लेकिन उससे पहले क्या ख्याल है भैया, चैट बॉक्स में चलने, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे चैट बॉक्स वासी। और इससे पहले कि हम बहुत ही प्यारा खूबसूरत नगमा एंजॉय करें, बहुत ही रोमांटिक गाना एंजॉय करें, देखते हैं हमारे साथ चैट बॉक्स में कौन कौन छुड़ गया है और किस किस के पैगाम हम तक पहुंच चुके हैं आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और हमारे साथ पहले सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आया है हमारे अरविंद जी का। हेलो आजय, उन्नति मैम कैसे हैं, शुभ दोपहरिया आपको भी, शुभ दोपहरिया, थैंक यू सो मच। एंड मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। जरा खान का मैसेज आ चुका है, हेलो नति मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ सारा जी, आप बताइए आप कैसी हैं। अरीबा जी का भी मैसेज आ गया है, अरीबा शेख लिखा है, हेलो नति मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप। अजी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। और आप भी बढ़िया ही होंगी क्योंकि अभी आपने देव बनकर बहुत ही बढ़िया डायलॉग मारा है। एंड इसके बाद है, कल आपको मिस किया बहुत बहुत, ओ माई गॉड, मैंने भी कल मिस किया था, इसलिए चैट बॉक्स में मैं आ भी गई थी क्योंकि रहा नहीं जाता। एंड इसके बाद हमारे सबलू जी का मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत करते हैं। और आपने लिखा था, नमस्ते आशुति जी, बरेली की सरकार, तरन्नुम मैम, जी हाँ, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड बाबू अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है, गुड आफ्टरनून अति मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारी गुलबशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुड आफ्टरनून अति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू गुलबशा जी, कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं। और इसके बाद हमारे पास मैसेज है, अमका उन्नति मैम जच गई, ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच इस तारीफ के लिए। एंड शाहरुख खान लिखा है आपने, बिल्कुल सही जवाब था, हमारे बॉलीवुड के बादशाह जो है वो शाहरुख खान ही है। इसके बाद जो मैसेज है, ओके, कितने आदमी थे, फेमस डायलॉग है गब्बर का, या आप बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। इट्स कुमार जी लिख रहे हैं, हाय गोंडा, हाय गोंडा, हाय गोंडा, इतना सारा हाय गोंडा, फिलहाल के लिए आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ हम इंजॉय करते हैं एक बढ़िया सा गाना और बाकी मैसेजेस को लेते हैं इस गाने के उस पार। तो सुनते रहिए, बने रहिए आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। और कॉलर ट्यून गोंडा में अपनी फरमाइश करने के लिए उठाना पड़ेगा आपको फ़ोन, अपना डायल करना पड़ेगा 6393316429, अपना नाम, अपने गाने का नाम और अपने शहर का नाम भेज दीजिए हम तक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: और भैया इस गाने को एंजॉय करते करते हमारे पास एक और कॉल आ गई है, तो क्या ख्याल है कॉल को ले लिया जाए? बिल्कुल सही ख्याल है आपका। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी, आप कौन हैं, क्या नाम है, कहाँ से हैं, शहर का क्या नाम है?
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ और शहर का नाम है धर्मनगर और मेरा नाम है अविनाश तली।
0: ओके ओके, आपका स्वागत करते हैं अविनाश जी, हमारी सिस्टर्स की तरफ से आए हैं आप। फिलहाल कैसे हैं आप ये बताइए पहले तो।
1: जी बहुत बढ़िया है और अभी ज्ञानस्थली 89.6 एफएम में जुड़ चुके हैं।
0: जी हाँ, आपका स्वागत करते हैं। और ये बताइए कि आज बॉलीवुड वाला हम फ्राइडे मना रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या आप उन सवालों को देने के लिए तैयार है जवाब में?
1: कोशिश करते हैं, देखते हैं।
0: अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ फिल्मों के नाम, वो भी बदल के। आपको गेस करना है कि ये कौन सी फिल्म है।
1: जी।
0: सबसे पहला तो है लैंड टैक्स। और हिंट ये है कि आमिर खान की फिल्म है।
1: अच्छा, आमिर खान की है।
0: जी। Any guess?
1: अच्छा, एक बार फिर बताइए।
0: लैंड टैक्स, भूमि का कर लिया जाता है इसमें।
1: अच्छा, भूमि कर। नहीं, ये फिल्म मैंने लगता है देखी नहीं है, इसलिए इसको तो नहीं जा पाएंगे।
0: ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये बता दें हम आपको कि जिस फिल्म की हम बात कर रहे थे वो थी लगान।
1: ओहो, अच्छा लगान, इसमें तो इंग्लैंड को भारत ने हराया था, वो मूवी थी।
0: वाह, और आपने कहा है आपने देखी नहीं है।
1: नहीं, इसका मैंने थोड़ा सा वो लगा, मतलब कि लास्ट फिनिशिंग वाला जो था वो अंतिम गेंद पर जो 6 रन चाहिए था वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने लगाया था छक्का, वो आमिर खान ने वो देखा था।
0: क्या
1: वो जो जी वो फेसबुक में जो शॉर्ट वीडियो डालते हैं ना, तो वहाँ पर देखा था वो।
0: चलिए चलिए चलिए, अब एक और सवाल है आपसे, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी, आपको हिंदी में बताना है। फिल्म का नाम है स्टार्स ऑन द ग्राउंड।
1: स्टार ऑन द ग्राउंड, अच्छा।
0: अगर आप इसको थोड़ा सा इस वाक्य को बदल सकते हैं हिंदी में, अनुवाद कर सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त नाम आएगा, स्टार्स ऑन द ग्राउंड।
1: अच्छा, इसको भी तो नहीं बोल सकते।
0: अब इसको भी देखिए, आमिर खान की ये फिल्म है और बच्चों की पसंदीदा फिल्म है।
1: अच्छा, तारे जमीन पे।
0: क्या बात है, इतना हिंट देने के बाद फाइनली आपने सही जवाब दे दिया है और हम बहुत खुश हुए।
1: अच्छा, नहीं आपने बच्चों का जब हिंट दिया ना तब समझ आया। अच्छा, फिल्म हो।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच। और आपका गाना हमें मिल चुका है, बस कुछ ही देर में प्ले करते हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए।
1: आपने आपने एक डायलॉग बात बोली थी, तो मैं एक डायलॉग सुना सकता हूँ?
0: बेशक, क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ।
1: जी जी जी, तो वहाँ पर काते के गिरे बांध पर तूने हाथ डाला, अरे गिरवा का हाथ डाले कलेजा खींच लूंगा, सालों सातों को एक साथ मारूंगा, कलेजा काट के चीज फाड़ के रख दूंगा।
0: भाई आपके अंदर ये कहां से सनी देओल जी आ गए अचानक से?
1: जी जी, इसमें डेनी को उन्होंने वैसे थोड़ा सा गाली बक रहे थे क्योंकि वहां पर एक्शन मोमेंट था वहां पर।
0: जी हाँ, और हम आपके एक्शन से समझ गए थे कि आपके अंदर थोड़ी देर के लिए सनी देओल बाजी की एंट्री हो चुकी थी। फिलहाल अब आप इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत जल्द आपके गाने को प्ले करते। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया।
0: लगता है आज हमने माहौल कर दिया है सीरियस, क्योंकि बॉलीवुड ने कर दिया है सबको अस्त व्यस्त। फिलहाल एंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून को, ना मिलते इस गाने के उस पर, तब तक के रेस्ट ट्यून थे।

0: और लगातार हमारे पास हमारी गुलफ्शा जी कॉल कर रही हैं, लेकिन हमारा कॉल बिजी आ रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिएगा हमारी गुलफ्शा जी। हमारे साथ एक और कॉलर है, लेसी कौन है? हेलो।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: जी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? हमारी अनुपा आंटी जी।
1: यस मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, और अभी आपसे बात हो रही है तो कॉल ज्यादा अच्छी हो गई।
0: और मुझे लगता है आपको ऐसे ही अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा अनु पांडे जी, ये बताइए कि आप गेम खेलेंगी कि गाना सुनने आई हैं?
1: क्या करेंगे मैं?
0: आप गेम खेलना पसंद करेंगी या सिर्फ गाना सुनने आई हैं?
1: नहीं, हम गेम खेलना पसंद करेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है, आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। और मेरी हंसी से आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे दिमाग में बहुत बड़ी खुराफात चल रही है।
1: तो पहले से ही पता है।
0: क्या कहना चाहती है, कि मैं शैतान हूँ?
1: ये नहीं कहना चाहती, पर कनेक्शन जिनसे दिल का जुड़ा है ना, तो जो आपके मन में की शरारत आती है, आपके दिल में की शरारत आती है ना, वो हमको पता चल जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ उसको पहले से पता है, क्योंकि अभी आपने सोचा नहीं कि हमको पता चल गया।
0: आहा, क्या बात है, हमें ही हमारे बातों में फंसाने का अंदाज आपका काफी अच्छा लगता है हमें। अच्छा चलिए, मैं आपसे रैपिड फायर खेलती हूँ, लेकिन आपको जवाब तुरंत तुरंत देना होगा, ठीक है? ओके ओके ओके। ये बताइए आप कहाँ से हैं?
1: गोंडा से
0: हूँ। गोंडा में कहाँ से? इतना भी जल्दी ना बोलिए कि हमको समझ ही ना आए।
1: आपने बोला जल्दी जल्दी बोलना था, हम जल्दी जल्दी बोल रहे।
0: जल्दी जल्दी का मतलब बोला था कि आपको बोलना है तुरंत बिना ब्रेक लिए, इसका मतलब यह नहीं था कि कोई समझ ही ना पाए हमारी अनु जी। चलिए, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है?
1: मेरा पसंदीदा रेड।
0: रेड रेड रेड, मैं समझ गया, रेड ये वाला तो समझ ही गए थे। आप खाने में क्या खाती हैं?
1: मिर्ची।
0: उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। ओके, रोशनी रावत जी या गुलफ्शा जी?
1: दोनों लोग।
0: ना ना ना ना, एक की बात हो रही है यहाँ पे।
1: रोशनी दी।
0: ओह माय गॉड, भाई गुलफ्शा जी देखिए आपको पीछे छोड़ दिया गया है, माफी चाहेंगे।
1: मैम आप पूरा गेम खेलो, फिर उसके बाद मैं समझा दे रही हूँ आपको, ये दोनों वाला गेम, मतलब दोनों दीदियों वाला।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं, अब आपकी दीदियाँ आपको समझाएंगी। रसगुल्ला या गुलाब जामुन?
1: रसगुल्ला।
0: क्या बात है। गोंडा या अयोध्या?
1: गोंडा।
0: पानी या कोल्ड ड्रिंक?
1: पानी।
0: दूध या लस्सी? दूध या लस्सी?
1: लस्सी।
0: मैं या आप?
1: क्या?
0: मैं या आप?
1: आप।
0: आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही जवाब के लिए हम उतनी देर से आपको घुमा रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा गाना है आपका, ये बता दीजिए फटाक से हमें।
1: हमको गाना सुनना है हाउसफुल 2 का, हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है, अरे वो जाने मन तू यू। और मैम आपने जब क्वेश्चन मेरे से किया ना, आपको गुलाब अंसारी पसंद है या रोशनी, तो हमने दोनों का आपका हमने कहा दोनों नहीं एक, तो हमने कहा रोशनी दी, रोशनी रोशनी हो गई दी, गुलाब दी हो गई।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही होशियारी के साथ आपने पट्टी पढ़ाई है, लेकिन मैं गुलफ्शा जी को अलग से पट्टी पढ़ा कर आऊंगी, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी।
1: अरे मान गई है, वो दी है रोशनी रोशनी जी है।
0: चलिए हम नहीं मानने देंगे फिलहाल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो अनु जी।
1: ओके मैम, पता है बहुत मजा आया गेम खेल के आपके साथ,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके मैम, बाय
0: बाय। तो भाई ये तो थी हमारी अनु जी, एंड पहले हम ट्यून कर लेते हैं हमारी ये शहर है अमन का, जो कि त्रिपुरा से फरमाइश आई है, और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अनु जी की फरमाइश की ओर, तो लगातार बने रहिए। गुलफ्शा जी हमें बार बार कॉल कर रही थी, और आई थिंक अब आप हमें वापस से कॉल कर सकती हैं।

0: और इसी शांति को तोड़ते हुए हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी है। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: अरे अरे अरे अरे अरे अरे, संभालो
1: संभालो। अल्ले
2: जी।
0: हाँ जी, गुलाबशाह जी।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून गुलाबशाह जी, हम आपको पहचान गए।
1: जी, गुलाबशाह सिद्दीकी बोल रहे हैं संडीला से।
0: जी जी, हम आपको पहचान गए पहचान गए पहचान गए
1: जी। और बताइए, आप कैसी हैं? कल आपसे बात नहीं हुई ना, आपको सुना हमने तो दिन अच्छा नहीं लगा हमें।
0: अरे, हमारा भी दिन अच्छा नहीं था, इसलिए हम चैट बॉक्स में मौजूद थे कल।
1: जी जी, हम देख रहे थे आपको, आप चैट बॉक्स में मौजूद थी। रोशनी रावत का कॉल आ रहा है मेरे पास।
0: हाँ जी, और वो जो हमने आपको पट्टी पढ़ाई है ना, वो हमारे बीच में ही रहने दीजिएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी छोटी अनु है ना, तो मैं उसकी बात मान लूंगी, आपकी भी बात मान लूंगी।
0: ये कैसे हो सकता है? फिलहाल ये बताइए, आप गेम खेलने के लिए तैयार है? क्योंकि आगे तो हमने स्पेशल डिजाइन किया है।
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये वाली लाइन सिर्फ हमने दो लोगों के लिए रखी हुई थी। पहला हमारे महेंद्र जी, जो आजकल हमको दिख नहीं रहे हैं, दूसरा थी आप। और ये लाइन कुछ इस तरह से,
1: आप तो फंसा दिया आपने हमको।
0: बहुत मजेदार बात है।
1: क्योंकि महेंद्र भाई को आप फंसाती हैं हमेशा।
0: हाँ जी, और ओके ओके, तो लाइन सुनिएगा। मदन मोहन मुरारी, मरमरी मरमरी मारवाड़ी, मारवाड़ी मुरारी मदन मोहन, मरमरी मरमरी मारवाड़ी।
1: इतना तो हम कैसे बोलेंगे?
0: चलिए कोई बात नहीं, बस आपको इतना बोलना है, मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मारवाड़ी।
1: मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मरमरी।
0: ना ना ना, मदन मदन मोहन मुरारी, मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मारवाड़ी।
1: मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मारवाड़ी। मदन मोहन,
0: पांच बार।
1: मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मारवाड़ी। मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मारवाड़ी। मदन मोहन मुरारी मरमरी मरमरी मरमरी मारवाड़ी।
0: इतना मरमरी तो था भी नहीं जितना आपने मरमरी कर दिया है।
1: वो हमें मरमरी वाले वो नहीं आते हैं। वो याद आ गए।
0: चलिए, अब ये बताइए, ये बताइए आपका गाना कौन सा है?
1: जी, गाना हमें कोई वो सुना दीजिए, वो है तेरा सराफा, कैसा है हमदम।
0: अरे क्या बात है, किया किया रे किया।
1: जी, सबसे पहले आपको है, अरीबा जी को है, जारा खान को है, रोशनी रावत को है, अनु पांडे को, अरविंद जी को है, और जितने लोग चैट बॉक्स में है सभी को है।
0: और ये तो मैं समझ सकती हूँ,
1: सभी को है
0: ये, मैं समझ सकती हूँ। ये गाना मुझे क्यों डेडिकेट किया गया है, क्योंकि सारी खुराबात मैं ही करती हूँ।
1: जी जी, हम लोग।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए गुलाबशाह जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमें इंतजार रहेगा हमारे मारवाड़ी जी के आने का, ताकि हम उनके साथ भी मदन मोहन मुरारी कर सके। फिलहाल के लिए एंजॉय करते रहिए, और हम पहले सुनेंगे हमारी अनु जी की फरमाइश, और उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर। और इसके बाद है आपके अपने उन कॉलर्स की फरमाइश जिन्होंने हमें फरमाइश तो भेजी, लेकिन बहुत देर से इंतजार में बैठे कि हमारी बारी कब आएगी। आएगी आएगी, बस इस गाने के बाद आएगी। तनिक सबर कीजिए प्लीज़।

और ये फरमाइश थी हमारे अनु जी की, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि हमारे पास गुलाबशाह जी का कॉल आया था और उन्होंने फरमाइश की थी कि या किया रे तो एंजॉय करते रहिए इस गाने को, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार ले करके हमारी अगली फरमाइश, जो कि हमारे सबलू जी की होने वाली है, देवी प्रसाद जी की है, सबिया जी की है, समरीन जी की है, सारा खान की है। एंजॉय करते रहे, कॉल अच्छी गोंडा विदुराज ही होती है और ये है गोंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM।

हाँ जी, और ये फरमाइश थी हमारी बहुत ही प्यारी गुलाबशाह जी की। एंड आइए बढ़ते हैं बाप के अगले गाने की तरफ। हमारा अगला फरमाइश जो है वो ऑफकोर्स हमारे सबलू जी का है, तो आइए एंजॉय करते हैं उनकी फरमाइश को और हम मिलेंगे लेकर के हमारा अगला गाना, अगली फरमाइश आपके अपने कॉल ट्यून गुंडा में जो होने वाला है देवी प्रसाद जी का, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गुंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM विद राज उन्नति, फ्राइडे का स्पेशल वाला फरमाइश।

और ये फरमाइश थी हमारे सबलू जी की, बहुत ही प्यारा नगमा था, बहुत ही प्यारा सा गजल था। एंड आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ। और अरविंद जी ने तारीफ में कहा है, भैया अनुदित जी आप फंसा देती हैं। नहीं, हम आपको नहीं फंसा देते हैं, हम आपसे बहुत अच्छे से सवाल करते हैं, हमको सवालों में बड़ा मजा आता है। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अमित जी, वी मिस्ड योर स्टडी, थैंक यू सो मच। और मैंने भी बहुत मिस किया है आप सभी लोगों को कल। एंड इसके बाद है कि भैया सब लोग कहाँ चले गए? डर के आगे जीत है और जीत के आगे आरजी उन्नति खड़ी है इसीलिए पीछे नहीं लौटना होता है, वापस आना होता है। फिलहाल के लिए एंजॉय करती रहिए। इट्स कुमार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सबलू सावंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लगातार मैसेजेस हैं। पप्पू जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? उस्मान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग आज मैम, गुड इवनिंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप? एंड धर्मेंद्र जी ने लिखा है, महफिल में रौनक के लिए हवाओं में घुली है आज एक नई सी सरगम, इनके आने से दूर हो जाता है हर एक गम, पलके बिछाकर हम कर रहे हैं हम सब इंतज़ार, आज उन्नति जी का इस महफिल में तहे दिल से स्वागत है। यार क्या बात है, क्या बात है, इतने हसीन तरीके से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद आप ही लोगों के बहुत सारे मैसेजेस, हंसते हंसाते खिलखिलाते आगे बढ़ते हुए रोशनी रावत जी का मैसेज आ गया है, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड डियर क्यूट क्यूट क्यूट रति मैम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और इतनी क्यूट तो मैं हूँ भी नहीं जितनी दवा आपने इसमें लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। एंड अरविंद जी का कहना है कि वक्त की यारी तो हर कोई करता है मेरे दोस्त, मज़ा तो तब है जब वक्त बदले पर यार ना बदले। क्या बात है, बहुत ही बखूबी आपने लिखा है। एंड इसके बाद गुलफशा जी का मैसेज है कि हम हैं, जी हाँ आप हैं, और आपने बहुत ही अच्छे से हमारे साथ गेम भी खेला है, हमारे पास जवाब आया था।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे इश्क का दर्द जगा बैठे, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश हमारी देवी प्रसाद जी की थी। अगली फरमाइश हमारे पास है हमारी सबीहा जी की, तो एंजॉय कीजिए एक बेहतरीन सन नगमा, वो भी पंजाबी आवाज़ में, एंड यादें ताज़ा कर देते हैं। कुछ लोग लगता है आज रोना पड़ेगा सॉन्ग सुन के। जी नहीं, बिल्कुल अभिन जी रोइएगा नहीं, वैसे भी आजकल आपकी तबीयत में थोड़ा ही सुधार आया है, और आप रो के उसे दोबारा ख़राब करें ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं। हाय हाय लिखा है आपने, फिलहाल कैसे हैं आप? आपका भी वेलकम है कॉलेज यूनिकोडा में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के हमारी संभी जी की फरमाइश को। सो स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारी सभिया जी की। एंड आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। तेरा मेरा रिश्ता फरमाइश आ चुकी है समरीन की तरफ से। एंजॉय करते रहिए बारापन से, बहुत ही प्यारा नगमा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है ये, तो ऑफ कोर्स सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड जारा खान आपका गाना हमने नोट कर लिया है, हालांकि हम सुनाने वाले कुछ और थे, बट अब आपकी फरमाइश पर आप ही का गाना बजने वाला है, तो इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा, बस मिलते हैं इस गाने के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: और ये फरमाइश थी हमारे समरीन जी की, एंड हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गई है। लेट्स सी हमारे साथ कौन है आज कॉल पे। हेलो
1: हेलो, नमस्ते आदाब, कैसी हैं आप?
0: हेलो नमस्ते आदाब, अच्छे हैं हम। अब आप बताइए क्या है आपका नाम?
1: मेरा नाम वही है जाना पहचाना सा,
0: जाने जा पहचाना मुझे।
1: अब पहचान ही लो
0: रोशनी जी। ओके ओके, आप आई, रोशनी आई, बाहर आई।
1: बिल्कुल बिल्कुल आ गई।
0: चलिए,
1: बहुत दिनों बाद आई रोशनी।
0: हाँ, बहुत दिनों बाद आई। वैसे मैं कह भी रही थी कि आप चली गई तो हमारे गुंडा से बत्ती भी गायब हो गई थी।
1: हाँ, वो चली गई तो देखो पानी भी भर गया साथ में बत्ती के खाने के बाद।
0: जी जी जी। वेल, ये बताइए, आप शाहरुख खान की फिल्में देखती हैं?
1: देखती तो मैं बहुत, मूवियां सभी देखते हैं, लेकिन अब ये क्या है कि अब आप ऐसा कुछ पूछेंगे जो हमने देखा ही होगा।
0: ये क्या बात होती है, हम ऐसा क्यों पूछेंगे जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा।
1: ठीक है ठीक है, हम तैयार हैं, आप पूछिए।
0: चलिए, पहले तो मैं आपसे यही कहवाना चाहूंगी कि एक बार जरा हो जाए कि किरण तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी।
1: डर
0: डर डर, ये तो मुझे भी पता है कि ये डर फिल्म का है, लेकिन आपको यही डायलॉग बोल के बताना है।
1: अरे हमने तो ये मूवी भी नहीं देखी।
0: कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बस इतना ही बोलना है।
1: ये तो किसी और का है। नहीं, किरण वाला तो इसी में का है, लेकिन तू मेरी है ये किसी और मूवी का है।
0: नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये तो गाने की लाइन है ना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, बस आपको इसी अंदाज में बोलना है, लेकिन डायलॉग की तरह।
1: अनुजी,
0: ये किरण से अनुजी कहाँ आ गई भाई?
2: मैं बोल ले रही हूँ क्या?
1: बोलो बोलो।
2: किरण, तुम मेरी हो, मेरी।
0: All right, एक और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार रोशनी जी से।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: Come on, रोशनी जी, आप कर सकती हैं, मुझे आप पे भरोसा है।
1: बिल्कुल, हम भी भरोसे पे, मतलब वो उतरेंगे।
3: क्या मुझे पूरा भरोसा है।
1: हाँ, करें उतरेंगे हम।
0: चलिए चलिए, कोशिश कीजिए किरण।
3: जल्दी
0: भाई, इतना सोचेंगे तो हमारे लिस्टर सोचेंगे कि आप सो गई हैं।
1: हमें आइसक्रीम
3: खा लो, आइसक्रीम खा लो, बोल पाओगे।
0: और भाई, मुझे लग रहा है ना कि हमारे रोशनी जी आइसक्रीम खाने में बिजी हो गई हैं, तो आप आइसक्रीम खाकर आइए, तब तक के लिए हम यहाँ किसी और से किरण करा लेते हैं। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हमारी अगली फरमाइश पर। हमारी अनु जी ने तो किरण कर दिया, लेकिन हमारी मैम रह गई, यानी कि हमारी रोशनी जी रह गई। फिलहाल आइए इंजॉय करते हमारी जारा खान की फरमाइश, मिलते हैं इस गाने के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं कॉल ऑफ गोंडा विद राज, और ये गोंडा का अपना FM रेडियो 91.6 FM।

और ये फरमाइश थी हमारी ज़ारा खान की अनसी के साथ। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। बाराबंकी से हमारे पास फरमाइश आई है अदनान सामी की आवाज़ में, तेरा चेहरा। बाबू अंसारी जी की फरमाइश है, एंजॉय करते रहिए। बहुत ही प्यारा रोमांटिक नगमा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बेहद ही प्यारे बोल लिखे हैं। एंड हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गुंडा विद राज होती, और ये है आपका अपना रेडियो क्या 89.6 FM।

क्या बात है भैया, बाबू अंसारी साहब ने बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की थी। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं लता जी की आवाज़ में, एंजॉय करते हैं हमारी रीना शर्मा जी की फरमाइश, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को कहा है कि आज का गेम बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने जवाब भी दिया था कि पहला सुपरस्टार जिन्हें कहा जाता है वो है राजेश खन्ना, जो कि एकदम सही जवाब है। तो आइए उनकी फरमाइश पे एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, दिल का दिया जला कर गया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी हमारे रीना शर्मा जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली गाने की तरफ। अगला गाना हमारे निपा जी की फरमाइश पर है, पूरब से निकलकर पश्चिम तक। एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस नगमे के उस पार। तब तक के लिए आप सुनते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा FM पर। अगली फरमाइश हमारे सुरेश जी की, राम नरेश जी की, इम्तियाज जी की, धर्मेश जी की, रईस जी की, निशा की एंड हमारे अमित कुमार जी की और मनीष शर्मा की।

0: माझी मदिरा में खो गए, अरे अच्छे खासे लोग थे।
1: ये फरमाइश थी मारेनी बजी की। एंड आइए बढ़ते हैं सुरेश कुमार जी की फरमाइश को ट्यून करने के लिए, जो हमें चौक से सुन रहे हैं। एंजॉय करते रहिए, कुमार सानू की आवाज़ है, चूम लूँ तुझको, दिल की यही ख्वाहिश है। और हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि हमारे राम नरेश जी की फरमाइश है अमर अकबर एंथनी से। स्टे ट्यून्ड।

कुमार सानू के पास में आप इंजॉय कर रहे थे हमारे सुरेश कुमार जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमारा अगला गाना है अमर अकबर एंथनी से, जहां होते हैं ये तीनों। बिल्कुल इंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि हमारे इम्तियाज जी का है। एंड उसके बाद धर्मेश जी, रईस जी, निशा जी, अमित कुमार जी और मनीष शर्मा जी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे कॉलर ट्यून गुंडा फिर राजनीति

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है इम्तियाज जी की, तो इंजॉय करते रहिए। ऐवाना तेरा इश्क इश्क और बशीर रतौला पर फिल्माया गया गाना है क्रीड क्रैंड मस्ती से, और मिलते हैं इस गाने के उस पार जो कि हमारे धर्मेश जी का है ताकी ताकी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

और ये फरमाइश थी हमारे इम्तियाज जी की, अब बारी है हमारे अपने धर्मेश जी की तरफ चलने का। उनकी फरमाइश आ चुकी है हिम्मत वाला से, ताकी ताकी ताकी रे, और इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि होने वाला है पंजाबी मस्त। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कॉलर शिनगुंडा विद्रा अर्जुनती।

ये फरमाइश थी हमारे धर्मेश त्रिपाठी जी की एनएसी के साथ। हाँ, ये ट्यून कर लेते हैं हमारे अगले गाने को। हमारा अगला सॉन्ग जो है वो ऑफ कोर्स आपके अपने रई साहब का है और वो सुनना चाहते हैं पंजाबी। मस्त एंजॉय करते रहिए, साजिद वाजिद का गाना है। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लय करके अगली फरमाइश को, जो कि हमारे निशा जी की होने वाली है। एंड मनीष शर्मा जी के बाद जो हमारे पास आखिरी फरमाइश है वो हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फ्रॉम आवास विकास।

और ये फरमाइश थी हमारे रईस साहब की, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग है तुम पे खर के भरोसा हमने खाया है धोखा, फरमाइश है हमारी अपनी निशा जी की, तो इंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आप इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोंडा विद राजू 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर।

और ये फरमाइश थी हमारे निशा जी की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है अमित कुमार की और वो सुनना चाहते हैं सेकंड हैंड जवानी। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगली फरमाइश हमारे मनीष शर्मा जी की है और इसके बाद है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश।

एंड इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली फरमाइश की ओर, जो कि हमारे मनीष शर्मा जी की है। डांस बसंती, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगली फरमाइश हमारी है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। एंड जाने से पहले एक और फरमाइश आ चुकी है हमारे राजा जी की, तो आपका भी वेलकम करते हैं। और आपका नाम है राजा सिंह, आपका स्वागत करते हैं कॉल ट्यून गुना में। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

बहन जी, ये था डांस बसंती। और उसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश को ट्यून करते हुए। हम मिलेंगे आपसे अपनी आखिरी दो फरमाइशों की, हो जो कि हमारे राजा सिंह जी की और प्रकाश जी की होने वाली है। स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश है हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और आप सुनने जा रहे हैं ओशेरा तीर ताज। आप इंजॉय करते रहिए केसरी टू से। हमारे हमारे राजा सिंह जी की फरमाइश है और हम मिलते हैं अपनी आखिरी फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारी राजा सिंह जी की, एंड ये है हमारी आखिरी फरमाइश आज के प्रोग्राम की, जो कि हमारे प्रकाश भारती जी की है, सैयारा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये गाना उन सभी के लिए डेडिकेटेड है मेरी तरफ से जो हमारे साथ पिछले 2 घंटे से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपनी फरमाइश हम तक नहीं की थी, जो लगातार हमें सुन रहे हैं रेडियो गार्डन से, फ्रिक्वेंसी से और एप्लीकेशन से। तो भैया इन्जॉय करते रहिए, और ऑफकोर्स ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड गाना है हमारे प्रकाश जी की फरमाइश पर, इन्जॉय करते रहिए। फिलहाल आप चाहेंगे आपसे इजाजत, कल मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम सेम जगह यानी कि आपके अपने कॉलेज ट्यून गुना में, सेम प्लेटफॉर्म रेडियो 89.6 FM पर। फिलहाल आज का शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, फीडबैक जरूर से दीजिएगा। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव,
2: और मैं रचना शर्मा,
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा के सेवा संकल्प अभियान के तहत गोद भराई, अनप्राशन एवं हेल्दी बेबी शो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बता दें कि जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन के निर्देशानुसार सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार में बाल विकास एवं पुष्टा आहार विभाग द्वारा गोद भराई, अनप्राशन एवं हेल्दी बेबी शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद ने की है। कार्यक्रम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा बाल विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अनप्राशन संस्कार कराया गया, साथ ही साथ स्वस्थ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। उपस्थित अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने बच्चों के समुचित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए संतुलित आहार एवं आवश्यक देखभाल के महत्व पर प्रकाश डाला है।
2: गोंडा में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि को लेकर गोंडा शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी तैयारियां की जा रही हैं। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां तेज हैं। इसी बीच केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर आगामी नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं की मांग की है। महासमिति की ओर से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया, ताकि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नवरात्रि के साथ साथ गोंडा में युवाओं और परिवारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। डांडिया और गरबा नाइट को लेकर भी लोगों में उत्साह है। शहर में कई अलग अलग स्थानों पर डांडिया और गरबा नाइट का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोक संगीत और गरबा के साथ साथ नवरात्रि के उत्सव का आनंद ले सकते। यानी इस बार गोंडा में नवरात्रि सिर्फ धार्मिक आस्था और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर में सांस्कृतिक उत्सव और पारिवारिक मनोरंजन का भी रंग देखने को मिलेगा।
1: आगामी त्योहार में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने बढ़नी से जलंधर सिटी के बीच साप्ताहिक अनारक्षित त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे गोंडा और आसपास के यात्रियों को पंजाब की तरफ जाने आने में सुविधा मिलेगी। बता दें कि 05005 बढ़नी जलंधर सिटी साप्ताहिक विशेष ट्रेन 7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को चलेगी। बढ़नी से दोपहर करीब 3:10 पर रवाना होकर तुलसीपुर 3:50, बलरामपुर 4:18 पर पहुंचेगी। वहीं यह ट्रेन गोंडा 5:15 पर पहुंचेगी।
2: गोंडा में सरयू और घाघरा नदियों के उफान के बीच नदी के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में मगरमच्छ की दस्तक ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ब्योंदा माझा गांव के पास एक विशालकाय मगरमच्छ देखे जाने की खबर सामने आई।
1: जनपद में बीते दिनों तेज आंधी एवं वर्षा के कारण किसानों की फसलों की हुई क्षति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती प्रियंका निरंजन ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में जिन जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है, उनका समयबद्ध तरीके से सर्वे कराया जाए तथा नियमानुसार पात्र किसानों को फसल बीमा योजना का क्लेम दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं इफको टोक्यो फसल बीमा कंपनी की संयुक्त टीम गठित की गई है। यह संयुक्त टीम प्रभावित क्षेत्र एवं खेतों में पहुंचकर फसलों की हुई क्षति का स्थलीय सर्वेक्षण करेगी। सर्वे के साथ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए पात्र कृषकों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं उपनिदेशक कृषि संतोष कुमार द्विवेदी ने जनपद के समस्त सम्मानित कृषकों से अपील किया है कि जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है और तेज आंधी एवं वर्षा के कारण उनकी धान अथवा मक्का की फसल को नुकसान हुआ है, वे फसल क्षति की सूचना घटना के 72 घंटे के अंदर टोल फ्री नंबर 1444-7 यानी कि 1444-7 पर अवश्य दर्ज कराएं। किसान फोन करते समय अपना नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड तथा तहसील का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज कराएं।
2: गोंडा में बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बुधवार 30 सितंबर को जिले में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम

0: क्योंकि सुबह और रात के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने का अनुमान है।
1: गोंडा के युवक ने दिखाया खेल में दमखम। बता दें कि भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम ने राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को पारी और 48 रन से हराकर शानदार जीत की है। भारत की जीत के नायक जनपद के लक्ष्य रायचंदानी रहे, जिन्होंने 240 रन की शानदार पारी खेली है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया टीम लक्ष्य के व्यक्तिगत स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाई और 229 रन पर ऑल आउट हो गई है। ऐसे में जनपद गोंडा में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है।
0: गैस कनेक्शन धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है। जिन उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन है, वे संबंधित गैस कंपनी के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन ऑयल गैस उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन ऐप से, एचपी गैस उपभोक्ता एचपी पे ऐप से और भारत गैस उपभोक्ता हेलो बीपीसीएल ऐप के इस्तेमाल से केवाईसी की प्रक्रिया घर बैठे कर सकती हैं। अगर मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी करने में किसी तरह की परेशानी आती है तो उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर भी ये प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे भी गैस एजेंसी पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उपभोक्ता गैस एजेंसी से संपर्क कर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
1: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद गोंडा के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम एवं वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग FLC के प्रयोजन से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वीडियोग्राफी के तहत खोला एवं बंद किया जा रहा है। जनपद गोंडा के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक प्रसिद्धीय विद्यालयों के संचालन में 1 अक्टूबर से बड़ा संशोधन लागू किया गया है। मौसम में आ रहे बदलाव आगामी शीतकालीन सत्र के दृष्टिगत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA अमित कुमार सिंह ने सुबह गुरुवार को 8:30 पर एक नया रोस्टर जारी किया है। यह व्यवस्था आगामी 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अब स्कूल प्रातः 9 बजे खुलेंगे और अपराह्न 3 बजे शिक्षण कार्य समाप्त होने पर अवकाश होगा।
0: यात्रियों के लिए रेलवे से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने शकूर बस्ती और दरभंगा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 04098 और 04097 नंबर की शकूर बस्ती दरभंगा शकूर बस्ती त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। खबरों के मुताबिक शकूर बस्ती से ये ट्रेन 1 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलाई जाएगी। इस दौरान ट्रेन सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी, वहीं मंगलवार को इसका संचालन नहीं किया जाएगा। वहीं वापसी में यही ट्रेन दरभंगा से 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। दरभंगा से भी ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और बुधवार को इसका संचालन नहीं होगा। त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और दूसरे शहरों से यात्रा करते हैं। ऐसे में रेलवे के इस विशेष ट्रेन के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार शकूर बस्ती से चलने वाली ट्रेन और दरभंगा से वापस आने वाली ट्रेन निर्धारित दिनों के अनुसार संचालित की जाएगी।
1: बीते दिनों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना गोंडा के 1 दिवसीय दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर वन संरक्षण से जुड़े निर्देश दिए। उन्होंने भाजपा के जिला अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों से जनपद में वन संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को वन संरक्षण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद भाजपा के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा की है।
0: गोंडा साइबर थाना पुलिस ने AP के फाइल भेजकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड दीपक सिंह तंवर को बुधवार देर शाम 4:30 राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़ितों के मोबाइल फोन में मालवेयर भेजकर सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता था और फ्रॉड किए गए धन से 5-स्टार होटलों और महंगे आभूषणों का आनंद उठाता था। पकड़े हुए मास्टरमाइंड की पहचान सीकर राजस्थान निवासी दीपक सिंह तंवर के रूप में हुई है। आरोपी को गोंडा साइबर थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके गोंडा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल परीक्षण कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते 19 अगस्त को भी कमल खड़का और करण सिंह शिखावत को भी इसी मामले में साइबर थाना ने जेल भेजा था। दरअसल नगर कोतवाली अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी निवासी राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की

0: फोन में अज्ञात लिंक के जरिए एपीके एप्लीकेशन लोड करवा दी गई थी। इसके तुरंत बाद उनके बैंक खाते से 5,23,000 रुपए गायब हो गए। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस अधीक्षक को सौंपी, जिसके बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर साइबर एक्सपर्ट मोहन यादव ने जांच शुरू की है।
1: इंडिया गठबंधन से सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के सवाल पर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने इसे नकार दिया है। 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की सरकार बनेगी और पिछली बार से ज्यादा बहुमत मिलेगा।
0: गोंडा के मनकापुर गांव में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में जुटी समूह सखियों ने 5 वर्षों से लंबित कार्य आधारित मानदेय और अन्य बकाया भुगतान को लेकर आवाज बुलंद की है। गुरुवार को समूह सखियों ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से उनके आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने इस मामले में उच्चाधिकारियों से बात कर जल्द निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। समूह सखियों ने ज्ञापन में बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्हें गाँवों में विभिन्न जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी है। इसके लिए उन्हें महज 2,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। इसी राशि से मोबाइल रिचार्ज और गाँव में आने जाने का खर्च भी वहन करना पड़ता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी सहित कई अतिरिक्त सरकारी कार्य भी कराए जा रहे हैं। समूह सखियों के मुताबिक बचत खाता खुलवाने, आरएफ फंड, स्टार्टअप फंड और सीसीएल लोन पास कराने जैसे कार्यों के लिए कार्य आधारित मानदेय दिए जाने की व्यवस्था बताई गई थी। उनका आरोप है कि वे करीब 5 वर्षों से ये जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन कार्य आधारित मानदेय के नाम पर अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
1: अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सीडीओ ने वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता एवं उनके योगदान के कृतज्ञता व्यक्त करना रहा। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद ने जनपद के वरिष्ठ नागरिकों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया है। सम्मान प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे पर खुशी एवं उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल धरोहर हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन से प्राप्त सीख नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक के सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संवेदनशील एवं योगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। उनके अनुभव से युवा पीढ़ी को निरंतर सीख मिलने तथा उनके प्रति सम्मान और आत्मीयता बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय एवं सम्मानजनक जीवन की कामना किया है।
0: नवाबगंज थाने में बुधवार को थाना अध्यक्ष अभय सिंह को दी गई विदाई। उनके तबादले पर थाना परिसर में एक समारोह हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भावुक नजर आए। वहीं थाना अध्यक्ष अभय सिंह की आंखें भी नम थी। लोगों ने उन्हें फूलमालाएं पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किए। वहीं नए थाना अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह का स्वागत भी किया गया। विदाई समारोह में अभय सिंह ने कहा कि सरकारी सेवा में तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग और स्नेह को याद रखने की बात कही। नवागत थाना अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाना होगा। वे मित्र पुलिस की भूमिका निभाते हुए लोगों की समस्याओं को जल्द हल करने की कोशिश करेंगे।
1: गोंडा के मैजापुर गांव के भार्गोपुर में दोपहर करीब 1 बजे बिजली लाइन जोड़ते समय करंट लगने से युवक खंभे से नीचे गिर गया। हादसे में हरसिंहपुर निवासी सोहनलाल और सुंदरलाल युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। परिजन उसे बालपुर के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे तत्काल मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग किया है। परिजनों के मुताबिक सुंदरलाल बिजली विभाग में निजी तौर पर काम करते हैं। वह मैजापुर भार्गो पूर्वाक में बिजली लाइन जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़े हुए थे। इसी दौरान अचानक बिजली आपूर्ति चालू हो गई। करंट की चपेट में आने से वह खंभे के नीचे गिर गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई।
0: 30 ग्राम पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन। सीएम डैशबोर्ड पर अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त और पंचम राज्य वित्त की कम व्यय प्रगति के बावजूद 28 सितंबर को बुलाई गई समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहना 30 ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ गया। प्रभारी डीपीआरओ जीडी जैन ने इन सभी का 28 सितंबर का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। सीडीओ की अध्यक्षता में 28 सितंबर को विकास भवन सभागार में ग्राम पंचायतों की वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें संबंधित सचिवों को अपनी ग्राम पंचायतों में केंद्र वित्त और पंचम राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि के व्यय की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना था, मगर 30 सचिव बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद महेश सैनी, शिव कुमार पटेल, जितेंद्र मौर्य, विशाल मौर्य, नीलम रानी समेत कईयों पर कार्रवाई हुई।
1: जनपद गोंडा में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा करीब 2 बजे भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और आयोग के भीतर पारदर्शिता के अभाव को लेकर गोंडा अंबेडकर चौराहे से गोंडा जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों और जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की प्रमुखता से आवाज उठाई है। वाम दलों ने अपने ज्ञापन में हालिया आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।
0: पीसीएस 2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर हुई रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2025 के परिणाम से जुड़े मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को अंतिम परिणाम घोषित करने से रोक दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन याचिका पर फैसला आने तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने संजय कुमार और 3 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में आयोग के 9 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन पीसीएस 2025 की भर्ती के विज्ञापन में दिए गए सामान्य निर्देशों के बिंदु 19 और 1 दिसंबर 2025 को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है। याचियों का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के ऐसे मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया, जिन्होंने सामान्य वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।
1: बच्चों के आधार में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने के निःशुल्क सुविधा अब 30 सितंबर 2027 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले यह सुविधा 30 सितंबर 2026 तक थी। अभी प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ बच्चों का आधार अपडेट होना बाकी है, ऐसा माना जा रहा है। समय बढ़ने से काफी सहूलियत होगी। UIDAI के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि आधार में बायोमेट्रिक अपडेट 2 बार जरूरी होता है। पहली बार बच्चा जब 5 साल की उम्र पूरी कर ले और दूसरी बार 15 साल की उम्र पूरी होने के बाद। इसमें बच्चे की फोटो, फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली का विवरण अपडेट किया जाता है। इसमें बच्चे के बड़े होने के बाद आधार से पहचान की पुष्टि में आसानी होती है। UIDAI ने सितंबर 2025 से 7 से 15 वर्ष के बच्चों के पहले अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का शुल्क 1 साल के लिए माफ किया था। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित अपडेट को पूरा कराना था। समय सीमा बढ़ने से अभिभावकों को इसके लिए 1 साल और मिल गया है। तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। इंद्रेश को दे इजाजत, नमस्कार।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है,
2: अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, सांचे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका। सांचे विरासत के माध्यम से हम लॉस्ट इंडियन फोक आर्ट्स को एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शामिल स्विस जर्मन चित्रकार पॉल क्ली ने कला पर एक बातचीत में कहा था कि हम में अभी भी अंतिम शक्ति की कमी है, क्योंकि हमें संपोषित करने वाली कोई संस्कृति नहीं है। पॉल क्ली के वक्तव्य की पृष्ठभूमि अलग थी, उसका संदर्भ अलग था। बावजूद इसके उनका वक्तव्य न केवल भारतीय आधुनिक कलाओं बल्कि लोक कलाओं की वर्तमान स्थिति पर भी सटीक बैठता है। बिहार की मंजूषा कला भी उनमें से एक है। मंजूषा पेंटिंग भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। इस कला का विशेष प्रभाव प्रदेश की पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है, जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक बहुत बड़ी विरासतों में से एक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की तरह मंजूषा कला भी है। इस कला को भी कपड़ों पर उकेरा जाता है। मंजूषा कला भारत की एक ऐसी अनोखी लोक कला है जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा अंग प्रदेश की बहुत बड़ी विरासतों में से एक। वैदिक इतिहासकारों की माने तो मंजूषा कला पर सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार ये कला प्राचीन अंग महाजनपद को इतिहास को उकेरती है। साथ ही ये पेंटिंग्स बिहुला विषहरी की कहानी को भी दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग्स एक ऐसी लोक कला है जो भारत के अंग क्षेत्र में विकसित हुई। इन्हें अक्सर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। उनके चमकीले रंग और उत्कारीगरी चित्रों को अलग बनाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहद प्राचीन कालीन पेंटिंग है जो लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इस कला को वैश्विक पहचान भी मिली है। इस पेंटिंग को GI टैग तो मिला, फिर भी इस पेंटिंग को विशेष पहचान न मिल पाई। मंजूषा आर्ट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्नेक पेंटिंग्स बाय फॉरेनर्स एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुला'स टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। मंजूषा आर्ट इज अ मैग्निफिशेंट सागा ऑफ हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंग महाजनपद। अगर हम मंजूषा कला के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो मंजूषा अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस कला रूप का पता 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता था, लेकिन 1931 के आसपास यानी करीब 1931 से 1948 के बीच के वर्षों में ये कला फली फूली। मंजूषा पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन अंग प्रदेश से हुई जिसमें वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र के आसपास मौजूद वनस्पति और जीव के चित्रण के रूप में हुई थी। विहुला विषहरी कहानी ये भी कहते हैं। ये कहानी बताती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए, जो आयुर्वेद के महत्व को छूता है। पहले इस कला का निर्माण केवल दो परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार समुदाय बर्तन या कलश बनाते थे और उन्हें मंजूषा चित्रों से सजाते थे, जबकि मालाकार मंजूषा संरचनाएं बनाते थे और उन्हें मंजूषा रूपांकनों से सजाते थे। मंजूषा पेंटिंग्स 7वीं शताब्दी ईस्वी से चली आ रही है। चित्र मूलतः कुंभकार जाति जो कि व्यापार से कुम्हार थे उनके द्वारा बनाए गए थे। कुंभकारों ने विशिष्ट मंजूषा चित्रकला शैली विकसित करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल का उपयोग किया। वे मिट्टी की एक पतली चादर बिछाते थे और उसे पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों से रंगते थे। एक लंबे समय तक चलने वाला नमूना बनाने के लिए चित्रों को भट्टी में जला दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग को मिट्टी के बजाय कपड़े और कागज पर भी चित्रित किया जाने लगा। चूंकि मिट्टी की पेंटिंग अधिक नाजुक और ले जाने में जटिल थी, इसीलिए यह स्थिति बनी। 19वीं शताब्दी में अंग क्षेत्र व्यापार और कारोबार का केंद्र बन गया।
तो मंजूषा पेंटिंग की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्षेत्र के तीर्थ यात्री और यात्री अक्सर कलाकृति बेचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग का चलन खत्म हो गया। यह विभिन्न परिस्थितियों के कारण था, जिसमें पश्चिमी कला रूपों का प्रवेश और व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अंग क्षेत्र का पतन शामिल था। मंजूषा पेंटिंग बिहुला बिशारी की कथा से जुड़ी लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये चित्र बक्सों पर बनाए गए थे, जिनका उपयोग भक्तों द्वारा बिशारी पूजा के लिए अनुष्ठानिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। एक अन्य अनुष्ठान जिसमें मंजूषा पेंटिंग शामिल है, वो है जिसमें दूल्हे से सभी चार बिसहरियों को सिंदूर पाउडर या सिंदूर लगाने की उम्मीद की जाती है और उसके बाद ही वो अपनी दुल्हन के साथ मंडप में शामिल हो सकता है। विशारी पूजा के दौरान कलश और मंदिर संरचित बक्सों की पूजा की जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि देवता की पूजा करने से उन्हें उनकी शक्ति और सुरक्षा मिलेगी। महिलाएं अपने जीवन साथी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिहुला से प्रार्थना भी करती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मंजूषा पेंटिंग की वापसी देखी गई है। ये इस ऐतिहासिक कला रूप के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित कलाकारों और संगठनों के प्रयास का धन्यवाद है। आइए जानते हैं कि क्या होती है मंजूषा कला, आखिर क्यों ये कला इतनी ज्यादा लोकप्रिय है और इतनी ज्यादा मैग्निफिशेंट आर्ट के तौर पर जानी जाती है। मंजूषा कला भारतीय कला का सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ये कला अंग प्रदेश की विशेषताओं को वर्णित करती है, साथ ही साथ अंग प्रदेश की लोक कथा बिहुला बिशहरी के बारे में भी मंजूषा कला के माध्यम से बताई जाती है। इस कला में एक मोटी और लंबी लाइन का प्रयोग किया जाता है और साथ ही बालों को लाइन के माध्यम से नहीं बल्कि रंगों से दिखाया जाता है। इस कला में देवी देवताओं और अंग प्रदेश के इतिहास के साथ साथ बिहुला विषहरी की कथा को दर्शाया जाता है, जिसमें 5 जहरीली बहनों के साथ एक सांप दिखाने की परंपरा है, जहां पात्रों के बाल खुले रहते हैं। चित्रों के माध्यम से बिहुला को उसके खुले केश और उसके सामने मंजूषा यानी नाग को चित्रों के द्वारा उकेरा जाता है। इस चित्र में एक ऐसी देवी को दर्शाया जाता है जो दाहिने हाथ में अमृत कलश लिए रहती हैं। इस कला में मुख्य रूप से गुलाबी, पीले और हरे रंग को उपयोग में लाया जाता है। इस कला में जो देवी देवताओं या महिलाओं की चित्र बनाई जाती है, उसमें उनकी सज्जा का बहुत महत्व रखा जाता है। कभी कभी इस कला में हरा और नारंगी रंग के जुड़े सामान्य सहायक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में केवल 3 रंगों का उपयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। एक महत्वपूर्ण और परिभाषित कारक इसकी सीमाएं हैं, जो पत्तियों, त्रिकोण और सांपों के पैटर्न से भरी हुई हैं। ये कला रूप मुख्य रूप से पौराणिक लोक कथाओं और रूपांकनों पर आधारित है, जैसे पद्मावती, मैना बिसाहरी, दोथिला भवानी, माया मनसा बिसाहरी, जया विशाहरी, चंदो सौदागर और कलश। मंजूषा पेंटिंग के ज्वलंत रंग और उत्कृष्ट जटिलताएं उन्हें अलग पहचान देती हैं। पौधों और खनिजों से उत्पन्न प्राकृतिक रंगों का उपयोग अक्सर चित्रों में किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में हरा, गुलाबी और पीला सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। इन रंगों का उपयोग अक्सर आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए किया जाता है। पेंटिंग्स अपनी विस्तृत विशेषताओं के लिए प्रतिष्ठित हैं। कलाकार अक्सर लोगों, जानवरों और वनस्पतियों का विस्तृत चित्रण करने के लिए बारीक ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। मंजूषा कला में 3 रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा कला में बॉर्डर का बहुत ज्यादा ही महत्व है। मंजूषा कला एक रेखा चित्र कला है, एक लोक कला है, एक स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि ये एक सूचीबद्ध कहानी कहने की कला है। मंजूषा कला पूरी तरह से बिहुला बिशारी की लोक कथाओं पर आधारित है। मंजूषा कला में पात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स लेटर यानी एक्स अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस कला के प्रमुख पात्र सांप, चंपा फूल, सूर्य, चांद, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, कमल, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग, वृक्ष आदि हैं। इस कला के प्रमुख पात्र भगवान शिव, मनसा देवी, बिहुला, बाला, हनुमान, चंदो सौदागर,
मंजूषा कला की सीमाओं में आते हैं बेलपत्र, लहरिया, त्रिकोण, मोखा और सांपों की श्रृंखला। बिहुला बिशहरी की पारंपरिक कहानी मंजूषा पेंटिंग का सबसे लोकप्रिय विषय है। कथा के अनुसार बिहुला नाम की एक युवा महिला अपने पति को नाग देवता से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। चित्रों में चित्रित कहानी में विशिष्ट दृश्यों में बिहुला की शादी, उसके पति की मृत्यु और उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की यात्रा शामिल है। मंजूषा पेंटिंग बिहुला और बिशहरी की कहानी के अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं और सामान्य जीवन की छवियों को भी चित्रित करती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा बात हो गई बिहुला बिशहरी की, बिहुला बिशहरी की, वही क्या है ये? क्यों सबसे ज्यादा मंजूषा पेंटिंग्स में बिहुला बिशहरी की कहानी बताई जाती है ये कहानी? तो आइए जानते हैं। बिहार के अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिशहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिशहरी, जिसे कई लोग बिहुला बिशहरी भी कहते हैं, चूंकि वहां का एक्सेंट बदल जाता है, तो बिहुला बिशहरी में माता मनसा की पूजा होती है। माँ मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन बताया गया है। किसी समय में अंग प्रदेश में चंद्रधर नाग के एक सौदागर थे। वे चंपा नगर के बहुत बड़े व्यवसायी थे, साथ ही साथ वो एक शिव भक्त भी थे। बिशहरी, जो भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं, उन्होंने चंद्रधर पर दबाव बनाया कि वे शिव की पूजा ना करें बल्कि उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर इस बात से राजी नहीं हुए। इसके बाद गुस्से में बिशहरी ने सौदागर के पूरे परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे, जिनका नाम बाला लखेंद्र था, उसकी शादी बिहुला नाम की एक लड़की से हो गई। मंजूषा पेंटिंग एकमात्र भारतीय कला है जिसमें अनुक्रमिक प्रतिनिधित्व है। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर की एक लोक कला है। इस कला रूप को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए दी सर्प कम्युनिटी ने अनुश्री दत्ता के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कला पर एक आकर्षक कार्यशाला का आयोजन किया था। अनुश्री एक डिजाइनर और भावुक लोक कलाकार हैं, जो जर्मनी में स्थित हैं। लोक कलाओं के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से निकटता से जोड़े रखता है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए फोक ट्रेंड नाम से अपना उद्यम शुरू किया है। कार्यशाला की शुरुआत अनुश्री और कला की दुनिया में उनकी यात्रा के संक्षिप्त परिचय के साथ हुई थी। अनुश्री ने मंजूषा कला का इतिहास समझाना शुरू किया और बिशहरी की पौराणिक कहानी भी सुनाई। उन्होंने अपनी एक रचना दिखाई जो कि शिवलिंग मंजूषा कला थी, और उन्होंने हरे रंग से शिवलिंग का बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। वह खूबसूरती से डिजाइन बनाती रही और पृष्ठभूमि को गुलाबी और पीले रंग से रंगती रही। सभी प्रतिभागियों ने मंजूषा कला के बारे में सीखने और विभिन्न डिजाइनों की अपनी कलाकृतियां बनाने में बहुत अच्छा समय बिताया, जो सौंदर्य की दृष्टि से मन भावन और देखने में सुंदर थी। अनुश्री सभी कलाकृतियां देखकर प्रसन्न हुई और प्रतिभागियों की सराहना की। उपस्थित लोग देश के विभिन्न हिस्सों से थे, वे भी अलग अलग आयु वर्ग के थे, लेकिन कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक मंच पर ले आया। सर्कल समुदाय हमेशा की तरह कलाकारों को जोड़ने और एक जादुई और सकारात्मक माहौल तैयार करने में सफल रहा। मंजूषा पेंटिंग्स कई कारणों से उल्लेखनीय है। शुरुआत के लिए वो एक विशिष्ट और उत्कृष्ट कला रूप है जो अंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दूसरा ये कि पेंटिंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजन और त्योहार पर प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरा, पेंटिंग अंग क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का एक आवश्यक रिकॉर्ड है। ये पेंटिंग दैनिक जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग अंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रमुख है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती हैं। उदाहरण के लिए मंजूषा पेंटिंग का उपयोग बिशहरी पूजा में किया जाता है, जो नाग देवता को समर्पित त्योहार है। अन्य धार्मिक आयोजन जैसे बपतिस्मा में भी छवियों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कि मंजूषा कला के वर्तमान पर चर्चा की जाए, बात जगदीश स्वामीनाथन की, जिन्होंने भारतीय लोक कलाओं को आधुनिक कलाओं के समकक्ष देखा और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन भी किया। स्वामीनाथन ने भी पॉल क्ली के उपरोक्त वक्तव्य का उद्धरण देते हुए अपने लेख
अस्मिता और प्रासंगिकता में लिखा कि भारत का आधुनिकतावादी आंदोलन पाश्चात्य आंदोलन के ही पीछे पीछे गया है। कभी कभार भारतीय परंपरा को खोजने तथा उस पर बल देने के अंत देशभक्त पूर्ण प्रतिक्रियाएं हुई हैं, किंतु ऐसे प्रयास एक वास्तविक दृष्टि के खुलने के कार्य में पूरी तरह से नुकसानदेह और व्यर्थ ही रहे हैं। स्वामीनाथन आगे कहते हैं कि परंपरा की कर्मकांडी समझ ने हमारे चित्रकारों की नकली आधुनिकता को मजबूत किया है। बेशक इसमें बाजार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी समान बात देखी गई, जो विचारधारा आधुनिक तकनीकी सभ्यता में चली आ रही है उसे कमोबेश सबके लिए जायज मान लिया गया। लगभग 3 दशक पूर्व स्वामीनाथन ने आधुनिक और लोक कलाओं की तत्कालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी मंजूषा कला को लेकर नहीं थी, संभवतः उनकी टिप्पणी में छुपी चिंताओं की परिधि में आधुनिक कलाएं और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं रही हों। परंतु क्या उन चिंताओं की परिधि से बिहार की लोक कला, विशेषकर लोक चित्रकला का वर्तमान बाहर है? परंपरा के कर्म कांडी समझ ने लोक कलाओं में जिस नकली आधुनिकता को मजबूत किया है, जिसमें बाजार की कड़ी भूमिका है, क्या उसकी छाया मंजूषा और मधुबनी कला पर नहीं दिखती है? स्वामीनाथन जिसे भारतीय आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रवृत्ति कह रहे थे, क्या उस प्रवृत्ति से बिहार की लोक कलाएं अछूती हैं? स्वामीनाथन के कथन में 4 तत्वों की प्रधानता है। पहला, परंपरा की कर्मकांडी समझ। दूसरा, चित्रकारों की नकली आधुनिकता जिसे भारत के आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रकृति के नजरिए से देखने की जरूरत है। तीसरा, बाजार की भूमिका। और चौथा, वो विचारधारा जिससे आधुनिक तकनीकी सभ्यता संचालित होती है। मैं मंजूषा कला की वर्तमान को इन्हीं 4 तत्वों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी बात। किसी भी कला विधा के वर्तमान पर लिखना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, खास तौर पर तब जब उसमें सरकार, गैर सरकारी संस्था, गैलरी और पूंजीपति का निवेश लगातार बढ़ रहा हो। ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब उसकी जिम्मेदारी एक युवा लेखक पर हो। इसीलिए मंजूषा कला के वर्तमान पर लिखने से पूर्व मंजूषा कला के वरिष्ठ कलाकारों, विशेषज्ञ, अंग क्षेत्र के विद्वान और उसे प्रोत्साहन दे रहे समाज सेवियों से विस्तार से बातचीत करना जरूरी है। उस बातचीत में उन्होंने मंजूषा कला के वर्तमान को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमें अपनी कलाओं की सार्थकता और अर्थहीनता का परीक्षण तटस्थ रूप से करना होगा, तभी हम उसके वर्तमान को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मंजूषा कला के वर्तमान की चर्चा से पूर्व उसके विषय वस्तु पर चर्चा करना आवश्यक है, इससे परंपराओं की कर्मकांडी समझ का रहस्य भी खुल सकेगा। मंजूषा चित्रकला की मूल में बिहुला विषहरी की लोक गाथा है, ये हमें मालूम हो चुका है, जिसके मुताबिक शिव की 5 मानस पुत्रियां, जो नाग कन्याएं हैं, पृथ्वी पर पूजित होने के उद्देश्य से चंपा नगर के शिव भक्त चांदो सौदागर के समक्ष उपस्थित होती हैं। चांदो उनकी पूजा से इनकार करता है और उन्हें अपमानित करता है। इससे गुस्साई नाग कन्याएं, जिन्हें विषहरी कहा जाता है, वो चांदो को श्रीहीन, संतानहीन कर देती हैं। इसी क्रम में चांदो की सबसे छोटी बहू बिहुला अपने कोबर घर में ही विधवा हो जाती है। वह अपने पति बाला लखेंद्र को जीवित करने का संकल्प लेती है और विषहरी की ही मदद से अपना संकल्प पूरा करती है। बिहुला के प्रण से विवश हो और महादेव की प्रेरणा से चांदो सौदागर बाएं हाथ से विषहरी की पूजा करता है। इस प्रकार विषहरी बहनें पृथ्वी लोक में पूजित होती हैं। इस लोक गाथा के विविध प्रसंग तथा सोनदह तालाब और विषहरी, पार्वती से विषहरी का परिचय, विषहरी का महादेव के सम्मुख जाना और पृथ्वी पर पूजा पाने की लालसा व्यक्त करना, महादेव का उन्हें चांदो के पास भेजना, चांदो का विषहरी को अपने दंड से डराना, विषहरी द्वारा चांदो का श्री संतान हीन करना, बाला और बिहुला का विवाह, ओबर घर में मनियार नाग द्वारा बाला का दंश, बाला की मृत्यु पर विलाप करती बिहुला, मंजूषा में बाला के शव के साथ बिहुला का इंद्रासन गमन, गोदा घटवार द्वारा बिहुला के संकल्प में खलल, बिहुला टुंडी राक्षसी का मिलना, टुंडी राक्षसी के हाथ में बच्चा और हड्डी, मैना विषहरी का आना,
विषहरी बहनों का अपने अपने प्रतीकों के साथ दिखना, इंद्रासन में नृत्य करती बिहुला और चांदों द्वारा विषहरी की पूजा आदि की कथाएं और उसका कर्म कांड मंजूषा चित्रों पर उतरते रहते हैं। अपने मिथकीय और कर्मकांडीय स्वरूप में मंजूषा कला सर्प पूजा और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर लोक कलाएं कभी मिथक के रूप में तो कभी अनुष्ठान के रूप में प्रकट होती हैं। इनका भारत की श्रमशील कृषक समाज से गहरा संबंध होता है और उसी संबंध की वजह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के बावजूद उनकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में अनेक समानताएं मिलती हैं। इनमें प्रधान है तीन मूल रंगों की उपस्थिति। मूल रंग यानी गुलाबी या लाल, पीला और हरा, मंजूषा में इन्हीं का प्रयोग होता है। हालांकि मंजूषा कला के वरिष्ठ साहित्यकार जेसी शर्मा लोक कला में नीले रंग की उपस्थिति भी साबित करते हैं, जिस पर अंगिका के साहित्यकारों के मध्य अभी तक विवाद जारी है। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों को अपनी प्रतीकात्मकता है। ये आमतौर पर माना जाता है कि लाल या गुलाबी उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग विवाह का प्रतीक है और हरा रंग विष दंश का प्रतीक है। इनके प्रतीकार्थ अनेक हैं। हरा रंग वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। आकृतियों या पात्रों में बिहुला अक्सर खुले केश में दिखती है, उसके समक्ष एक सर्प होता है। विषहरी बहने अपने नाम रूप प्रतीकों के साथ चित्रों पर उतरती है। विषहरी के रूप में मन के पंच विकारों की प्रतीक आत्मक भी सामने आती है। पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मंजूषा चित्रों के बॉर्डर लहरिया आकृतियों से बनाए जाते हैं, जो बहुधा सर्प की लड़ियां होती हैं। इन्हें उपनाती गंगा या समुद्र माना जाता है। लोक गाथा में प्रयुक्त इन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को पूरा मनोयोग से मंजूषा की सबसे चर्चित चित्रकार चक्रवर्ती देवी ने कागज पर उतारा और आज उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन चित्रों की असंख्य अनुकृतियां बनाई जा रही हैं। उन अनुकृतियों को देखकर मंजूषा चित्रकार और कला समाज इस कदर मंत्रमुग्ध है कि इस विषयों व पात्रों के संयोजन तथा प्रतीकों में जरा भी फेरबदल उन्हें उत्तेजित कर देता है। यथास्थितिवाद से इतर कुछ कलाकारों ने नए विषयों को भी अपने चित्रों पर जगह दी है या देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्रयोग बाहरी प्रभाव में है। ये उस प्रभाव का ही असर है कि कलाकार अब अंगराज कर्ण की गाथा पर आधारित चित्र बना रहे हैं, तो विष्णु का विश्व रूप भी मंजूषा शैली में कागज पर उतरने लगा है धीरे धीरे। मंजूषा कला में आ रहे इन बदलावों पर अंगिका के साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र कहते हैं, जो गतिशीलता का विरोधी है, परिवर्तन का विरोधी है, वो मृत्यु का पक्षधर है, जड़ता का समर्थक है। लहसुन माली ने जब पहली बार मंजूषा पर चित्रों को उभारा होगा, तब बेशक विषय वे ही होंगे जो आज भी हैं, लेकिन चित्र हूबहू ऐसे ही रहे होंगे, मुझे ऐसा मानने में संकोच है। नए कलाकारों को उन संदर्भों के बारे में ज्ञान नहीं है जो उन्हें नया गढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये चिंता मंजूषा गुरु मनोज पंडित के इन शब्दों में स्पष्ट झलकती है कि वरिष्ठ एवं युवा कलाकार बिहुला विषहरी लोक गाथा के कथानक पर नवीन अवेशर करें, आकृतियां गढ़ें, नए बिंब और प्रतीक का निर्माण करें। आज जरूरत इसी बात की है। उपरोक्त दोनों ही कथनों के आलोक में लोक कलाओं के जानकार और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रदर्श कला के प्राध्यापक रहे ओम प्रकाश भारती कहते हैं, इसका दायित्व किसका है, इसकी जवाबदेही किसकी है? फिर क्या वजह है कि मंजूषा कला के विद्वत्व जन अपनी चित्र कला की दुर्दशा देखने पर विवश है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वे मंजूषा कला और परंपराओं पर विमर्श करते, जिसका लाभ युवा कलाकारों को मिलता? इससे वे मंजूषा कला में नवीन प्रतीक की रचना कर पाते। वर्तमान में रचे जा रहे मंजूषा चित्रों के संदर्भ में मुझे मंजूषा कला के वर्तमान का सत्य वही दिखता है जिसकी तरफ ओम प्रकाश भारती इशारा कर रहे हैं। वो इस रूप में भी है, मंजूषा चित्रों में प्रतीकात्मकता ठहरी दिखती है, बिंब ठहरे दिखते हैं। मिथिला कला की वर्तमान प्रवृत्तियां आज मंजूषा कला को अपना ग्रास बनाने पर आतुर है। यही वजह है बाजार उनके बीच भेद नहीं करता है और मंजूषा चित्रकला का मिथिला चित्रकला के छाया चित्रों में रूपांतरण हो जाता है, किसी को विचलित नहीं करता है। वरिष्ठ कलाकारों और कला मर्मज्ञों के बीच यह वाद विवाद का विषय नहीं बनता कि किस कला का समकालीन हो जाना और बाजार के बनाए मानदंडों पर रची जा रही है कला एक ही विषय है या अलग अलग, या किसी लोक कला के समकालीन हो जाने का अर्थ समकालीन नवीन प्रतीकों बिंबों की रचना व उनका प्रयोग नहीं है।
जिनके जरिए एक लोक कलाकार अपने अपने समय और समाज से ज्वलंत प्रश्न करता है, उनके समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे प्रश्न चाहे आर्थिक विषमताओं से उपजते हों या जातीय, धार्मिक। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के समक्ष कला नीति का अभाव और उसके साथ साथ शिक्षा नीति में अभी भी कला का अभाव। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये भी है कि मिथिला कला के लोक ने तो उसे कला और शिल्प रूप में स्वीकार कर लिया है, अंग क्षेत्र का लोक मंजूषा को बतौर कलाकार कितना स्वीकार करता है, और जो लोक इस लोक कला के रूप में स्वीकार करता है उसका स्वीकार कहीं जातीय व वर्गीय मानसिकता के क्षेत्रीय की खोल में तो लिपटा नहीं है। ये प्रश्न करना जरूरी है क्योंकि लोक कलाओं का वर्तमान इसकी गवाही देता है कि जब लोक कलाओं ने क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हुआ है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। गैर सरकारी संगठन दिशा, ग्रामीण विकास मंच और नाबार्ड ने इस लोक शिल्प को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए भागलपुर के सभी 16 ब्लॉकों में 3 साल का मंजूषा कला विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत 50 गतिविधि आधारित समूह और बड़े पैमाने पर मंजूषा शिल्प विकसित किए गए हैं। एक तरीके से संरक्षण हो रहा है नाबार्ड के जरिए, और हम अपने अपने लेवल पर सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स जो कि बेहद मैजिकल हैं, बेहद मैग्निफिशेंट हैं, उन्हें सांझे विरासत के माध्यम से संरक्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
7: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
7: आज ही कॉल करें 9281-9976, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
5: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
5: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी

0: 9,99 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: अरे सुना?
7: क्या?
6: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
7: वाओ!
6: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
10: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
11: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
13: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
12: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।

0: सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज गोंडा।

0: अभी वो लड़का मरा नहीं है, बट हिज कंडीशन इज वेरी बैड। ट्रांसप्लांट के लिए उसका हार्ट मरने से पहले निकालना बहुत जरूरी है।
1: आपके लिए मेरा बेटा कोई है जो मरने वाला है, लेकिन मेरे लिए अब भी वो मेरा जीता हुआ बेटा है।
2: जी हाँ, अगर आप नेकी की राहों पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ईश्वर हर कदम पे चलेगा। तो आज की शाम वैसे भी आप लोग को पता चल चुकी है, एक डेडिकेटेड शाम होने वाली है। पहले तो सबको गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पूरा देश इन दोनों जयंती को मनाने के साथ साथ एक खास एक योद्धा की सलामती की कामनाएं भी कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि हम किसी एक चेहरे को हमेशा भगवान जैसा ना समझें, हम ऐसे कई चेहरे आने वाले भविष्य में देखें जो हमें अपने अंदर एक योद्धा, एक भविष्य बदलने वाली छवि और एक कहते हैं ना कि आइडल छवि बन के हमारे सामने आते रहे, है कि नहीं। मतलब हर महान इंसान का सपना यही होता है कि उसके जैसे और महान लोग हों। तो आज की शाम भी ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने की है। वैसे न्यूज़ ने और हर जगह से बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन जो बताने वाली बात है वो यही है कि देश हमेशा अपनी जो पहचान है वो एक अलग रूप से दिखाता है, खासतौर पे हमारा देश। चाहे कहीं बड़े बड़े कहते ना कि मेडल्स लाने हो, या कहीं किसी तरह का प्रदर्शन करना हो, किसी देश की मदद करनी हो, चाहे किसी के सम्मान में कुछ करवाना हो, हर मामले में हमारा देश आगे रहता है। और ऐसे ही हमारे साथ आज की छवि हैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसके बारे में मैं नहीं पूरी दुनिया बात कर रही है। और आज ये गर्व का दिन है मेरे लिए, नहीं हम सभी के लिए यार। मतलब मन करता है कि खुशी से कहूँ कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं, क्योंकि हमारे देश में विविधता है। एंड प्लीज इसमें किसी भी तरह का जो कहते हैं टैग लाइन ना लगाएं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाला बिल्कुल भी ना लगाएं। क्यों नहीं हम अपनी पहचान एक देश के नागरिक से बनाएं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं सिर्फ। और सबसे बड़ी बात है कि एक भारतीय ने विश्व पटल पे अपनी जान को जोखिम में देखते हुए कुछ सेकेंड्स में ऐसा डिसीजन लिया जिसने 200 से मतलब लगभग 200 लोगों की जान बचाई। 170-174 के आसपास तो यात्री ही थे, इसके अलावा क्रू मेंबर्स की बात कर ले तो सब मिला जुला के 200 के आसपास लोग थे, और वो भी अलग अलग देश के। और उसी बीच आप पे कोई हमला कर दे, खून बह रहा हो, आपकी सांसें अटक रही हो, और ऐसे में आप एक ऐसा कदम उठाएं जो सबको बचा ले। जी हाँ, हुआ कुछ यही था। मैं थोड़ा सा और विस्तार में बता देती हूँ, वैसे आप लोगों ने जाना होगा, समझा होगा। और जब कोई नई बात पता चलती है तो हम बहुत क्यूरोसिटी से सुनते हैं, पर इमेजिन करिए एक बार कि मतलब आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उस समय कितना एक्टिव होंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप काम करते होंगे मन से। मतलब मैं देख पा रही हूँ, मैंने पिछली बार भी अभी बात की थी पिछले वीक, कि हमारी एकाग्रता कम होती जा रही है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें किसी एक काम को बहुत गौर से करना चाहिए, यानी कि मोबाइल चलाने वाला काम छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो बहुत रैंडम होती जा रही है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो प्लीज़ डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हमारे जो मस्तिष्क को है बहुत शांत रखने की ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं उस महान छवि की जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है। एक तरफ हमारे देश के पायलट जिनकी बात आज हर शहर में हो रही है, हर शहर यानी कि चाहे वो USA का शहर हो, चाहे वो चीन हो, हर जगह उनकी बात हो रही है। काम ही कुछ ऐसा किया। वैसे मैं बता दूं कि गुजरात में जो सरनेम होता है वो बहुत अलग होता है, जैसे अपने यहाँ मतलब यूपी बिहार में मतलब नॉर्मल सरनेम्स होते हैं, मतलब कुछ अजीब नहीं होते, पर हाँ मैंने महाराष्ट्र में और गुजरात में देखा है कि यहाँ सरनेम बड़े अलग से होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मैंने सुना है गोडबोले, गोखले, तो मतलब आप तलपड़े, मतलब ऐसे ऐसे सरनेम की जो सुन के आपको लगेगा क्या है ये कैसा नाम है, पर सच में होते हैं, उनकी लैंग्वेज है। ऐसे गुजरात में भी सरनेम थोड़े अलग से होते हैं, सरनेम जानते ही हैं आप लोग, उपनाम जिसे बोलते हैं, और इसीलिए लोगों को ना कोई इतिहास, ना पेशा, ना इलाका, किसी चीज़ से नहीं, इनके नाम से, इनकी पहचान से इनकी पहचान हो जाती है। खास बात बताऊं, इनके जो सरनेम होते हैं वो इनके मूल निवास स्थान, गांव, शहर के नाम पे रखे जाते हैं। और गुजराती सरनेम इसीलिए चर्चा में है क्योंकि आपको पता है फ्लाई दुबई के गुजराती पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की जो तारीफ है दुनिया का हर कोना कर रहा है। सरनेम मच्छर है तो इसलिए और चर्चा का विषय बन चुका है। वैसे आपको बता दूं कि गुजरात में मच्छर, माकड़, हाथी, घोड़ा, वाघ, शियाल, मकौड़ी समेत ऐसे अलग अलग सरनेम जो हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। ऐसे सरनेम दूसरों के लिए जिज्ञासा को जगाते हैं लेकिन गुजरात के लोगों के लिए ये आम है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आप लोग के आ रहा होगा, मच्छर मच्छर, तो मैं मच्छर का जो डाउट है वो दूर कर देती हूँ। आज से जब भी आप मच्छर देखेंगे तो आपके दिमाग में इज्जत और सम्मान और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको याद आएगा कि हमारे देश का एक योद्धा है जिसका सरनेम है मच्छर, तो इस मच्छर को तो हम नहीं छू सकते। हाँ, उसको भगाने का यत्न करिएगा, अब मच्छर को मत छूइएगा। फिलहाल ये कहना बड़ा मतलब अजीब होगा कि किसी के नाम को हम किसी जीव से तुलना करें, पर हाँ ये तो बस एक सोचने की बात है कि एक इंसान हमें बार बार याद आएगा। तो ये तो बात सरनेम की हो गई। गुजराती पायलट स्मित मच्छर ने दुबई से इजराइल जा रहे फ्लाई दुबई प्लेन में अपने साथी पायलट के साथ हुई झड़प में बहादुरी का जो परिचय दिया वो इमेजिन करते ही बनता है। मतलब कि आपके बगल में जो आपको अपने मतलब को पायलट की तरह बैठा है, जो आपके साथ आपकी उड़ान में मदद करने वाला, आपको गाइड करने वाला, या आप उसको गाइड करने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता उसकी मंशा क्या है। सच बता रही हूँ, मंशा को लेके एक बार डाउट हो जाता है कि भाई आस पास कहते हैं ना कि बगल में छुरा लेके लोग चलते हैं, वही वाला हाल। फ्लाई दुबई के पायलट ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इतने सारे लोगों की जान बचाई कि सराहना करते हर कोई थक नहीं रहा है, हर कोई नहीं थक रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि जो खास बात है वो ये है कि वो फ्लाइट अभी उड़ी ही थी, उड़ते ही एक हथौड़ी जो कि इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है उसे उनके को पायलट ने निकाला और उससे उन पे वार करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि उन पे चाकू से भी वार हुआ, वो खून से लथपथ थे, लेकिन उसी समय उन्होंने कॉकपिट यानी कि कैबिन का दरवाजा जो कि बहुत मुश्किल था उनके लिए खोलना, उन्होंने इमीडिएटली खोल दिया और फ्लाइट भी आपे से बाहर हो रही थी। दरवाजा खोलते ही कैबिन क्रू के मेंबर अंदर आ गए जिसमें उन्होंने उस धोखेबाज को अपने कंट्रोल में ले लिया और इसी बीच एक पायलट होने का दायित्व भी निभाते हुए उन्होंने सेफ लैंडिंग कराई, जो कि एक घायल इंसान के लिए करा पाना थोड़ा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि हमारे सामने ही ये चीज़ है कि देश आज उनकी सराहना इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने कितने सारे लोगों को एक क्रोच तक नहीं आने दी, चाहे वो निर्जा हो, चाहे वो हमारे पायलट हो, ऐसे कई नाम अमर हो चुके हैं देश में जिनको हम साहस के साथ लेते हैं और जज्बे के साथ कहते हैं कि यार ये हमारे देश का इंसान है। और आज चेहरे पे स्माइल है हम लोग के जब हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के नौजवान की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए इनके नाम ये प्यारा सा गाना सुनते हैं और आगे भी बातें बरकरार रहेंगी, कुछ ऐसी फिल्मों की बात होगी जिसमें बहादुरी की बात हुई होगी हमारे देश के योद्धाओं की।

160 किलोमीटर, ढाई घंटे। स्टार्टिंग पॉइंट आदित्य बिरला हॉस्पिटल मुंबई, डेस्टिनेशन फोर्टिस हॉस्पिटल पुणे। 160 किलोमीटर, ढाई घंटे। ना कहीं थकना है ना कहीं रुकना।

आज बापू का जन्मदिन है और आप सभी को पता है कि देश को स्वतंत्रता दिलानी हो या देश में शांति फैलानी हो, बापू ने अपना जो दायित्व है वो हमेशा से बेहतरीन तरीके से निभाया। और इसीलिए बापू का पसंदीदा गीत सुनते हैं।

ये गाना भी यही कह रहा है कि जो दूसरों की पीड़ को, दूसरों के दर्द को अपना समझता है, उसी को ईश्वर भी अपना समझता है। और लिखते हैं सबलू कि अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया, सत्य दीप जलाया था, बिना खड़क बिना ढाल के दुश्मन को झुका आया था, देश को दी आज़ादी जिसने, ऐसा वो महान था। खादी की एक धोती पहने बापू हमारी शान था, सीधा साधा वेश था, ना कोई अभिमान था, दिल में था हिंदुस्तान, चेहरे पर मुस्कान थी। चलाकर चरखा देश को आत्मनिर्भर बनाया, प्रेम और भाईचारे का पाठ सबको सिखाया, दुश्मन के तरकस के तीर को भी मोड़ दिया, ताकत से नहीं प्यार से पूरा देश जोड़ दिया, सत्य और निष्ठा के बल पर इतिहास नया लिखा, महात्मा बनकर वो इंसान इस धरती पर दिखाया। क्या बात है। तो आज भाईचारा हमारे बापू क्या निभाया था, आज की समय भाई भाई में मेल नहीं है, इसकी वजह से गांधी जी तो नहीं तभी तो नोट पर बैठे हैं। ये बात देखिए कुछ हद तक मैं कहूँगी सही भी है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए तत्पर हैं, तभी तो देश और दुनिया चल रही है। तो चलिए सुनते हैं बापू को डेडिकेटेड ये गाना।

तो मेरे सारे श्रोताओं से आज मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे देश के लाल स्मिथ मच्छर के लिए आप अपने दिल से जो भी पंक्तियाँ एज ए रिस्पेक्ट लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। और मैं चाहूँगी देश में जो सम्मान बरकरार है वो मेरे चैट रूम में भी दिखे, और चैट रूम में नाम के साथ आपकी अपनी पंक्तियाँ सम्मान में दिखनी चाहिए।

तो ये प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब बारी है शास्त्री जी के बारे में भी जानने की। शास्त्री जी बेहद सरल स्वभाव के, देश के लिए हर वो बेहतरीन, जो कहते हैं ना, डिसीजन लेने को तैयार रहने वाले व्यक्तित्व रहे। तो चलिए उनको समर्पित ये प्यारा सा गाना, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा।

0: सो हमारे साथ दीपक भी हैं। दीपक, आप लखनऊ वाले हैं, कहाँ वाले हैं जरा जरूर बताइए। आपको उपकार फिल्म का गाना सुनना है तो डेफिनेटली आपको 7:45 के बाद सुनने को मिलेगा, या उसके पहले अगर आप सुनना चाहते हैं तो कुछ सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और आपको आज कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने हैं जो आपके अपने शास्त्री जी और बापू के ऊपर जो बनाए गए हैं, तो उम्मीद करूंगी उन सवालों का जवाब आप जरूर देंगे क्योंकि आप उनके बारे में बेहतर जानते होंगे। तो चलिए एक और गाना जो हमारे दोनों ही नेताओं ने एक छवि के तौर पे हमें सिखाए और उनकी डगर को सम्मान से निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
0: बड़ा प्यारा सा गाना है लेकिन एक मैसेज ऐसा देता है जो देश के हर नेता ने, हर उस योद्धा ने दिया जो चाहता है कि देश बना रहे, प्रेम सब में आपसी बना रहे।

ये बात तो सही है, हम रहें या ना रहें लेकिन देश की शान हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। तो भाई सारे लोग आ गए हैं, सबका स्वागत है और आज बहुत सारी बातें भी करने का मन कर रहा है आप लोगों से। बॉलीवुड डे है तो मैं आने वाली अपकमिंग फिल्मों के बारे में भी बता देती हूँ और एक फिल्म जो जिसका इंतज़ार मैं भी बहुत दिल से कर रही हूँ तो उसके बारे में बता देती हूँ। वैसे आप लोग नवी नवेली के बारे में सुन चुके होंगे जिसका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और बड़ी प्यारी सी फिल्म होने वाली है ये, ऐसा मतलब ट्रेलर को देख के लग रहा है। और 16 तारीख को ये रिलीज़ भी हो जाएगी नई नवेली। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आप इस फिल्म को देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ इतिहास, कुछ कह सकते हैं वेद काल, वैदिक जो युग था उससे जुड़ी बातें सामने आ रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग नई नवेली ज़रूर देखें। मैं वैसे इसमें जो स्टार कास्टिंग करने वाले हैं इनके बारे में बता देती हूँ और थोड़ा फिल्म की जानकारी। तो दशहरे के अवसर पे ये रिलीज़ हो रही है और बेसिकली कॉन्सेप्ट भी इसमें यही दिखाया गया है कि इसमें मतलब जो है एक रावण का रूप लिए इंसान होगा जो मतलब थोड़ा सा ये उस टाइप की मूवी है, कह सकते हैं कि सरल भाषा में कहूँ तो आपके लिए ये थोड़ी हॉन्टेड टाइप की मूवी होने वाली है। ठीक है, तो हॉरर मूवी टाइप लगेगी आपको ये, पर मुझे ट्रेलर से बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं लगी तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि हॉरर मुझे नहीं लगी। ठीक है, इसमें यामी गौतम आपको मोहिनी के किरदार में दिखेंगी लेकिन वो मोहिनी जैसी नहीं दिखेंगी, मतलब जैसे कि जिसे पिशाचिनी या डायन कहते हैं वो पिशाचिनी डायन जैसी कहीं पूरी फिल्म में नहीं दिख रही हैं। ठीक है, निर्देशन की बात करूँ तो इसमें बालाजी मोहन का निर्देशन है, निर्माता हैं आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा। हॉरर है, कॉमेडी है, पारिवारिक रहस्य है, एक्शन है, लेकिन मतलब मैं अगर कहूँ तो ये जो डायलॉग है भाभी डायन है और उसी समय यामी गौतम जो बेहोश हो जाती हैं ट्रेलर में वो बड़ा गजब का लगता है और बहुत अच्छी सी मतलब फिल्म है। और इसमें यामी एक अलग लुक में दिख रही हैं और मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है कि यामी एक हॉरर लुक देंगी इसमें, तो इस वजह से मूवी और अच्छी लग रही है। वो और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो जब से घर में आई है सबके सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं और वहीं पर उसका देवर उसको बार बार कह रहा है कि जब से ये घर में आई घर की चीज़ें सही हुई लेकिन बाहर की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है ये फिल्म आप सभी के लिए बनी है। तो 16 को ज़रूर देखिएगा, दशहरे पे कुछ अच्छा सा देखने को मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आपके लिए मैं और भी मूवीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे बात तो मैं स्मिथ की भी कर रही थी जिन्होंने देश को बचाया और मैं बताऊँ वो खतरे से भी बाहर हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। और हमारे साथ दीपक हैं, कैसे हैं दीपक, क्या हाल है? दीपक के साथ साथ धर्मेंद्र भी हैं, अरीबा भी हैं, सभी को मतलब वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और सादा धोती शांत नज़र पर इरादे फौलाद जैसे, आया ना फिर कोई रहबर भारत के उस लाल जैसे। क्या बात है, ये बात सही है, बहुत सही, बहुत सही लिखा आपने। आगे पढ़ना चाहूँगी कि मिट्टी से जुड़कर जिसने झुकने ना दिया तिरंगे को, रहेंगे सादा उम्र भर इस कौम के वो स्वाभिमान जैसे। कदमे भले ही छोटे थे पर हौसले से वो हिमालय थे, सादगी की मूरत बन जो हर दिल के रखवाले थे। ना कुर्सी ना कोई गुरूर, ना दौलत की कोई हवस रही, सच्चाई ईमानदारी के वो अकेले उजाले थे। वाह क्या बात है। तो चलिए मेजर रिलीज़ की बात कर लेते हैं आज की और आप लोग एक्साइटेड भी होंगे, मैं चाहूँगी कि ये एक्साइटमेंट ऐसी बरकरार रहे और आज की मूवीज़ की जो बात है वो कर लेते हैं। वैसे आज 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर नाम सुनते ही आपके दिमाग में पता चल गया होगा कि आप पंजी गए थे स्वामी जी का सत्संग सुनने। कौन कौन पंजी गया था स्वामी जी का सत्संग सुनने, ज़रा मुझे चैट रूम में बता दे। और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये बात आधे से ज़्यादा लोग भूल गए थे कुछ दिनों पहले, क्योंकि उन्होंने दृश्यम मूवी कुछ ज़्यादा ही सीरियसली देख ली थी और अजय देवगन ने उस डायलॉग उनके दिमाग में एकदम मतलब कहते हैं ना फ्रीज कर दिया था और सारी आगे और पीछे की सारी घटनाएं भूल गए थे। उन्हें बस ये याद था कि उस दिन वो पंजी गए थे स्वामी जी का सत्संग सुनने। वैसे सत्संग में आप लोगों ने क्या क्या सुना मुझे ज़रा ये बताइएगा। और भाई मौका है भाई बात करने का तो मौके का हम लोग भी फ़ायदा उठाएँगे और टुडेज़ रिलीज़ की बात कर लेते हैं। और जैसे 2 अक्टूबर आती है तो मेरे दिमाग में ना बस एक ही मूवी छा जाती है,
दृश्यम। जी हाँ, तो दृश्यम 3 का कंक्लूजन, द दृश्यम द कंक्लूजन आ गई है। ठीक है, तो भाई आप लोग देख लो, और मेजर थ्रिलर इसमें दिखने वाला, पता नहीं ये कंक्लूज, मतलब मुझे लग रहा है भी आखिरी वाला ही होगा। अब इसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ कि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बैक टू बैक आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपने उनका इंतज़ार नहीं किया, तो भाई आपका जो एंटरटेनमेंट का जो वीक ऑफ है वो थोड़ा सा बेकार हो जाएगा। तो जी हाँ, रिलीज़ हो चुकी है दृश्यम द कंक्लूजन, बिल्कुल इधर उधर मत जाइएगा, अब देख लीजिए फटाफट से। तो जिसने नहीं देखी है वो फिर से देखने के लिए तैयार हो जाए। अजय देवगन है, तबू हैं, श्रिया शरण हैं, रजत हैं, इशिता हैं, और फिल्म आपको वापस एंटरटेन करेगी धूम धड़ाके के साथ। मिस्ट्री है, थ्रिलर है, ड्रामा है, ऑफकोर्स ये फिल्म पूरा पैकेज है। अब मैं बात करना चाहती हूँ, इसमें एक और फिल्म आ गई है जिसका नाम है प्रेम कीटाणु। अगर कीटाणु प्रेम का भी घूमने लगेगा तो भाई इन्फेक्शन तो होना तय है, क्योंकि यार ऐसा कोई मतलब वो नहीं है इंसान जो प्रेम के कीटाणु से अछूता बचाओ। एक बार बैक्टीरिया ने आपको ना छुआ हो ये मान सकती हूँ मैं, लेकिन प्रेम के कीटाणु ने अगर आपको ना छुआ, कोई ऐसा है जिसको प्रेम के कीटाणु ने ना छुआ हो? कोई बताओ ज़रा, कोई है ऐसा? कोई ज़रा मुझे अपने बारे में बता दे जिसने, जिसको प्रेम कीटाणु ने ना सुना हो। नहीं, सबने सबको छू रखा है ना, मुझे पता है। तो चलिए प्रेम कीटाणु से हम लोग एक गाना भी सुन लेते हैं, क्या बोलते हो? तुझसे बिछड़ के फ्रॉम प्रेम कीटाणु, नई फिल्म आ चुकी है तड़कते भड़कते आपकी फरमाइश पर। तो देखते हैं किसने किसने पंजी जाने की तैयारी की है।

अगर इन आवाज़ों को एक फिल्म में एक साथ सुनने को मौका दे रही है ये फिल्म, तो मुझे लगता है ये फिल्म वाकई में अच्छी होने वाली है। जिसको प्रेम का कीटाणु ना चुआ वो खुद को चुआ ले। तो भाई सवाल का जवाब देने वाले तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस जगह हुआ था? जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस शहर में हुआ था? आप जल्दी से सोच के बताइए और अपने पसंद का गाना अपने नाम कर जाइए।

तो भाई मुगल सराय। तो आंसर सबसे पहले देने वाली वाले हैं कौन? प्रीति, दीपक एंड सबलू जी, जिन्होंने थोड़ा लेट में आंसर दिया। तो पहले दो आंसर्स वालों को गाना सुनने का मौका मिलेगा, यानी कि दीपक और प्रीति अपनी पसंद का गाना सुन सकती हैं। और अब बारी है, बनारस के पास ही है मुगल सराय, लेकिन एग्जैक्ट शहर का नाम मुगल सराय ही है। तो चलिए अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए, और आई होप अगले

सवाल का जवाब भी आप लोग मन से दे पाएंगे। सवाल करूं? जी हाँ, मैं भी देखूं किसने कितना इतिहास पढ़ा है और खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने कितनी पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैसे ये गाना भी आपको बता दूं इश्क कीटाणु से ही है। तो चलिए सवाल का उत्तर देने के लिए अगर आप हैं तैयार तो कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है।

तो चलिए, दांडी नामक यात्रा जो अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने की थी, वो किस सन में की थी और कहाँ से शुरू करके कहाँ तक के लिए की थी? आपको दांडी यात्रा के बारे में मालूम होगा जो गांधी जी ने की थी, उसे कब शुरू किया और कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट किया, ये आपको बताना है। ये आंसर मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। वैसे आप लोग को बता दूँ कि बिहार में प्रचलित व्रत जिसको जितिया व्रत भी कहते हैं, उस व्रत की शुरुआत भी आज ही से है। तो चलिए छठी मैया को याद करते हुए ये प्यारा सा गाना भी सुन लेते हैं, आज के दिन के महत्व को समझते हैं।

फरमाइश का गाना और वो है उपकार फिल्म का, जो कि फरमाइश किया गया है दीपक जी के द्वारा। तो दीपक जी सुनिए ये प्यारा सा गाना आपके लिए, हर खुशी हो वहाँ फिल्म।

0: इंसान हैं आप। मैं कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाए।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती तो मैं अंधेरे में ही रहना हूँ।

0: सबसे बड़ी चौकी। अगर फिर भागने की कोशिश की तो जान से मार दी जाओगे।
1: सिपाही को जान का गम नहीं होता।
2: अब सबसे पहले आंसर देने वाले सबलू जी बन गए हैं, जिन्होंने एग्जैक्ट आंसर दिया है और समाप्ति की तारीख भी बिल्कुल सही बताई है, जगह भी बिल्कुल सही बताई है। तो आपको बता दें कि गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा निकाली थी, जो कि गुजरात में उनके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और इसकी समाप्ति पासी के समुद्री तट पर पहुंच के 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। ये यात्रा काफी लंबी थी। तो इसमें अब गाना सुनने के लिए आपके, हमारे और सबलू जी तैयार हैं, और दूसरा आंसर हमारी प्रीति जी ने दिया है, तो इन्हें भी अपना गाना मतलब कह सकते हैं सुनने का मौका मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले प्रीति जी का पहला वाला गाना जो बचा है, जो कि इनका पेंडिंग वाला है, उसको सुन लेते हैं। और जो दूरी है उसे बताया जा रहा है कि हम कितना भी चाहें, कितना भी सोचें, कितना भी दूर रहें, पर अगर हम चाहें तो एक दूसरे से नज़दीक आ सकते हैं, अपने अपने शहर से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं 89.6 FM तो समझ लीजिए आप एक दूसरे के पास हैं आरजबीना के साथ। और चलिए इस दूरी को कम करते हैं, एक और गाना आप लोग के नाम करते हैं। गाने की फरमाइश है प्रीति जी की, गाना सुनना है इनको, मेरे देश की धरती क्या बात है। धरती से याद आया कि ये तो आप लोगों ने बताया ही नहीं कि लंबी यात्रा कितनी थी आपकी, मतलब हमारे गांधी जी कितना दूर चले थे। भाई टाइम तो अच्छा खासा लगा था, मार्च में शुरू हो रही है यात्रा और ख़त्म कब हो रही है आपके इधर अप्रैल में, तो अच्छी खासी यात्रा थी। तो कितनी दूर ये लोग चले थे आपको पता है? लगभग 360 किलोमीटर के ऊपर ये यात्रा थी। तो चलिए हम लोग भी सुनते हैं मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, आज के जो फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित, अपने देश को समर्पित ये गाना।

चलिए एक थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल पूछती हूँ मैं। देखिए एक सवाल ये है कि आज़ादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को 1952 में रेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन 1956 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपको ये बताना है कि उन्होंने 1956 में अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। जो सही आंसर बताएगा उसे अपने पसंद का गाना सुनने को मिलेगा।

0: तो चलिए अगले गाने को सुनने की बात करते हैं और देखते हैं आंसर देने वाले हमारे अगले लिसनर कौन हैं। आंसर दिया है प्रीति जी ने भी, हादसा बताया है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में रेल में हुई दुर्घटना। जी हाँ, तमिलनाडु में हुई दुर्घटना की वजह से इन्होंने जो है ये क्या कहते हैं इस्तीफा दिया था। बिल्कुल सही आंसर है। कुमार कुमार अपने पसंद का गाना सुनेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो चलिए सुनते हैं हम गाना। वैसे आज का दिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, और इसमें स्मिथ मच्छर का भी नाम है। तो चलिए एक गाना आप लोगों के लिए सुन लेते हैं और कुमार के गाने की फरमाइश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश का वो घटना नहीं थी, वो मतलब तमिलनाडु की घटना है वो। तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि मतलब इसको अपडेट करते
1: हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
0: और इस घटना में

चलिए सुनते हैं स्लम डॉग से ये गाना जय हो फॉर द फरमाइश ऑफ कुमार। तो चलिए लास्ट सवाल कर ही देती हूँ आप लोगों से और देखते हैं कौन इसका उत्तर सही सही दे पाता है। आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो फटाफट से अपने हाथ उड़ा लें और मुझे बता दें कि आप लोग आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने लिए गाड़ी खरीदी, ठीक है, और गाड़ी खरीदने के लिए उनको चाहिए थे 12,000 रुपए। उनके बैंक में केवल थे 7,000 रुपए। उन्होंने एक बैंक से 5,000 रुपए बैंक लोन लिया था। चलिए आप बताइए कि वो कौन सा बैंक था जिससे लाल बहादुर शास्त्री ने लोन लिया था गाड़ी खरीदने के लिए 5,000 रुपए।

तो आप लोगों ने सुन लिया गाना जय हो जय हो। गुनगुन ने फरमाइश किया लेकिन गुनगुन ने आंसर अभी नहीं दिया, तो फरमाइश किया है प्रीति जी ने और आंसर भी दिया है प्रीति एंड कुमार ने बिल्कुल सही समय पे। लेकिन गाना सुनाऊंगी मैं कुमार, प्रीति एंड उस्मान का, क्योंकि उस्मान का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया एक दो मिनट, तो क्या हुआ थोड़े लेट हुए, आंसर तो सही समय पे ले आए। तो चलिए गाना सुनते हैं हम, किसका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। क्या बात है, बड़ा बढ़िया सा गाना है ये। गाना भी मैंने सुन रखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे। सुन के बताइए ये गाना कैसा है। और फटाफट से अब ये गाना थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी क्योंकि मुझे तीन लोगों की फरमाइश पूरी करनी है और मैं नहीं चाहती किसी की भी फरमाइश अधूरी रह जाए। तो जल्दी जल्दी फरमाइश करेंगे तो सबको गाने सुनने को मिल जाएंगे, नहीं तो आराम करिए। ये कितने नंबर की स्लीपर पहनते थे ये तो नहीं मैं पूछ सकती, मुझे क्या पता कितने नंबर की पहनते थे। वैसे पता होगा लोगों को, जानकारी होगी।

तो अब चलते चलते गाने की तैयारी, और वो गाना जिससे शुरुआत हुई और वही गाना आखिरी, क्योंकि कुमार ने फरमाइश किया है वैष्णव जन, तो चलिए चलते चलते ये गाना सुनते हुए चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। कल मिलेंगे डॉक्टर लव के साथ, करेंगे बहुत सारी बात। कोई कहीं मत जाना, बस यहीं मिलना आरजे बीना के साथ अपने

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9281 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
5: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
6: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप, पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट IPPBonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठे जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: अरे सुना?
11: क्या?
10: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
11: वाओ!
10: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
12: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
13: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
14: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
15: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
12: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
16: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
17: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
16: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
17: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
16: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरन नाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो एंजॉय करते हैं आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से ये फरमाइशी गीत और मिलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे के बाद में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अर्जुन लोगों ने फरमाइशी का पिटारा नहीं खोला। ओ माय गॉड, अपनी फरमाइशी की पिटारे को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। आशु मिश्रा जी लखनऊ से, सबीहा गोंडा से, निशा जी पटेल नगर गोंडा से, विजय रावत अनमोल, सतीश उपाध्याय, जारा खान, दुर्गा प्रसाद और इसी के साथ में प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, राजेश कुमार सिंह जी मालवीय नगर गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, मोहित मालवीय नगर गोंडा से, गौरव इंडिया वाले धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से, दालक शर्मा मनकापुर से, गुनगुन राजू सीतापुर से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, निधि सीतापुर से, उषा कश्यप गोंडा से, सबलो सावंत मुंबई से, सोनिया तिवारी गोंडा से, सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, उस्मान खान आप सभी का स्वागत है, शिवेंद्र, अरविंद, दुर्गा प्रसाद, अनुष्का, एवरीवन, अनमोल, स्टे ट्यून्ड एंड मुस्तफा जी सऊदी से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के अगली फरमाइश आई मीन पहली फरमाइश लिसनर्स की तरफ से है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, और तुम्ही से दिल का राज छुपाए, तुम्ही से राज बताए, हमें क्या हो गया है। एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हीर रांझा का लता मंगेशकर जी की आवाज में, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। ये फरमाइश आशु मिश्रा जी की लखनऊ से हो।

वैसे मन तो पूरा 5 मिनट का पूरा गाना सुनने का था, लेकिन क्या करें, ये वक्त जालिम वक्त ठहरता ही नहीं है। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा था हमारी आशु मिश्रा जी की तरफ से, जो कि हैं लखनऊ से, और ये आवाज़ थी लता जी की। बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जग्गू दादाजी फ्रॉम MP, जुगल किशोर वर्मा जी MP से आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, एंड ओ माय गॉड, जी हाँ दोस्तों, इतने सूदिंग से, इतने रिलैक्सिंग से गाने के बाद में वक्त हो चला है हाई बीट हाई एनर्जी वाले गाने की। जी हाँ दोस्तों, धर्मेश त्रिपाठी की तड़कती भड़कती सी प्लेलिस्ट से निकला है ये यो हनी सिंह का बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, तू आजा मेरे क्लोज, मिलता ना मक्का रोज़ा, वांट यू माय बेबी, मुझे दे दे लव दोज़ा। हाँ, सो एंजॉय करेंगे यो हनी सिंह का ये नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली वाली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की, मालवे नगर गोंडा से। मोहित को मालवे नगर गोंडा से सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। जी हाँ दोस्तों, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम एंजॉय करने जा रहे हैं मोहित की फरमाइश पे जो कि हिमालय नगर गोंडा से। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सो एंजॉय करते हैं आशा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

रघुपति राघव राजा राम हमें एंजॉय किया है। ये बहुत ही खूबसूरत सनंगमा हमारे मोहित की फरमाइश पे जो की है मालवे नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली फरमाइश की तरफ। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है और उस्मान खान का भी स्वागत है। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की, आवास विकास गोंडा से। और धर्मेंद्र मोहन को आवास विकास गोंडा से सुनना है गाना मैंने चाहा था। सो सच्चाई की ताकत पिक्चर का ये गाना हम इंजॉय करेंगे अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सारे सिल गए। वाओ, कितना अतरंगी सा गाना था। और ये गाना हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। कई लोगों ने इस गाने को पहली बार सुना है, जैसे गीता श्रीवास्तव जी का कहना है, वाह क्या गाना है, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। और ये फरमाइश थी दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश कुमार की, सिंचाई विभाग गोंडा से। राजेश कुमार को सिंचाई विभाग गोंडा से सुनना है कुमार सानू और अनुराधा जी की आवाज में गाना धिक चिक दाना। सो इंजॉय करते हैं ये दिल आशिकाना पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर, जो की है सिंचाई विभाग से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो जारा खान और नेहा फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

और अनुराधा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही अतरंगी सा गाना, ये दिल आशिकाना पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ राजेश कुमार की फरमाइश पर जो कि सिंचाई विभाग गोंडा से। और इस गाने को सुनने के बाद में हमारे एक लिसनर ने कमेंट किया है, इनका कहना है कि इट्स कुमार का कहना है कि सॉन्ग ब्रेक पर आप घर से सब्जी के लिए मटर ले आया करिए, छील लिया करिए। सो मैं आपसे कहना चाहूँगी इट्स कुमार जी फ्रॉम एमपी रीवा कि क्या है ना कि मेरे घर में दो दो भाभियाँ हैं, तो मुझे पहली बात तो ये यहाँ पे लाके सब्जी काटने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला पॉइंट ये। और दूसरा पॉइंट ये कि मैं अपने घर पहुँचती हूँ 10 बजे, हाँ, और जब मैं अपने घर पहुँचती हूँ तो तब तक मेरे यहाँ डिनर बन चुका होता है, भले किसी ने खाया हो नहीं खाया हो अलग पॉइंट है, लेकिन तैयार हो जाता है खाना, तो फिर काय को इतनी मगजमारी करनी है। मैं बहुत फ्री और बहुत वेली लड़की हूँ अपने घर की, ठीक है, मुझसे काम भी कराए जाते हैं, तो जो घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कराए जाते हैं, घर के बाहर वाले काम, सब्जी खरीद ला, रिलेटिव आए हैं चाय बना ला, फिर उसके बाद में उन अंकल को फोन करना, उन अंकल का मैसेज देखना, अच्छा जेमिनी से ये पूछना, अच्छा टीवी में नेट नहीं कनेक्ट हो रहा, अच्छा वाईफाई का रिचार्ज कर देना, अच्छा फोन का रिचार्ज कर देना। तो लाइक ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हर एक की, जिससे सब मुझसे बड़े हैं, एक तो भाई तो मैं सबकी एक हिसाब से असिस्टेंट हूँ, तो जिसका जो मन होता है जिधर भी मन होता है समझ लो कि ऐसे सर पे एक थपकी लगा के ऐसे कह देता कि जा ये करके आ, और मुझे करना पड़ता है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और वैसे भी मेरे हाथ का कोई खाना खा भी नहीं पाएगा इसके लिए मैं और खुश हूँ। सो एंजॉय करते हैं उदालक शर्मा की फरमाइश, और उदालक शर्मा को सुनना है गाना हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। कर्मा पिक्चर का ये गाना एंजॉय करते हैं आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर जो की है मन का पुर से। स्टे ट्यून्ड।

वतन तेरे लिए। हमें एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग हमारे मन का पुरसिद्ध आलोक शर्मा की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ दोस्तों, तो क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? लेकिन उसके पहले चैट बॉक्स में इतनी गॉसिप्स हो रही, इतनी बातें हो रही, इतने प्रपंच हो रहे हैं, वो भी जेंजीज के बारे में, हम लोगों के बारे में, तो काय को नहीं पढ़ूंगी, काय को नहीं बताऊंगी। और गीता श्रीवास्तव जी का कहना है कि इनको पता ही था, ये जेंजीज के हिसाब से सोचती हैं और इनको पता ही था कि आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल घर की प्रिंसेस हैं, वो घरवा का काम नहीं करती हैं। और इसी के साथ में इनकी बातों पर टिप्पणी किया है धर्मेश त्रिपाठी ने, उनका कहना है कि प्रिंसेस हैं चलो मान लिया, लेकिन जहाँ जाएंगी वहाँ तो काम करना पड़ेगा ना मैम को। सो इसके बाद में गीता श्रीवास्तव जी ने जवाब दिया है कि जहाँ जाएंगी वहाँ हम जैसी सासू माँ मिलेंगी, काम न करने देंगी। आए हाय, अरे वाह, आप तो बड़ी स्वीट हैं। तो इस पे इट्स कुमार ने टिप्पणी दिया है कि समाज की बखिया उधेड़ने थोड़ी आए हैं, जेंजी हैं तो क्या हुआ। सो इसी पे मैं कहना चाहूंगी आप सभी से, अब देखिए भैया जेंजी वेंजी का तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं वन एंड ओनली चाइल्ड हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रिंसेस मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सबका प्यार दुलार है मेरे घर में जो मुझ पर बरसता रहता है, तो इसलिए मैं मतलब मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत लकी हूँ। यस, मैं बहुत लकी हूँ। और बचपन में ही मेरी मम्मा ने मेरे पिताजी से कहा था ये चीज़ की इसको इतना सर पे चढ़ा के रखा है, इससे कभी कोई काम नहीं कराना चाहते हो, इसको कभी कोई काम नहीं सिखाना चाहते हो, क्या जब इसकी शादी करोगे तो ससुराल में इसके साथ में एक मेड भी भेजोगे इसके हर एक काम को करने के लिए। और फिर उसके बाद में आज भी मेरी मम्मा भी, इनफैक्ट दोस्तों मतलब कोई बड़ी बातें नहीं है, अगर यहाँ बातें हो रही हैं तो मुझे अपने मम्मा पापा की बड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इतना करते ही हैं। सो मेरी मम्मा का क्या हिसाब है कि वो मेरे कपड़ों को जो इस्त्री करना होता है ना, आयरन करना होता है ना, प्रेस करना होता है ना, मैं उनको लाख बार मना करती हूँ मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो, लेकिन मैं जब तक ऑफिस आती हूँ इतनी देर में वो मेरे सारे काम करके रख देती हैं। मेरा मतलब लाइक अभी भी उनके लिए मैं एक 10 साल की बच्ची हूँ। तो हाँ, सच में मम्मा पापा इतना प्यार करते हैं, अगर किसी ने इतना सर पे चढ़ा रखा है तो हम क्यों ना चढ़ें सर पे, जब जैसी परिस्थिति आएगी उस हिसाब से ढल जाएंगे ना, इतना मजबूत तो बनाया ही ना हमारे परिवार ने हमको। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, गुनगुन को सुनना है गाना।

कुर्बान मेरी जान हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सब बहुत ही प्यारा सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा लेकिन सबके दिल के करीब रहने वाला नगमा ये फरमाइश दोस्त हमारे पास में आई थी गुनगुन की तरफ से और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू की सीतापुर से उनको सुनना है गाना जुड़े वाली छमिया मिला नैन रे सो एंजॉय करेंगे एक बार फिर से अतरंगी गाना लेकिन कुमार सानू आशा जी की आवाज बिंदुसी के साथ में अभी जो हम लोग गपशप कर रहे थे अभी जो हम लोग प्रपंच कर रहे थे उस प्रपंच पे इट्स कुमार का एमपी रीवा से कहना है कि आपकी भी दो भाभी मेरी भी दो भाभी सेम सेम हाँ लेकिन मेरी अभी एक भाभी और आएंगी होने वाली भाभी तो मेरी तीन भाभी होंगी तो वी आर नॉट बिल्कुल सेम सेम इट्स कुमार और इसी के साथ में धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मैम आप सच में लकी गर्ल हो जो आपको ऐसे मम्मा पापा मिले खुश रहिए मैम जहाँ भी रहिए आप देखिए मम्मा पापा सबको बहुत अच्छे मिलते हैं और सारे बच्चे लकी होते हैं लेकिन सबके प्यार जताने का तरीका अलग होता है कुछ लोग अपने मतलब जो जैसी दुनिया देख के आए रहते हैं ना वो उस हिसाब से अपने बच्चे को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ये बात हमेशा समझिएगा क्योंकि मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी मतलब जैसे मेरी मम्मी पापा को फिक्र होता है कि मैं टाइम से जब घर ना पहुँचूँ कि कहाँ रह गई क्या है क्या नहीं है आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ तो बार बार फ़ोन करके पूछना कहाँ पहुँची कितना देर लगेगा कुछ खाया वाया लेकिन मतलब ये सारी डिटेल्स लेना और ऐसे ही हम अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मेरा भी यही होता है भाई गोंडा जैसे छोटे शहर में गोंडा जैसे छोटे मार्केट में मैं अपनी मम्मा को अकेले नहीं भेजती हूँ चाहे एक छोटे से 5 साल के बच्चे को उनके साथ भेज दूंगी एक जिम्मेदारी उनके साथ भले भेज दूंगी लेकिन मैं उनको अकेले मार्केट नहीं भेजना चाहती हूँ बिना फोन के मैं अपने पापा को कहीं नहीं भेजना चाहती हूँ मैं अपने पापा को अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहती हूँ अपनी मम्मी को अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहती हूँ तो इतना प्रिजर्व मैं भी हूँ ना क्योंकि मुझे भी अंदर से डर लगता है तो ऐसे उनको भी अंदर से मम्मा पापा को भी अंदर से डर लगता है और इसीलिए वो उस हिसाब से आपको मतलब आपको प्यार जताते हैं अगर वो डांटते भी हैं या फिर आपके साथ स्ट्रिक्ट भी हैं या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा भी रहे हैं सिखा भी रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते ऑब्वियसली वो बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत लकी हो बस उनके प्यार सिखाने का तरीका है अलग है क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ये दुनिया बहुत जालिम है ये दुनिया सीधे लोगों को अच्छे लोगों को मतलब दिल के साफ लोगों को आई मीन कुल मिला के अगर आप अच्छे हो तो ये आपको जीने नहीं देगी आप अगर अच्छे हो तो आपको दुनिया को दिखाना ही पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो तभी वो आपको सुख चैन से जीने देगी क्योंकि ये घोर कलयुग है फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश मींस राजू की फरमाइश जो कि है सीतापुर से स्टे ट्यून्ड एवरीवन जितनी दुनिया मैंने देखी है मैं उस हिसाब से बताती हूँ दोस्तों आगे सबकी अपनी अपनी लाइफ है सब अपनी अपनी आप बीती जानते हैं है ना भितरक मार बहुरिए जाने स्टे ट्यून्ड

हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ एंजॉय करेंगे अगली फरमाइश को, लेकिन उसके पहले बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर 9 बजे के बाद फरमाइशी की महफिल में आ जाना। अगली फरमाइश है कार्तिक कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना कुछी कुछी, एंजॉय करते हैं रक्षक पिक्चर का ये गाना। और इसी के साथ में आशु मिश्रा जी का लखनऊ से कहना है कि जिसके सर पर पड़ता है वो सब कुछ कर लेता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आता है ना सर पर भार, पहले से तो किसी को पता नहीं होता है, और जब वो चीज़ें आ जाती हैं, जब पता होता है कि खुद ही को करना है, तो वो हो जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच आशु जी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुँचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है, तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के इडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम पामे और नामपीबू मरिनमाई तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
4: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
3: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचैन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
5: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए। कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
3: महिला तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तू निकला छुपा रुस्तम, ये फरमाइश थी सबलू सावंत की मुंबई से। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में, आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की सीतापुर से। निधि को सीतापुर से सुनना है गाना खोए खोए रहते हो। सो एंजॉय करेंगे निधि की फरमाइश पर ये वाला गाना। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

बदले बदले लगते हो। ये फरमाइश थी निधि की सीतापुर से, पिक्चर का नाम है बेवफा सनम। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की गोंडा से। सोनिया तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना पिया के बाजार में। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला आइटम सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

में हमें एंजॉय किया है। हम शक्ल का ये गाना सिर्फ और सिर्फ सोनिया तिवारी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पे जो की है गौरा चौकी से। स्टे ट्यून्ड।

ही बालक हूँ जगत महारानी। हमने एंजॉय किया लखबीर सिंह लखा की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा डिवोशनल सा सॉन्ग सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है। गौरा चौकी से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप जी की गोंडा से। उषा कश्यप जी को गोंडा से सुनना है गाना नखरेलो देवरिया भाभी पे जादू कर गयो। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट डांसिंग वाला सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नखियारो देवरियो भाभी पर जादू कर गयो, हमने एंजॉय किया बहुत ही अतरंगी सा डांसिंग वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ उषा कश्यप की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है, पंछी सुर में गाते हैं, भवरे गुनगुनाते हैं इस गाने की। जी हाँ, हम इंजॉय करेंगे सिर्फ तुम का ये गाना, उदित नारायण की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ उस्मान खान और जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टेडियम

तो हमने एंजॉय किया उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उस्मान खान और हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है एमपी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की और गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। अरविंद को और गीता श्रीवास्तव जी को गोंडा से सुनना है गाना मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। एंजॉय करते हैं विपिन सचदेवन और अनुराधा जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा जुनून पिक्चर का। फरमाइश है गीता जी की और अरविंद की। स्टे ट्यून्ड।

मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया, तो क्या करोगे ये बताओ ना। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरविंद की और गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दुर्गा प्रसाद की और इट्स कुमार की। एमपी रीवा से दुर्गा प्रसाद को और इट्स कुमार को सुनना है गाना मैंने तेरे भरोसे ही हनुमान से। एंजॉय करते हैं हनुमान अंश पिक्चर का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा इट्स कुमार और देवी प्रसाद दुर्गा प्रसाद की फरमाइश।

हनुमान अंश का ये गाना हमने एंजॉय किया है दुर्गा प्रसाद और इट्स कुमार की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय रावत की। विजय रावत को सुनना है गाना दिल है कि मानता नहीं। सो एंजॉय करेंगे विजय रावत की फरमाइश पर ये गाना। और इसी के साथ में अब आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों, बस यही इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys, have a very, very, very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू-बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सब की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, सो मच लव टू यू गाइस, सो मच केयर टू यू गाइस, बाय बाय। एंजॉय करते हैं आशु मिश्रा जी की, ओहो विजय रावत जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। बाय बाय।

जिंदगी में सबसे बड़ी हिम्मत खामोशी से उस पल का सामना करना है जब आपके पास कोई जवाब ना हो, फिर भी आप उम्मीद का दामन थामे रखें। आदाब आपके शाम के गजल स्पेशल शो बहार गजल में, मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे लफ्ज की जो इंसान की हस्ती का सबसे बड़ा चिराग है, हिम्मत। जब हम लफ्ज हिम्मत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में किसी जंग में उतरी ढाल तलवार या फिर किसी पहाड़ पर चढ़ते इंसान की तस्वीर आती है। लेकिन क्या हिम्मत सिर्फ यही है? सोचिए, एक आम इंसान जो सुबह उठकर फिर से अपने परिवार के सपनों के लिए काम पर निकलता है, भले ही कल का दिन उसके लिए कितना ही मायूस क्यों ना रहा हो, क्या वो हिम्मत नहीं? किसी कठिन सवाल का जवाब ना जानते हुए भी जिंदगी से सवाल पूछने का हौसला रखना, शायद यही हिम्मत है। इस बात को फहमी बदायूनी साहब ने बड़ी खूबसूरती से कहा है, कुछ कटी हिम्मतें सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में गुजरी। हमारी पूरी जिंदगी इसी हिम्मतें सवाल और जवाब उम्मीद के बीच का सफर है। फिलहाल मुझे लगता है किस्मत की इसी खूबसूरत पहलू को समेटती ये गजल आप तक पहुंचा देते हैं।

यू, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जब सब खामोश हो तब सच बोलना सिर्फ एक हिम्मत नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप सुन रहे हैं बहारे गजल और मैं हूं अदनान। आज बात हो रही है हिम्मत की। एक हिम्मत होती है जो हमारे अंदर के उस इंसान को जगाती है जो गलत को गलत कहने से नहीं डरता। मिसाल के तौर पर जब किसी दफ्तर या किसी माशरे में सब लोग किसी गलत बात पर हाँ में हाँ बोलते हैं और कोई एक इंसान खड़ा होकर कहता है नहीं ये सही नहीं है, वो है असली हिम्मत। अपनी आवाज उठाना, अपने हक और सच्चाई के लिए आवाज बुलंद करना सबसे बड़ी दाखिली ताकत की निशानी है। हमें खामोशी तोड़कर बुलंद आवाज बनने का पैगाम देता है ये शेर कि हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का आलम, हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज का आलम, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला, चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला। अगर मसले का हल चाहिए तो खामोशी का लिबास उतारना ही होता है। जैसे जॉन साहब लिखते हैं कि तुझ में पड़ा हुआ हूं, हरकत नहीं है मुझ में, तुझ में पड़ा हुआ हूं, हरकत नहीं है मुझ में, हालत न पूछियो तू हालत नहीं है मुझ में, अब तू नजर में आ जा बाहें घर में आ जा, अब तू नजर में आ जा बाहों के घर में आ जा, ऐ जान तेरी कोई सूरत नहीं है मुझ में, ऐ जान तेरी कोई सूरत नहीं है मुझ में। सुनते रहिए बहारे गजल और ये खूबसूरत सी गजल अब आपके

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: यूं तो हिम्मत के कई चेहरे देखे, एक चेहरा जो बहुत पास रहता है अक्सर बुरे वक्त में। हम बात कर रहे हैं अंदरूनी तन्हाई में, जब खुद को संभालने की हिम्मत चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप अभी तक संभालते आए हैं। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब जंग अपने ही ख्यालों से और बिखरे हुए दिल से हो, तो हिम्मत का असली इम्तहान होता है। इंसान अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे दौर से गुजरता है जहां बाहर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक गहरा सन्नाटा और बिखराव होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अपनी नाकामयाबी के बाद कमरे में अकेले बैठकर रो लेता है, लेकिन अगली सुबह फिर मुस्कुराकर नई किताब खोलता है। ये वो जो अंदरूनी जंग है, दरअसल वही असली हिम्मत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान इस कदर टूट जाता है कि खुद का सामना करने की भी हिम्मत नहीं बचती है। और इसी बात को शायद जॉन साहब की इस बार हम पूरी गजल से आपको रूबरू कराएंगे। जॉन साहब कहते हैं कि तुझ में पड़ा हुआ हूं, हरकत नहीं है मुझ में, हालत न पूछियो तू, हालत नहीं है मुझ में। अब तू नजर में आ जा, बाहों के घर में आ जा, ऐ जान तेरी कोई सूरत नहीं है मुझ में। ऐ रंग रंग में आ, आगोश तंग में आ, बातें ही रंग की है, रंगत नहीं है मुझ में। अपने में ही किसी की हो, रूबरू रूई मुझको, हूँ खुद से रूबरू, हिम्मत नहीं है मुझ में। अब तो सिमट के आ जा और रूह में समा जा, वैसे किसी प्यारे वो स्वत नहीं है मुझ में। शीशे के इस तरफ से मैं सबको तक रहा हूँ, शीशे के इस तरफ से मैं सबको तक रहा हूँ, मरने की भी किसी को फुर्सत नहीं है मुझ में। तुम मुझको अपने रम में ले जाओ साथ अपने, तुम मुझको अपने रम में ले जाओ साथ अपने, अपने से आए गजलो वहशत नहीं है मुझ में, अपने से आए गजालो वहशत नहीं है मुझ में। खुद के आईने के सामने खड़े होना और अपनी कमियों को कबूल करके फिर से संभलना ही तो इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और इस एहसास को महसूस कराने आ रही ये अगली गजल।

हिम्मत की बातों में इश्क, सब्र और बर्दाश्त की हिम्मत की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। कहते हैं इश्क सिर्फ पाने का नाम नहीं, टूटने के बाद भी किसी के लिए दुआ करने और मुस्कुराने की हिम्मत रखने का नाम है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे अदनान। मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता, इसमें सिर्फ हंसी और खुशियां नहीं बल्कि दर्द, सब्र और गुत्थियों को सुलझाने की हिम्मत भी चाहिए होती है। सोचिए जरा उस शख्स के बारे में जो किसी रिश्ते में हर बार चीजों को संभालने की कोशिश करता है, भले ही बातें कितनी भी उलझ चुकी हों। जिगर मुरादाबादी साहब ने इसी उधेड़बुन को अपने शेर में पिरोया है। वो लिखते हैं, मेरी हिम्मत देखना है मेरी तबीयत देखना, मेरी हिम्मत देखना मेरी तबीयत देखना, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं, जो सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं, और जब दर्द हद से गुजर जाए तो दिल अपनी खामोशी से अपनी हिम्मत का ऐलान करता है। फैज़ साहब क्या खूबसूरत सी गज़ल लिखते हैं इसी हिम्मत को लेकर। वो कहते हैं कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, जिन चरागों को हवाओं का खौफ नहीं उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए, खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन अभी औरों को सताया जाए, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को ना फूलों से उड़ाया जाए, क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई न दे कहीं, क्या हुआ शहर को कुछ भी तो दिखाई दे कहीं, यूं किया जाए कभी खुद को रुलाया जाए। और ये आखिरी अशार जो आपने भी कई बार सुने हैं और मुझे भी बेहद पसंद है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बर्दाश्त की इस हद तक पहुंचना और फिर खुद को कायम रखना ही तो असली हिम्मत है। आइए ये खास गजल इस एहसास को

ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है। उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों को अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा हो के भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। इसी से जलते हैं सहराए आरजू में चराग, ये तिश्नगी तो मुझे जिंदगी से प्यारी है। कोई बताए ये उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। हर एक सांस पे पहरा है बेयकीनी का, ये जिंदगी तो नहीं मौत की सवारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। जाहिर है अल्फाज से समझ ही गए होंगे कि ये वसीम साहब का अंदाज है, जिनका कहना है कि उनका ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। हजारों आंधियां आएंगी आपको बुझाने के लिए, लेकिन आपके अंदर जलता हुआ उम्मीद का वो एक छोटा सा चराग पूरी रात पर भारी पड़ेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज हमने हिम्मत के हर उस रंग को जानना चाहा जिसमें सवाल करने की हिम्मत हो, आवाज उठाने की हो, अपने बिखरे हुए दिल को समेटने की हो, या मोहब्बत में सब्र की। जिंदगी कभी किसी एक सी नहीं रहती, रास्ते में आंधियां आएंगी, वक्त का थपेड़ा भी भारी होगा, लेकिन याद रखिए एक आम शख्स जब ठान लेता है तो बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ देता है। एक शेर है कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जी हाँ, इसी कड़ी में जिगर मुरादाबादी साहब लिखते हैं कि शायरे फितरत हूं जब भी फिक्र फरमाता हूं मैं, रूह बनकर जर्रे जर्रे में समा जाता हूं मैं। आ कि तुझ बिन इस तरह ऐ दोस्त घबराता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। जिस कदर अफसाने हस्ती को दोहराता हूं मैं, और भी बेगाने हस्ती हुआ जाता हूं मैं। जब मकानो ला मकान सबसे गुजर जाता हूं मैं, अल्लाह अल्लाह तुझको खुद अपनी जगह पाता हूं मैं। अपनी हिम्मत को हमेशा जिंदा रखिएगा, मुश्किलों के आगे मुस्कुराते रहिएगा। और हिम्मत की बात में एक और बात कि इस हिम्मत के साथ आज के बाद से हर वक्त गुजारिएगा कि हिम्मत एक वो चराग है जो आखिरी भी है और जहां से शुरुआत भी है। ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रात के 10:30 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर किसी ऐसे इंसान की हत्या हो जाए जिससे आप कभी मिले ही नहीं हो और उसकी मौत के कुछ दिनों बाद वो आपको दिखाई देने लगे, तो पहले सड़क पर, फिर आपके घर में और फिर आपके बिल्कुल पास, आप शायद कहेंगे वहम है। लेकिन अगर वही मरा हुआ इंसान आपको अपने हत्यारे तक पहुंचाना चाहता हो तो, और वो हत्यारा आपके सामने बैठा हो। आज की कहानी है चार्ल्स डिकेंस की एक बेहद रहस्यमयी घोस्ट स्टोरी पर आधारित, द ट्रायल फॉर मर्डर। लंदन की बात है 19वीं सदी, कड़ाके की ठंड थी, लंदन की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था। हमारी कहानी का नरेटर है चार्ल्स, एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति, न भूतों पर विश्वास न आत्माओं पर। उस शाम चार्ल्स अपने घर लौट रहा था, सड़क लगभग खाली थी, गैस लैंप्स की पीली रोशनी कोहरे में धुंधली पड़ रही थी। तभी सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी दिखाई दिया, लंबा कोट, पीला चेहरा और आंखें सीधे चार्ल्स पर टिकी हुई थी। चार्ल्स चलते चलते रुक गया, उसने सोचा शायद मैं इसे जानता हूँ, लेकिन नहीं, उसने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। चार्ल्स आगे बढ़ा, वो आदमी भी चला गया, चार्ल्स रुका, वो भी रुक गया। चार्ल्स ने सड़क पार करनी चाही, लेकिन उसी समय एक घोड़ा गाड़ी बीच से गुजरी और उसके निकलते ही वो आदमी गायब हो गया। चार्ल्स ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने खुद से कहा, कोहरा है इसलिए शायद मेरा भ्रम होगा, और वो घर चला गया। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय चार्ल्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अचानक उसकी नज़र एक खबर पर पड़ी, लंदन में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो गई थी, एक आदमी अपने कमरे में मृत मिला, पुलिस को हत्या का शक था। चार्ल्स ने खबर पढ़ी और न्यूज़पेपर नीचे रख दिया, तभी उसकी नज़र साथ छपी एक छोटी सी तस्वीर पर गई। उसका हाथ रुक गया, वही लंबा चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जिसे उसने पिछली रात सड़क पर देखा था, लेकिन न्यूज़पेपर के अनुसार उसकी हत्या चार्ल्स के उसे देखने से पहले ही हो चुकी थी। चार्ल्स ने न्यूज़पेपर बंद कर दिया, ये संभव नहीं है, उसने खुद को समझाया, मैंने शायद कहीं उसका चेहरा पहले देखा होगा। लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल बैठ चुका था, अगर वो आदमी मर चुका था तो पिछली रात सड़क पर कौन था? उस रात चार्ल्स देर तक जगता रहा, करीब 12 बजे थे, उसने बेडरूम की लाइट बुझाई, 12:10, 12:20, फिर अचानक ठक ठक की आवाज आई दरवाजे की तरफ से। चार्ल्स उठ बैठा, उसने पूछा कौन है, कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया, दरवाजा खोला, कॉरिडोर खाली, लेकिन कॉरिडोर के अगली छोर पे वही आदमी खड़ा था। चार्ल्स का शरीर सुन पड़ गया, वही मृत व्यक्ति, इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद था, गर्दन पे गहरे गहरे चोट के निशान थे। चार्ल्स ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और उंगली से चार्ल्स की तरफ इशारा किया, फिर अपने गले पर हाथ रखा और धीरे धीरे गर्दन एक तरफ झुका दी।
चार्ल्स पीछे हट गया। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदमी के होंठ हिले, आवाज बहुत धीमी, उसे देखो। किसे देखे? लेकिन वो आदमी गायब हो गया। कुछ दिन के बाद पेपर में रोज आता था, हत्या की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उस पर हत्या का आरोप था। पूरे लंदन में मुकदमे की चर्चा होने लगी। चार्ल्स ने खबर पढ़ी, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिनों बाद चार्ल्स के घर अदालत से एक सरकारी पत्र आया। उसमें लिखा था कि उसे हत्या के एक मुकदमे में फैसला सुनाने वाले 12 लोगों की समिति में शामिल होना है। उसे एक मर्डर ट्रायल में ज्यूरी के रूप में उपस्थित होना था। उस समय इंग्लैंड में कुछ मुकदमे में 12 आम नागरिकों की एक समिति बनाई जाती थी। ये लोग अदालत में गवाहों की बातें सुनकर तय करते थे कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। चार्ल्स ने तारीख देखी, फिर केस का नाम पढ़ा और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यह उसी आदमी की हत्या का मुकदमा था जिसका भूत उसे दिखाई दे रहा था। ट्रायल का पहला दिन था। चार्ल्स कोर्ट रूम पहुंचा। उसके साथ दूसरे समिति के मेंबर्स भी बैठे थे। जज आया, वकील अपनी जगह पर खड़ा हुआ, फिर आरोपी को कोर्ट में लाया गया। चार्ल्स ने पहली बार उस आरोपी का चेहरा देखा। एक शांत सा आदमी, साफ कपड़े, सामान्य चेहरा। उसने चार्ल्स की तरफ देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वो चार्ल्स को पहचानता हो। चार्ल्स ने सोचा, लेकिन इसने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तभी चार्ल्स को अपने पीछे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बहुत पास। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, उसके पीछे कोई नहीं था। फिर सामने देखा और उसकी सांसें रुक गई। आरोपी के ठीक पीछे वही मृत आदमी खड़ा था। कोर्ट रूम में किसी और ने उसे नहीं देखा। वह धीरे धीरे आगे आया और आरोपी के कंधे के ऊपर से चार्ल्स को देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ उठाया। इस बार उंगली चार्ल्स की तरफ नहीं थी, वो आरोपी की तरफ भी नहीं इशारा कर रहा था, पर उसकी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। यही है। चार्ल्स की उंगलियां कुर्सी पर कस गई। भूत उसके और करीब आया और फुसफुसाया, लेकिन अभी तुमने कुछ नहीं देखा है। एकदम सन्नाटा छा गया। एक मृत आदमी जिसे चार्ल्स ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, उसकी हत्या हो चुकी थी, फिर भी उसकी आत्मा चार्ल्स के सामने बार बार आ रही थी। और अब उसी हत्या के मुकदमे में चार्ल्स को भी ज्यूरी बना दिया गया था। क्या ये सिर्फ संयोग था? आखिर उस मृत व्यक्ति ने चार्ल्स को ही क्यों चुना? और आरोपी ने चार्ल्स को देखते ही उसे पहचानने जैसा भाव क्यों दिया? सबसे बड़ा सवाल, भूत ने ये क्यों कहा, तुमने अभी कुछ नहीं देखा है? मिलते हैं जल्दी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: एक बार फिर स्वागत है आपका 89.6 FM ज्ञान स्थली रेडियो के लेट नाइट हॉरर शो में। आप सुन रहे हैं द ट्रायल फॉर मर्डर। जज ने कार्यवाही शुरू की। पहले गवाह को बुलाया गया, वो मृत व्यक्ति का पड़ोसी था। वकील ने पूछा, हत्या वाली रात में आपने क्या सुना? गवाह बोला, लगभग 11 बजे किसी के झगड़ने की आवाज आई। कितने लोग? दो। क्या आपने आरोपी को देखा था? गवाह ने आरोपी की तरफ देखा, नहीं, चेहरा नहीं देखा था। चाल सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। तभी उसके सामने रखे कागज का कोना अपने आप हिलने लगा। कोर्ट रूम में हवा नहीं थी। फिर उसके कान के पास आकर किसी ने कहा, वो झूठ नहीं बोल रहा है। चाल से तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, लेकिन उसने सब कुछ नहीं सुना था। चार्ल्स ने सामने देखा, मृत व्यक्ति अब फिर से गवाह के पीछे खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और कोर्ट रूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया, पर उसी समय दूसरा गवाह आ गया, एक वृद्ध महिला। उसने बताया कि हत्या वाली रात उसने आरोपी को मृत व्यक्ति के घर के पास देखा था। डिफेंस लॉयर ने पूछा, इतनी धुंध और अंधेरे में आप उसका चेहरा कैसे पहचान सकती थी? महिला घबरा गई, बोली, मैं श्योर नहीं हूँ। आरोपी के चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन उसी क्षण चार्ल्स ने देखा, मृत व्यक्ति आरोपी के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा आरोपी के कान के पास किया और फिर फुसफुसाया, तुम्हें याद है? आरोपी अचानक उछल पड़ा, चुप रहो। पूरा कोर्ट रूम दंग रह गया। जज ने पूछा, किससे बात कर रहे हैं आप? आरोपी ने चारों तरफ देखने लगा, किसी से भी नहीं। चार्ल्स का दिल तेज हो गया। क्या आरोपी ने भी वही आवाज सुनी थी? कुछ देर बाद कोर्ट में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट दिखाया जाना था, एक पत्र जो मृत व्यक्ति के कमरे से मिला था। कोर्ट के क्लर्क ने फाइल खोली, लेकिन पत्र गायब था। वकीलों में हलचल मच गई। जज नाराज हो गया, डॉक्यूमेंट कहाँ है? क्लर्क घबराया, बोला, सर, अभी यही था। चार्ल्स ने तभी अपने सामने देखा, वही पत्र उसकी मेज पे रखा था। उसने उसे वहां आते नहीं देखा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। पत्र के ऊपर खून जैसा एक छोटा सा निशान था और उसके नीचे लिखा था, पढ़ो। चार्ल्स ने सिर उठाया। भूत कोर्ट रूम के कोने में खड़ा था। चार्ल्स ने पत्र क्लर्क को दे दिया। ये यहाँ था? क्लर्क हैरान, यह आपके पास कैसे पहुंचा? चार्ल्स के पास कोई जवाब नहीं था। पत्र अदालत में पढ़ा गया। मृत व्यक्ति ने हत्या के कुछ दिन पहले लिखा था कि कोई व्यक्ति उसे धमका रहा है। उसने नाम नहीं लिखा था, लेकिन एक वाक्य महत्वपूर्ण था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वह व्यक्ति मुझे जानता होगा और मैं उसे। आरोपी बेचैन हो गया। चार्ल्स ने उसकी तरफ देखा और तभी भूत फिर से उसके पीछे खड़ा हो गया। इस बार उसने आरोपी के कंधे पर हाथ रख दिया। आरोपी का पूरा शरीर कांप उठा। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके कोट का कंधा धीरे धीरे नीचे दब रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ का वजन उस पर हो। चार्ल्स अपनी सीट पर जम गया। बाकी कोर्टरूम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आरोपी महसूस कर रहा था और चार्ल्स देख रहा था। शाम हो चुकी थी। जज ने अगले दिन तक कार्यवाही स्थगित कर दी। लोग कोर्टरूम से निकलने लगे। चार्ल्स भी उठने वाला था कि उसने देखा मृत व्यक्ति उसके सामने खड़ा है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि बेचैनी थी। उसने चार्ल्स से कहा, कल बहुत ध्यान से देखना। चार्ल्स ने धीरे से पूछा, क्या? भूत ने कोर्टरूम के जूरीज की चेयर्स की तरफ देखा और कहा, सबको, और फिर वो गायब हो गया। उस रात चार्ल्स सो नहीं पाया। करीब 1 बजे उसकी आंख लग गई और उसने सपना देखा, वही कोर्टरूम, जज अपनी जगह पर, आरोपी अपनी जगह पर, लेकिन जूरी की सारी चेयर्स खाली थी। सिर्फ एक चेयर पर मृत व्यक्ति बैठा था। चार्ल्स कोर्टरूम में अकेला खड़ा था। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मृत व्यक्ति ने दर्द के साथ जवाब दिया, न्याय। चार्ल्स बोला, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? भूत ने कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो। उसी क्षण सारे जूरीज की चेयर भरने लगी। एक एक करके लोग दिखाई देने लगे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ चार्ल्स का चेहरा साफ था। फिर भूत ने कहा, जब समय आए तो गिनना। चार्ल्स ने पूछा, क्या गिनना? लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। रात के 3:13 थे और उसके बेडरूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। प्यारे छोटागण, चार्ल्स बेड की तरफ मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन चार्ल्स के तकिए पर एक चीज पड़ी थी, जूरी का एक छोटा सा कागज। उस पर लाल स्याही से लिखा था, 12। चार्ल्स ने उसे उठाया और तभी उसे सपने में कही बात याद आई, जब समय आए तो गिनना। श्रोतागण, आखिर इस संख्या का क्या अर्थ था? क्या वह जूरी के 12 सदस्यों की तरफ इशारा कर रहा था? और भूत ने चार्ल्स से क्यों कहा था, अगले दिन जूरी को फैसला करना है? और चार्ल्स को अभी तक नहीं पता था कि उस कोर्टरूम में जो कुछ वो देख रहा है उसमें कितना सच है और कितना भूत का खेल। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक। चार्ल्स अगली सुबह कोर्ट रूम पहुंचा। उसने सबसे पहले ज्यूरी बॉक्स की तरफ देखा। 1, 2, 3 वो मन ही मन गिनने लगा। 12 सब सामान। उसने राहत की सांस ली। शायद पिछली रात केवल एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठा, उसके बगल वाले सदस्य ने पूछा, आप ठीक हैं? चार्ल्स ने कहा, हाँ, क्यों? आप बार बार उस खाली कुर्सी को क्यों देख रहे हैं? चार्ल्स चौंका, कौन सी खाली कुर्सी? जूरी ने सामने इशारा किया। चार्ल्स ने देखा, उसे वहाँ एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा था, वही मृत व्यक्ति, लेकिन बाकी सबके लिए वो कुर्सी खाली थी। चार्ल्स की सांस अटक गई। उसने एक बार फिर सारे सदस्यों को गिना। 1, 2, 3, 11 सारे सदस्य बैठे थे और 12वीं कुर्सी पर वही भूत। चार्ल्स ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। अब कुर्सी पर असली सदस्य बैठा था, लेकिन उसके पीछे वो मृत व्यक्ति खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। प्रोसिक्यूशन में आखिरी गवाह पेश किया गया। हत्या के कमरे में मिला एक छोटा सा बटन, वही बटन आरोपी के कोट के बाकी बटन से मिलता था। डिफेंस लॉयर तुरंत खड़ा हुआ, ऐसा बटन लंदन में हजारों कोर्ट्स पे हो सकता है। बात सही थी। कोर्टरूम में हलचल हुई। चार्ल्स ने आरोपी की तरफ देखा। वो पहली बार थोड़ा आश्वस्त दिखाई दिया। तभी मृत व्यक्ति धीरे धीरे उसके पीछे आया और चार्ल्स को अपना गला दिखाया, गर्दन पर चोट के निशान। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में भी उसी तरह का एक बटन था। चार्ल्स समझ गया, शायद हत्या के समय मृत व्यक्ति ने आरोपी का कोट पकड़ लिया था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था क्योंकि वो सदस्यों में से एक था। चार्ल्स के पास कोई एविडेंस भी नहीं था। चार्ल्स बेचैन होता, लेकिन भूत ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया, अभी नहीं। जज ने आरोपी से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आरोपी खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने उस आदमी की हत्या नहीं की है। फिर उसकी नजर सीधे चार्ल्स पे टिक गई। कुछ क्षण तक वो उसे देखता रहा और फिर अचानक बोला, और ये आदमी? कोर्टरूम शांत था। जज ने पूछा, कौन? आरोपी ने चार्ल्स की तरफ उंगली उठाई, ये मुझे क्यों देख रहा है? मैंने हत्या नहीं की। जज ने कहा, ये तो 12 सदस्यों में से एक है। आरोपी ने कहा, नहीं, वो नहीं जो उसके पीछे खड़ा है। चार्ल्स का खून जम गया। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं है। आरोपी चीख पड़ा, है, वही है, उसे हटाओ, मैंने उसे नहीं मारा है। कोर्ट ऑफिसर्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन चार्ल्स ने देखा, मृत व्यक्ति अब आरोपी के बिल्कुल सामने खड़ा था, चेहरा उसके चेहरे से कुछ इंच दूर, और पहली बार आरोपी सचमुच उसे देख रहा था। कुछ देर विचार करने के बाद सारे सदस्यों को अलग कमरे में भेज दिया गया। दरवाजा बंद हुआ। बाहर 12 आदमी एक बड़ी सी मेज के चारों तरफ बैठ गए, और जो इन सदस्यों का अध्यक्ष था, उसने कहा, पहले वोट करते हैं। 12 छोटे कागज बांटे गए। सबने अपना निर्णय लिखा। कागज इकट्ठा किए गए। गिनना शुरू हुआ। 1, 2, 3 चार्ल्स को पिछली रात की आवाज याद आई, जब समय आए गिनना। वो अध्यक्ष गिनता रहा, 10, 11, 12। फिर एकाएक उसका हाथ रुक गया। मेज पर एक और पेपर पड़ा था। उस अध्यक्ष ने पूछा, ये किसका है? कोई नहीं बोला। चार्ल्स की सांस रुक गई, क्योंकि कमरे में 12 थे लेकिन वोट पड़े थे 13। सदस्यों के अध्यक्ष ने 13वां पेपर खोला। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, दोषी को ढूंढो। चार्ल्स ने हैंडराइटिंग देखी, वही लाल स्याही, वही लिखावट जो उसके तकिए पर मिली थी 12 वाले कागज पर। एक सदस्य हंस पड़ा, किसी ने मजाक किया है। दूसरे ने कहा, फिर से वोट करते हैं। नए पेपर बांटे गए। इस बार चार्ल्स सब को ध्यान से देख रहा था। एक एक वोट बक्से में गए। 12 आदमी, 12 पेपर्स। फिर उस अध्यक्ष ने बक्सा खोला, गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 12 और फिर 13। कमरे में सन्नाटा। 13वां पेपर पर इस बार लिखा था, मैं यही हूँ। अचानक हवा चलने लगी और कमरे की सारी कैंडल्स एक साथ बुझ गई। अंधेरा। किसी ने कहा, कौन है? फिर मेज के दूसरे छोर से कुर्सी खिसकने की आवाज आई, धीरे धीरे। चार्ल्स ने अंधेरे में गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुई तो उसने चेयर्स गिनी, 13। एक अतिरिक्त चेयर मेज के बिल्कुल आखिरी छोर पे थी और उस पे वो मृत व्यक्ति बैठा था। बाकी सदस्य को शायद वो खाली कुर्सी ही दिखाई दे रही थी, लेकिन चार्ल्स उसे साफ साफ देख सकता था। भूत ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक जूरी की तरफ इशारा किया। चार्ल्स ने उस आदमी को देखा, वो बहुत घबराया हुआ था, उसके माथे पर पसीना था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। चार्ल्स ने पूछा, आप ठीक तो हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। भूत फिर उसी की तरफ इशारा करता रहा। चार्ल्स को अचानक पिछली रात का 12 याद आया। उसने सारे सदस्यों को फिर से गिना और तभी उसे समझ में आया कि वो 12वां सदस्य ही कल्प्रिट था। चार्ल्स ने अध्यक्ष से पूछा, ये सज्जन कौन है? अध्यक्ष ने उसकी तरफ देखा, कौन? चार्ल्स ने सामने इशारा किया, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली कुर्सी और उस कुर्सी पर एक पुराना कोट पड़ा था। चार्ल्स धीरे धीरे उसके पास गया, कोट उठाया, उसमें से एक बटन गायब था, ठीक वैसा ही बटन जो मर्डर सीन में मिला था। चार्ल्स का हाथ कांपने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक हुई। कोर्ट ऑफिसर बाहर से चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलिए। अध्यक्ष ने दरवाजा खोला, ऑफिसर हांफ रहा था। उसने कहा, आरोपी ने अभी जेल के कमरे में। सबने पूछा, क्या? ऑफिसर ने अपनी सांस संभाली और कहा, किसी मृत आदमी को देखने का दावा किया है। चार्ल्स का चेहरा सफेद पड़ गया। ऑफिसर ने आगे कहा, और वो लगातार एक ही बात बोल रहा है। चार्ल्स ने पूछा, क्या? ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वो कह रहा है, असली हत्यारा जूरी रूम में है, वो उन सदस्यों में से एक है। प्यारे श्रोतागण, असली हत्यारा जूरी रूम में? तो फिर अदालत में बैठा आरोपी कौन था? 12 सदस्यों के बीच 13वां वोट किसने डाला? और वो रहस्यमय आदमी जिसकी कुर्सी पर वही कोट मिला, जिसका बटन मर्डर सीन पर पाया गया, वो आखिर कौन था? क्या मृत व्यक्ति चार्ल्स को आरोपी तक पहुंचा रहा था, या अब तक वह उसे किसी और तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, कि असली हत्यारा था कौन। जल्दी मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक श्रोतागण, हमें पता करना है सच क्या था। उस कमरे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। चार्ल्स की नजर अब भी उस खाली कुर्सी पर थी। उस पर पड़ा कोट अभी भी वही था और वो अध्यक्ष सबसे पूछ रहा था, ये कोट यहाँ कैसे आया? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। चार्ल्स ने कोट की पॉकेट में हाथ डाला, अंदर एक पुरानी घड़ी थी और एक छोटा सा कागज। कागज पर एक एड्रेस लिखा था। चार्ल्स ने वो एड्रेस पढ़ा। कोर्ट ऑफिसर अचानक बोला, ये तो उसी मकान का एड्रेस है जहां हत्या हुई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी चार्ल्स ने सामने देखा, मृत व्यक्ति फिर वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे वही रहस्यमय सदस्य खड़ा था जिसे चार्ल्स ने कुछ देर पहले देखा था। भूत ने उसकी तरफ उंगली उठाई, इसे देखो, चार्ल्स ने पूछा, क्या इसी ने तुम्हें मारा है? मृत व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। और उसी क्षण फिर से लाइट्स बुझ गई। चारों तरफ कुर्सियां खिसकने लगी। किसी ने चिल्ला के कहा, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अंधेरे में कदमों की आवाजें आने लगी, कई सारी आवाजें, जैसे कोई मेज के चारों ओर घूम रहा हो। चार्ल्स बिल्कुल स्थिर खड़ा था। फिर उसके कान के पास आवाज आई, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। चार्ल्स ने पलट कर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। किसी ने उसके कान के पास आके कहा, तुमने कुछ नहीं देखा। चार्ल्स ने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? अंधेरे में एक भयानक सी हंसी की हल्की सी आवाज आई, अगर तुम चुप रहोगे आज तभी तुम घर पहुंच पाओगे। चार्ल्स ये समझ गया कि ये उस मृत व्यक्ति की आवाज नहीं थी, ये उस हत्यारे की आवाज थी जो उसको धमकी दे रहा था। तभी दूसरी तरफ से एक शांत सी आवाज आई, चार्ल्स डरो मत, सच का पर्दा उठाओ। अचानक कैंडल्स अपने आप जल उठी और कमरे के दरवाजे के पास वो आदमी खड़ा था। वही चेहरा, वही कोट और एक बटन गायब था। अध्यक्ष ने चिल्ला के पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी पीछे हटने लगा। कोर्ट ऑफिसर ने उसे पकड़ने की कोशिश किया, वो छूटकर कॉरिडोर की तरफ भागा। चार्ल्स और ऑफिसर्स उसके पीछे भागे। वो कोर्ट रूम में घुसा, वहाँ आरोपी अभी भी खड़ा था। जैसे ही दोनों की नजर मिली, आरोपी चिल्लाया, यही है वो आदमी जिसने उसको मारा है। अब सच

सामने आने लगा। जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा था उसने हत्या नहीं की थी, वो असली हत्यारे को जानता था लेकिन डर के कारण उसका नाम नहीं ले रहा था। असली हत्यारा उसी रात मृत व्यक्ति के घर गया था। कुछ झगड़ा हुआ, मृत व्यक्ति ने उसका कोट पकड़ लिया, बटन टूटकर वहीं गिर गया और फिर उसने उसकी हत्या कर दी। हत्यारे ने शक दूसरे आदमी पर जाने दिया। उसे लगा था मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने एक चीज नहीं सोची थी, मरने वाला आदमी चुप रहने वाला नहीं था। हत्यारे को ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, वो छूटने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नजर चार्ल्स के पीछे गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो, तुम तो मर चुके हो। चार्ल्स ने देखा मृत आदमी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। इस बार उसके चेहरे पे न गुस्सा था न दर्द, सिर्फ एक शांत नजर। हत्यारा चीख रहा था, उसे हटाओ, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो मुझसे लड़ रहा था, वो मुझे रोक रहा था और मेरे हाथ से उसका मर्डर हो गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया और फिर उसके मुंह से निकल गया, हाँ मैंने तुम्हें मारा था क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे थे। एक पल के लिए कोई हिला तक नहीं, उसने खुद अपराध स्वीकार किया था। कुछ दिनों बाद चार्ल्स अपने घर में अकेले बैठा था। मुकदमा खत्म हो चुका था, निर्दोष व्यक्ति रिहा हो गया, असली हत्यारा कानून की गिरफ्त में था। चार्ल्स ने सोचा अब सब खत्म हो गया। उसने लैंप बुझाया और बेडरूम की तरफ बढ़ा, तभी ठक ठक ठक ठक की आवाज आई। चार्ल्स ने धीरे से दरवाजा खोला, वही मृत व्यक्ति खड़ा था, लेकिन आज उसकी गर्दन पर कोई घाव नहीं था, चेहरा शांत था। चार्ल्स ने पूछा, क्या अब तुम्हें न्याय मिल गया? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाया, फिर मुड़ा और चुपचाप कॉरिडोर के अंधेरे में चलने लगा। कुछ कदम बाद वो रुका, फिर पीछे देखा और इस बार मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। चार्ल्स ने राहत की सांस ली, दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन तभी फिर हल्की हल्की आवाज आई। चार्ल्स धीरे से पलटा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसकी मेज पर एक फोल्डेड पेपर रखा था। चार्ल्स उसके पास गया, कांपते हाथों से उसने वो पेपर खोला। उस पे लिखा था, न्याय पूरा हुआ लेकिन हर मृत व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। प्यारे श्रोतागण, अगली मुलाकात में मैं लेकर आऊंगी एक और रहस्य, एक और अनसुनी दास्तान। मगर तब तक ये याद रखिएगा, कुछ मुकदमे अदालत में खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ की सुनवाई मौत के बाद शुरू होती है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

0: अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।
1: एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी।

0: हाँ जी दोस्तों, जब
1: कोई
0: हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो। और रात की जो सड़कें होती हैं, वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज़ से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी

0: सूरत आप।
1: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
2: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।